को रीढ़ की हड्डी में थोड़ी दिक्कत होती है, वह यह आसन थोड़ी थोड़ी देर करेंगे, बहुत देर तक नहीं करेंगे। सावधानियां हमने आपको पहले भी बता के रखी हुई हैं कि गर्भवती महिलाएं इस आसन को, सारे आसनों को ना करें, और बालिकाएं पीरियड अवस्था में हैं तो भी इस आसन को ना करें। ज्यादा वृद्धावस्था में भी, यानी 70 प्लस के बाद भी, अगर आपको लग रहा है कि आप योग करने की स्थिति में हैं, यह आसन आपको लाभ तो देगा, लेकिन अगर आपके कमर में दर्द है तो आप कहीं किसी दीवार का सहारा लेकर के टेक लगा करके बैठ जाएं, तब आप आसनों को कर सकते हैं। तो ये थे प्रेरणा वाय आसनों का कुछ रूप। हम इसी तरीके से प्रेरणा वाय रूपों को आगे भी बताएंगे, यानी कि कल कुछ ऐसे आसन, कुछ और भी आसन हैं जो कि हैं अभी वाय के रूप में, वो हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अभी हम वाय आसनों के बाद में भी 10 से 15 मिनट ध्यान योग करने वाले हैं। ध्यान योग को करने के लिए आपको मन चित बिल्कुल एकाग्रता से बैठ जाना है। तो आइए दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे एक नए शब्द के साथ, एक नए आसन के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की उपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो आइए दोस्तों, जो कि एक नामों के साथ में सीरीज चल रही है, योग के साथ में एक नाम को जोड़ करके, जैसा कि पहली सीरीज में हमने आपको बताया था नौकासन, यानी कि अलौकिक नौकासन, उसी के साथ में एक नया नाम अब हम आज आपके सामने बताने वाले हैं, जो कि है प्रकाशमय वृक्षासन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाशमय वृक्षासन क्यों है। आपने देखा होगा कई बार जब हम कोई भी सीरीज देखते हैं, कोई भी पुरानी सीरियल्स को देखते हैं, कोई आध्यात्मिक सीरियल्स को देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि जब घोर तपस्या करते थे तो वो पेड़ों पे जाकर के या फिर पहाड़ों पे जाकर के एक पैर पे खड़े होकर के इस आसन को करते थे, जो कि बहुत प्रचलित है, जिसका नाम वृक्षासन। इसका मतलब ये नहीं होता है कि यह वृक्षों की तरीके से सिर्फ सीधे खड़े रहना ही है। यह वृक्ष की तरह तो लगता है, लेकिन श्वास का लेना, निरंतर रूप से श्वास को कम करना, कैसे लेना है, क्या अंतर में कुछ ऐसी उपलब्धियां जिसे हम पाना चाहते हैं, कुछ ऐसी गतियां जिन्हें हम अपने रूप में उसे जानना चाहते हैं, ये सारी गतिविधि हमारे वृक्षासन के अंतर्गत आती है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि वृक्षासन, प्रकाशमय वृक्षासन क्यों है। सबसे पहले तो साधारण रूप में वृक्षासन होता है, दूसरा ध्रुव आसन जिसे भागीरथ आसन भी कहा जाता है, उसके बाद में द्वितीय प्रकार यानी कि क्रम पूर्ण एक आसन भागीरथ का दूसरा, ये सारे प्रकाशमय वृक्षासन के अंतर्गत आते हैं। वृक्षासन करने से पहले मैं बता दूं कि यह प्रकाश की तरीके से बहुत ही ज्यादा तेज और हमें रोशनी प्रदान करने वाला होता है। जिस तरीके से हम पेड़ों पे या फिर पहाड़ों पे पहुंचकर एक अलौकिक तेज को प्राप्त करते हैं, चारों तरफ एक रोशनी रोशनी, ठीक वैसे ही यह आसन को करने के बाद भी हमें अपने शरीर में कुछ इसी तरीके से अनुभूति होती है। वृक्ष के समान आकृति होने के कारण इसे वृक्षासन तो कहा ही जाता है। सर्वप्रथम समावस्था में हमें खड़े हो जाना है, फिर शरीर को संतुलित रखते हुए दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें और पैर के पंजों को बाएं पैर की जांघ के मूल पे लगाएं। ध्यान रहे दाहिने पैर के पंजे की उंगलियां जमीन पर टिकी रहें। इस प्रकार एक पैर पर संतुलन बनाएं। अब दोनों हथेलियों को मिलाएं और सीधे आकाश की तरफ उठाएं। दोनों हाथों की कोहनियां सीधी रखें और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। ये है प्रकाशमय वृक्षासन का पहला, जिसमें हमें सीधे खड़े हो जाना है, वजन एक पैर पर हमें पूर्ण रूप से डाल देना है, दूसरे पैर का तलवा, जांघ और पिंडली घुटने पर नहीं रखना है, हाथ जोड़कर नमस्कार मुद्रा में ऊपर की ओर उठाना है, नजर सामने और एक बिंदु पर ही टिकी होनी चाहिए, 20 से 30 सेकंड रुकें और सामान्य सांस को लेना है और छोड़ना है, धीरे धीरे बदल कर दूसरे पैर की ओर हम आ सकते हैं। समय इसका होना चाहिए 5 से 10 सेकंड, ताकि हमें फिर दूसरे पैर को ऊपर उठा करके हम अवस्था को चेंज कर सकते हैं। वापस ताड़ासन की स्थिति में आएं, यानी दोनों पैरों को उठाना है, पंजों को उठा करके पंजे नीचे

रहेंगे और एड़ियां ऊपर। अब आपको यही प्रक्रिया दाहिने पैर पर खड़े होकर दोहरानी है। इस प्रकार यह क्रिया लगभग क्रमशः 4 से 5 बार दोहरानी है। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए श्वास को लेंगे। पूर्ण स्थिति में स्वाभाविक श्वास प्रवास करें। हाथों को नीचे करते समय श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। इस तरीके से वृक्षासन के फायदे, आइए अब हम आपको बताते हैं। बैलेंस और एकाग्रता बढ़ती है, पैरों और टखनों की ताकत बढ़ाती है, पोस्चर सुधरता है, मन शांत होता है और एकाग्रता आती है, जो कि स्टूडेंट्स को ये जरूर से अपनाना चाहिए। हर एक फायदे से कहते हैं ना, हर एक योग के अलग अलग फायदे होते हैं, तो खास करके विद्यार्थियों को यह आसन जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ में पैर पिंडली पर आराम से रखें, ताकि दीवार कुर्सी का हल्का सहारा भी आप स्टार्टिंग में आप ले सकते हैं। पहले के दिनों में 10 से 15 सेकंड ही आप इसको कर सकते हैं और फिर आप इसे धीरे धीरे इसका समय बढ़ा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी सावधानियाँ। अगर आपको यह आसन करते समय चक्कर आते हो या घुटनों में दर्द हो, तो दीवार के पास सहारा ले सकते हैं। पैरों को सीधे घुटनों पर न टिकाएं। संतुलन बिगड़े तो तुरंत पोज को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक आसन और, जो कि इसी का दूसरा प्रारूप है, वो है भागीरथ आसन। वृक्षासन को करने के साथ साथ भागीरथ आसन जरूर करना चाहिए। भागीरथ आसन का नाम ध्रुव आसन भी है। भक्त ध्रुव एवं भागीरथ ऋषि ने इस आसन से साधना की थी, जो कि वृक्षासन का दूसरा प्रारूप है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने किया प्रकाश में वृक्षासन, जिसको करने से हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश का आगमन होता है। इस तरीके से हम फिर से मिलेंगे आपसे एक नई सीरीज में, एक अलग नाम और एक अलग योग के साथ में। तब तक के लिए करें योग, रहने दो। नमस्कार दोस्तों, योग की योग पाठशाला में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग सुबह नित नियम योग की योग पाठशाला में आकर योग प्राणायाम करते हैं, साथ में ही आज हम उसी सीरीज में योग के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला प्राणायाम जो कि आता है सुखासन। अब आप कहेंगे कि सुखासन कोई प्राणायाम तो नहीं है। जी हाँ, सुखासन प्राणायाम नहीं है, लेकिन प्राणायाम से पूर्व की स्थिति को हम एक प्राणायाम की स्थिति ही कहेंगे। यानी हम सुखासन में बैठते हैं और उसके बाद में ही हम प्राणायाम की स्थिति में जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्राणायाम शुरू करने से पहले हम कोई भी मुद्रा लेते हैं, जैसे वज्रासन, सुखासन और पलथी मार करके बैठना। तीन आसनों में से हम सबसे पहला जो कि एक आसन है, जो कि सुखासन, हम उसी की प्रक्रिया में जा करके यानी बैठ करके हम सारे प्राणायाम को करते हैं। तो आइए जानते हैं सुखासन के लाभ व सुखासन में बैठने के क्या हैं उपाय और कैसे बैठा जाता है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि प्राणायाम हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका तो है ही, साथ में औषधि का काम भी दिन ब दिन बनती जा रही है। आप सभी को पता है कि प्राणायाम हमारे लिए एक नित नियम में, जैसे हम सारे काम करते हैं, ठीक वैसे ही एक ऐसी पूर्ण भागीदारी बनती जा रही है। यदि मान लीजिए कि अगर हम खाना ना खाएं तो हमें एक कमजोरी का एहसास होने लगता है, या लगता है कि आज हमने कुछ अपूर्ण काम किया हुआ है। ठीक वैसे ही यदि अब हम योग प्राणायाम से जब जुड़ चुके हैं, तो एक दिन भी अगर हम ना करते हैं तो हमें वो एक अपूर्ण क्षति सी महसूस होने लगती है। तो आइए हम अपने प्राणायाम की ओर अब चलते हैं। पहला, यानी कि जैसे अभी हमने बताया आपको कि सुखासन, ये बिल्कुल इजी आसन है और रोजाना आप कर सकते हैं। इसको करने से आपके मन को मजबूती मिलती है और आप अपने मन को मजबूत बना सकते हैं। सुखासन ये सबसे आसान और सरल व्यायाम है, जिससे आपके मस्तिष्क को शक्ति मिलती है और एकाग्र चटने की जो क्षमता होती है वो दिन ब दिन बढ़ती है। विद्यार्थियों के लिए हम दोस्तों बताएं कि

0: FM।
1: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अन इंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9861 9786। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।

है ना। दिन जब सुहाना होता है कुछ ऐसे ही संगीत दिल से भी निकलते हैं। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग चौक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। और आज फिलहाल 9 तारीख है, यानी 9 ऑफ कोर्स 9 हो गई है, 9th ऑफ अक्टूबर। और इसी के बीच में आज की ये सनी सनी सी मॉर्निंग हम सभी को बहुत बहुत मुबारक। तो चलिए भाई, इस मुबारक दिन को और भी ज़्यादा खूबसूरत, आपको पता है ना कैसे मनाते हैं, यस ऑफ कोर्स, एज

0: ऑलवेज, यानी देख करके कि भाई आज का थॉट ऑफ द डे क्या है और आज का थॉट ऑफ द डे आपसे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जो आपके लिए और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरह से ज़रूरी भी है और दूसरी तरह से प्रेशियस भी। क्यों? क्योंकि हम जब थॉट ऑफ द डे को अपने संग ले जाते हैं तो वो थॉट ऑफ द डे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है। तो चलिए आज का ये थॉट ऑफ द डे लाइफ के किस एस्पेक्ट से हम देखें और कहाँ पे हमारी लाइफ की वैल्यू को बढ़ा रहा है, बिल्कुल जानेंगे आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। स्टे ट्यून्ड।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, तो आज का थॉट ऑफ द डे क्या कह रहा है? आज का थॉट ऑफ द डे कह रहा है कि सारी समस्या तब नजर आती है जब लोगों की नजर को आप अपनी नजर बना लेते हैं। मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट थॉट, इतना बेहतरीन थॉट है कि जैसे ही मैंने इसको समझा मुझे लगा वाओ, यही तो ऐसा थॉट है जिस पर मैं कब से कितनी शिद्दत से अमल करने की लगातार कोशिश करता चला आ रहा हूँ। एंड लिटरली बहुत ही खूबसूरत सा थॉट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थॉट है। क्यों? क्योंकि बड़ी प्यारी बात कही इस थॉट ऑफ द डे ने, सारी प्रॉब्लम्स तब आती है जब हम लोगों की नज़र को अपनी नज़र बना लेते हैं। अब सबका नज़रिया अलग अलग है, कोई किसी चीज़ को कैसे देख रहा है, कोई किसी चीज़ को कैसे देख रहा है। अक्सर लोग एडवाइस करते हैं, यार अच्छी सी जॉब करो, जॉब में एक फिक्स्ड सैलरी आती है, आपकी फिनेंशियल कंडीशन स्टेबल होती है, राइट? कुछ लोग कहते हैं बकवास है, बिजनेस दो दिन में आप पूरे मंथ की कमाई करा देता है, ये करियर के एस्पेक्ट से हुआ। फिर कहते हैं भाई स्किल्स में इस कोर्स को करो, कंप्यूटर में ज़्यादा स्कोप है। कोई कहता है नहीं, कंप्यूटर से ज़्यादा जो है वो किसी और स्किल में है। इस तरह लाइफ में एडवाइस करते हैं, तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो, अरे बोला करो, और जो बोला करता, अरे यार तुम कितना बोलते हो। तो हर चीज़ में हर जगह कहीं ना कहीं सबका नज़रिया अलग अलग होता है, हर कोई अलग अलग तरह से देखता है। पर आपको क्या करना है, कहना मानना है? ना जी ना, आपको खुद समझना है कि आपको करना क्या है। अब आप कहेंगे ये तो समझ में नहीं आता है, तो समझ से परे है जी, ऐसी बात है तो हमको गाइड करिए। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हर वो काम जब समझ में कोई चीज़ ना आए तो थोड़ा सा शांत हो करके खुद अपने आप को देखना और हर वो काम करने की कोशिश करना जो जो आपको ऑप्शन में लगता है कि हाँ ये किया जा सकता है। उनमें से जिन कामों में आपको समझ में आने लग जाता है कि आपके लिए काफ़ी इजी लग रहा है और आप उसको करेंगे, सो डेफिनेटली आप उसको चूज़ कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी आपको भाने लगती है, राइट? तो यही है ज़रा सा छोटा सा तरीका जो हमारी चीज़ों को चेंज कर देता है। और वैसे भी कहते हैं ना, एक अंदर की आवाज़ होती है, सो अगर उस अंदर की आवाज़ को आप सुन रहे हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि आप अपने लिए बेहतर हो रहे हैं दुनिया की नज़र में। इसलिए नहीं क्योंकि भाई हर किसी का नज़रिया अलग है, हर कोई बस अपनी ही बताएगा, बट सच कहूँ तो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? हाँ, आपके वेलविशर भी हैं एंड वेलविशर भी अपनी एडवाइस देते हैं आपके भले के लिए, बिल्कुल सच है, 100% इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 100% ये भी सच है कि उनसे कहीं ज़्यादा आप अपने बारे में जानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं, अपनी वीकनेस के बारे में जानते हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं, अपने सुकून के बारे में जानते हैं, और आपको चाहिए क्या और किस चीज़ से मिल सकता है वो आप बेहतर जानते हैं अपने वेलविशर्स से भी ज़्यादा अपने बारे में। सो इसलिए प्रायोरिटी मैंने हमेशा कहा है, खुद की ओपिनियन फाइनल फैसला आपका है ना, खुद से करने का ऑफकोर्स है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो छोटी होती है, कॉमन होती है, जिसमें हमें कोई इतना दिमाग नहीं लगाना होता, बस वो तो कोई एडवाइस पे कर लेते हैं कि ये नहीं है, चलो ठीक है कर लिया। लेकिन जहाँ आपको लगता है नहीं बड़ी चीज़ है या आपके लिए रेगुलर रहने वाली चीज़ है, कुछ भी ऐसा है हैबिट में आने वाला है, तो वो आप खुद चूज़ करने वाले होते हैं। और प्रॉब्लम तभी आती है जब हम दूसरे की नज़र को अपनी नज़र बना लेते हैं, क्योंकि हम वैसे करने लग जाते हैं और जब चीज़ें होती नहीं है तो हम इरिटेट होते हैं कि हमने तो दुनिया भर की सारी चीज़ें की, हमने अपने हिसाब से भी किया, हमने अगले के हिसाब से भी किया, बट कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हो ही इसीलिए नहीं रहा है क्योंकि हमने अपने पे उतना बिलीव कहाँ किया, हमने प्रॉपर किया कहाँ जो हमको लगता है। एंड इसीलिए हम बहुत परेशान रहते हैं कि भाई हमें करना जब सामने वाले के अकॉर्डिंग है तो जब मुसीबत या कोई परेशानी आएगी तो वो तो हम ही को झेलना है ना, तो उसमें जब हमने अपनी शुरुआत ही नहीं की है तो हम अपने हिसाब से कैसे टैकल कर पाएंगे, जाहिर है। बट अगर आपकी अपनी शुरुआत होगी, आपका अपना विजन होगा, रास्ता होगा, राहें होगी, आपका सफ़र होगा, तो डेफिनेटली आप उसको झेलने को लिए तैयार होंगे। यही कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। तभी आज का थॉट कहता है कि सारी प्रॉब्लम तब आती है जब लोगों की नज़र को आप अपनी नज़र बना लेते हैं। सो नज़र भी आपकी अपनी है और नज़र से बनने वाला नज़रिया भी आपका अपना ही
डेफिनेटली होना चाहिए। सो कैसा लगा आज का थॉट ऑफ द डे? मुझे तो बहुत जबरदस्त लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, मैं सच में इसकी कोशिश लगातार करता चला आ रहा हूँ कि भाई मेरी नज़र मेरी ही नज़र रहे, क्योंकि कब किस और की नज़र बनने लग जाए, कब कहाँ आप इन्फ्लुएंस्ड हो जाए इतने बड़े क्राउड से पता ही नहीं चलता है। इसलिए आपकी अपनी ओपिनियन ओनली वन हमेशा आपके लिए सबसे बड़ी होना चाहिए। यही कह रहा है आज के थॉट ऑफ द डे का। कैसा लगा बता दिए, और सुबह कैसी हुई आज की ये भी जरा खबर दे दिए चैट बॉक्स पे आकर के। रेडियो ग्यारह 99.6 FM के एप्लीकेशन की चैट पर हम आपका इंतजार कर रहे हैं।

0: तो चलिए इन्हीं सारे म्यूजिक की ध्वनियों के बीच में वापस से आपका वेलकम करें आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, और साथ ही साथ चलते हैं चैट बॉक्स की तरफ, क्योंकि चैट पर आपने लिखा है आज के मॉर्निंग के थॉट ऑफ द डे को सुनने के बाद अपने रिएक्शंस, और साथ ही साथ बताया कि भाई आपकी मॉर्निंग कैसी रही।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो फिर चलिए भाई, वक्त तो हो गया है बताने का कि क्या लिख भेजा है आपने चैट पर। सबसे पहला जो मैसेज है इरफान शाह का है, सपने उन्हीं के सच होते हैं जो इंसान आराम छोड़कर मेहनत करने को तैयार रहता है, क्योंकि किस्मत सिर्फ मौका देती है लेकिन सफलता अपनी मेहनत से हासिल करनी पड़ती है। क्या बात है, थैंक यू सो मच इरफान, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आशु जी लखनऊ से, सुप्रभात सर जी, सुप्रभात। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, जिंदगी आपकी है, बस अपने मस्त स्वभाव में जियो। वाह क्या बात है, बहुत मस्ती वाला थॉट है। एंड सविता दुबे जी लिखती हैं, सुप्रभात सभी को, आपको भी सुप्रभात, स्वागत आपका करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में सविता जी। प्रीति जी बहराइच से हैं, सर जी सुबह सुबह का वंदन नमन, आपको भी वंदन नमन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में प्रीति जी फ्रॉम बहराइच। सुनील यादव जी हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। आपने लिखा कि आप इटाह उत्तर प्रदेश से लाइव सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और इटाह उत्तर प्रदेश से सुनने वाले और भी जो हमारे श्रोता हैं उन सभी का स्वागत करते हैं गोंडा FM के मॉर्निंग चौक आरजे अदनान। इसके बाद हमारी गीता श्रीवास्तव जी हैं, गुड मॉर्निंग आरजे सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। प्रीति जी लिखती हैं, एकदम सच्चाई बयां करता हुआ औसम थॉट, सुनो सबकी लेकिन जो उचित हो वही करो अपने मन की, जब यही मूल मंत्र अपनाएंगे तभी अपनी मंजिल पाएंगे। वाह क्या बात है, बेशक सही फरमाया आपने। सविता दुबे जी लिखती हैं, बहुत सुंदर सुविचार, कहीं एकला चलो रे, या मैं एकला चलती हूँ, सो अकेले चलना ऑफकोर्स कहीं ना कहीं आपके जिंदा होने की निशानी होती है। आशु जी लिखती है, असहारे अक्सर छूट जाते हैं लेकिन हौसले साथ रहते हैं, अपनी ताकत पहचानो क्योंकि आपकी असली शक्ति आप खुद हैं। वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच कि आपको भी थॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। एंड यस ऑफकोर्स आप अपनी ताकत भी हैं, और जब ना बढ़ पाएं तो समझ लीजिए कि आप ही अपनी कमजोरी भी है ना। हमारी गीता जी ने अपना रिएक्शन दिया है, अपने विचारों, फैसलों और खुशियों पर दूसरों की कमांड नहीं होनी चाहिए, लाइफ आपकी है तो कंट्रोल भी आपका हो। थॉट मुझे बहुत कुछ कह रहा है पर लिखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वाह क्या बात है, कोई बात नहीं, लिखना इज़ डिफरेंट थिंग, बट थॉट आपसे कुछ कह रहा है और आप उसको महसूस कर पा रही हैं, दैट इज़ द बिग थिंग। ये बड़ी बात है, क्योंकि थॉट तो वैसे भी थॉट में जा करके मिल करके प्रोसेस के लिए होता है, और जो कि हो रहा है यही अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है, यही बड़ी बात है। एंड यस, मुझे भी पर्सनली आज का थॉट बहुत पसंद है, क्योंकि लगातार यही रहता है कि भाई अपनी ही नज़र से चीज़ों को देखा जाए, दूसरों की नज़र बनाने में ही प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि हमारे पास फिर बस आर्ग्यूमेंट्स रह जाते हैं, हमारे पास बहानासाइटिस की बीमारी रह जाती है कि भाई किसी और के कांधे पे रख दे, ये हमारी वजह से नहीं, फलाने की वजह से हुआ, फलाने ने कहा तो हमने कर दिया, इन्होंने कहा। एंड यार बिल्कुल ऐसे वही होता है कि अपनी बाइक की हैंडल छोड़ दो, कह दो अब जहाँ जाएगी वहाँ देखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है गिर ही जाएगी, लड़ जाएगी, उसमें देखा क्या जाएगा। सो लाइफ आपकी बाइक है और अपने ही हिसाब से आप उसको पकड़िए और चलिए, जिधर ले जाना है उधर मोड़िए आराम से, क्लच भी है, गियर भी है, ब्रेक भी है, सब कुछ तो आपके पास है, अब इंतज़ार क्या है। अच्छा नेक्स्ट सॉन्ग का, अरे भाई वो भी हम सुना देंगे, लेकिन थॉट जो आपने समझ लिया है वो बड़ी चीज़ है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यस, अब फाइनली चलते हैं अपने अगले सॉन्ग की तरफ जो आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है गुड मॉर्निंग गोंडा में। सो यस चले पक्का, हाँ राइट, तो चलिए इस खूबसूरत से सॉन्ग को सुनते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्तर 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

गलत तो जाहिर सी बात हो ही जाता है, और जब हम आते हैं तो वैसे भी ज्यादा गलत हो जाता है। फिलहाल वक्त ये बताने का है कि भाई आपको आने के बाद हम आपकी सिटी की अपडेट यानी गोंडा अपडेट्स से भी रूबरू कराने वाले हैं, यानी क्या कुछ हो रहा है गोंडा में और आज कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं आपके गोंडा शहर में, ये सब कुछ बताने वाले हैं आपको आपके रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। यस, इस गाने को सुनते हैं, वापस से आते हैं, आने के बाद बताते हैं आपको कि क्या कुछ हम आज ले चलने वाले हैं आपको सिटी अपडेट्स की तरफ।

0: कहीं भी तो नहीं जाना है, बस वापस से आना है 89.6 FM के मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि अब अर्जित दान आपको देने वाले हैं सिटी की अपडेट्स, यानी क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ आज होने वाला है आपके शहर सिटी में। सो चलिए चलते हैं अपने सिटी अपडेट्स की तरफ, सिर्फ और सिर्फ गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda with your favorite Arjit Khan.

So, सबसे पहले जो आज अपडेट आ रही है वो आ रही है जो जन शिकायत तो होती है उसके निस्तारण से 52% से ज्यादा शिकायतकर्ता जो है वो नाखुश है। जी हाँ, दरअसल करनैलगंज के कादीपुर निवासी ने बताया 15 अगस्त को IGRS यानी एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज कराई कि लोहे के खंभे में तार उलझे हैं और इससे करंट उतरने का खतरा है। विभाग ने शिकायत का निस्तारण दिखा दिया। फीडबैक में रोहित ने बताया भी कि ना तो अधिकारी मौके पर पहुंचे ना ही उनसे कोई कॉन्टैक्ट किया। सो मनकापुर तहसील के घारीघाट के औसानी बुजुर्ग निवासी राम अंजोर ने 3 जुलाई को किसान सम्मान निधि बंद होने की शिकायत की थी। विभाग ने इसे भी निस्तारित दिखा दिया। जांच में सामने आया कि राम अंजोर को 1 साल से राशि मिली ही नहीं थी। ये मामले IGRS पर शिकायतों के निस्तारण की स्थिति पर सवाल खड़ा करते हैं। सितंबर में शिकायतों के निस्तारण के बाद 1397 लोगों ने फीडबैक दिया। इसमें 660 लोग संतुष्ट रहे और उससे ज्यादा 737 ने असंतुष्टि जताई। यानी फीडबैक देने वाला हर 100 में से करीब 47% संतुष्ट है और 53% असंतुष्ट है। सो असंतुष्ट जो है जो शिकायत करता है वो संतुष्ट लोगों से 77% जो है वो ज्यादा है। सो IGRS पर शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग को कार्रवाई कर रिपोर्ट लगानी होती और सितंबर के आंकड़ों में 829 शिकायतकर्ताओं से संबंधित अधिकारी या कर्मचारी ने संपर्क किया जबकि 568 संपर्क ही नहीं किया ऐसे लोगों ने। सो कहीं ना कहीं जो है वो फिलहाल सोचने वाली बात है, लेकिन इसी को देखते हुए 41 अफसरों का जो है वो वेतन वो रोका गया है। सो IGRS पोर्टल की समीक्षा में ये स्थिति सामने आई है। 41 जिला स्तरीय अधिकारियों का 1 दिन का वेतन रोकते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तहसील ब्लॉक नगर निकायों और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस दिए गए हैं। शिकायतों के प्रभावी निराकरण में सुधार की चेतावनी दी गई है। पूरे मामले में रिपोर्ट DM प्रियंका निरंजन को दी जा रही है, ऐसा कहना है ADM प्रमोद झा का। सो फिलहाल ये इससे जुड़ी अपडेट है जो कि हमने आप तक बता दी है। अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है ऑफकोर्स मनकापुर में करियर काउंसलिंग को लेकर के, जो कि आज हो रहा है। सो उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत सेवा योजन विभाग से आज जवाहर नवोदय विद्यालय मनकापुर में करियर काउंसलिंग शिविर लगाया जाएगा। दोपहर 12 बजे से आयोजित शिविर में लखनऊ की करियर काउंसलर शिखा तिवारी स्टूडेंट्स को बेहतर ऑप्शंस चुनने और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के टिप्स भी देंगी। इसके अलावा चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, और अगली जो अपडेट है मेडिकल कॉलेज में दर्द और गैस की दवा का जो है वो संकट सामने आ रहा है। मेडिकल कॉलेज से जुड़ा बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय में जरूरी दवाओं का संकट बना हुआ है अभी भी। सो दर्द निवारक डाइक्लो और एक्लोफेनेक और ट्रामाडोल टैबलेट के साथ गैस की दवा उमेज भी उपलब्ध नहीं है। मरीजों को कई दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। कर्मचारियों के हिसाब से ग्लूकोज की DNSRL बोतल भी कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन का स्टॉक खत्म हो गया है। हॉस्पिटल में करीब 80 प्रकार की जरूरी दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल करीब 40 तरह की ही दवाएं मिल रही हैं। इनमें भी कई का स्टॉक बहुत लिमिटेड है। सो मेडिकल कॉलेज में रोजाना 1500 से ज़्यादा मरीज पहुँचते हैं। दवाओं की कमी से मरीजों और तीमारदारों की परेशानी जो है वो फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके बाद चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो 10 और 11 को कई ट्रेनें निरस्त और कई रूट बदले के लेकर आ रही है। सो आपको हम बता दें कि भाई गोंडा गोरखपुर रेलखंड पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग व्यवस्था शुरू करने के लिए 10 और 11 अक्टूबर को ब्लॉक लिया जाएगा। स्वामीनारायण छपिया मस्कनवा लखपत नगर मनकापुर के बीच में 18.82 किलोमीटर लंबे रेलखंड में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते गोंडा मनकापुर और अयोध्या से चलने वाली कई ट्रेनों का संचालन जो है फिलहाल वो प्रभावित रहेगा। कई ट्रेनें निरस्त रहेंगी, कुछ का जो रास्ता है वो बदला जाएगा। सो गोंडा से 10 और 11 अक्टूबर को चलने वाली 5:50-91 गोंडा सीतापुर सवारी ट्रेन और 11 और 12 अक्टूबर को चलने वाली 5:50-94 गोंडा गोरखपुर सवारी ट्रेन जो है वो निरस्त रहेगी। गोरखपुर से 10 और 11 अक्टूबर को चलने वाली 5:50-93 गोरखपुर गोंडा सवारी ट्रेन भी निरस्त रहेगी। मनकापुर अयोध्या और अयोध्या कैंट मनकापुर के बीच चलने वाली कई मेमो ट्रेनों का संचालन भी जो है वो प्रभावित होगा। सो आपका हम बता दें कि भाई
वंदे भारत समेत कई ट्रेनों का रास्ता बदला जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के हिसाब से 11 अक्टूबर को गोरखपुर के चलने वाली 2:25:49 गोरखपुर प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस मनकापुर गोंडा बाराबंकी के रास्ते चलेगी। ये ट्रेन अयोध्या स्टेशन पर नहीं रुकेगी। 10 अक्टूबर को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलने वाली 201-03 गोरखपुर एक्सप्रेस गोंडा बढ़नी गोरखपुर के रास्ते जाएगी। इस दौरान गोंडा से जो है इस ट्रेन का मस्कनवा बभनान बस्ती और खलीलाबाद में ठहराव नहीं होगा। 1:50:24 यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस भी जो है इसका रास्ता बदल कर चलाया जाएगा। ये ट्रेन अयोध्या कैंट अयोध्या धाम और मनकापुर और बस्ती में नहीं रुकेगी। इसके अलावा लंबी दूरी की कई ट्रेनों को गोंडा बढ़नी गोरखपुर और बाराबंकी अयोध्या कैंट वाराणसी के रास्ते चलाया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि मनकापुर जाने वाली ट्रेन अयोध्या कैंट तक ही होगी। 10 अक्टूबर को 1:42:33 प्रयागराज संगम मनकापुर एक्सप्रेस मनकापुर के बजाय अयोध्या कैंट तक जाएगी। 11 अक्टूबर को 1:42:34 मनकापुर प्रयागराज संगम एक्सप्रेस अयोध्या कैंट से चलाई जाएगी। इस तरह से 10 अक्टूबर को 1:42:31 प्रयागराज संगम बस्ती एक्सप्रेस बस्ती के बजाय अयोध्या कैंट तक आएगी। सो गोंडा में भी होगा त्यौहार स्पेशल ट्रेन का ठहराव। जी हाँ, आपको बता दें कि भाई त्यौहार में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से गोरखपुर के बीच त्यौहार स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ट्रेन नंबर 010-79 मुंबई गोरखपुर त्यौहार स्पेशल 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक हर रोज चलेगी। ट्रेन सुबह 6:35 तक गोंडा पहुंचेगी और 6:40 से रवाना होगी। मनकापुर में इसका ठहराव 6:57 होगा। जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि वापसी में ट्रेन नंबर 010-80 ये गोरखपुर मुंबई त्यौहार स्पेशल 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक हर रोज चलेगी। ये ट्रेन 4:27 पर मनकापुर और 5:00 गोंडा पहुंचेगी। ट्रेन का संचालन कुल 32 फेरों के लिए लगाया जाएगा। इसमें शयनयान के 11 और सामान्य द्वितीय श्रेणी के 5 और वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 4 कोच समेत कुल 22 कोचेज होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि भाई DRM ने गोंडा बढ़नी रेलखंड का निरीक्षण भी किया है। सो पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के DRM गौरव अग्रवाल ने कल जो है वो गोंडा बढ़नी रेलखंड का संरक्षा निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे ट्रैक स्टेशन यार्ड पॉइंट और क्रॉसिंग सिग्नल कर्व और पुलों का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण की शुरुआत सुभागपुर स्टेशन से हुई। DRM ने स्टेशन यार्ड में पॉइंट और क्रॉसिंग की स्थिति और लेआउट की जांच की। इसके साथ ही सिग्नलिंग व्यवस्था को भी देखा और संरक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश दिए। इसके बाद इटिया थोक स्टेशन के अधीक्षक कार्यालय पैनल रूम रिले रूम और सर्कुलेटिंग एरिया का निरीक्षण किया। अधिकारियों से संरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेते हुए परिचालन के दौरान सावधानी बरतने और व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के भी निर्देश जो हैं वो फिलहाल दे दिए हैं। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि सिटी से ही आ रही है आपके गोंडा शहर से और रुख करते हैं कि भाई कैसी अपडेट है। सो आपको हम बता दें अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पोषण और योग से एनीमिया दूर करने को लेकर के। जी हाँ, सो फिलहाल आपको हम बता दें कि भाई सेवा संकल्प अभियान के तहत कल बृहस्पतिवार को रेड क्रॉस यूनिट की IQAC के संयुक्त तत्वाधान में एनीमिया पर संगोष्ठी हुई। इसमें छात्राओं को एनीमिया के लक्षण उसके कारण और बचाव के उपाय भी जो है वो बताए गए। फिलहाल महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योत्सना शुक्ला ने कहा कि खान पान में पोषक तत्वों की कमी से एनीमिया की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सो छात्राओं से बातचीत करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी सवालों के जवाब दिए और बीमारी के बचाव के लिए संतुलित आहार पर जो है वो जोर दिया है। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है कंपनी के इंजीनियर्स ठीक करेंगे लिफ्ट। लिफ्ट को बंद लेकर के भी हमने अपडेट आपको गोंडा अपडेट में दी थी। सो मेडिकल कॉलेज की जो नई बिल्डिंग में लिफ्ट ख़राब है उसको कहीं ना कहीं अब सामने आने के बाद इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है और प्रधानाचार्य डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा ने निरीक्षण करके जायजा लिया है। इन्होंने बताया कि लिफ्ट की मरम्मत लोकल लेवल पर मुमकिन नहीं है, इसे लगाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स को बुलाया गया है, जल्द ही लिफ्ट शुरू कराई जाएगी। तब तक गंभीर मरीजों को पीछे की लिफ्ट से वार्ड तक पहुँचाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रधानाचार्य ने मेडिसिन सर्जरी मनोचिकित्सा और त्वचा रोग OPD का भी निरीक्षण किया। सो यस, इसके बाद जो है अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ
अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है विशेष रोजगार सृजन दिवस की तैयारियों के लेकर के। सो 12 अक्टूबर को बृहस्पतिवार को विशेष जो रोजगार सृजन दिवस है इसकी तैयारियों को समीक्षा को लेकर के आ रही है। कल इसकी एक बैठक भी की गई है और BDO आकांक्षा सिंह ने सचिवों के साथ मास्टर रोल डिमांड और VBG रामजी योजना की प्रगति भी जानी है और सभी कामों को अपने वक्त से पूरा करने पर जोर देने की बात भी कही है। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है आज के इवेंट्स की, यानी आज कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। सो सुबह 10 बजे से क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय की तरफ से मनकापुर में सेवा संकल्प अभियान के तहत करियर काउंसलिंग की जाएगी। इनोवेशन चैलेंज हो रहा है सुबह 11 बजे से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में इनोवेशन चैलेंज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा सुबह 11 बजे से। इसके अलावा व्यापार बंधुओं की बैठक भी होने वाली है। कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापार बंधुओं के साथ जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन भी बैठक करने वाली हैं। सो ये जो कुछ भी आपको बताया हमने, ये ऑफकोर्स आपके सिटी की अपडेट से जुड़ी हुई चीज़ें बताई, यानी क्या कुछ चल रहा है गोंडा में, क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ आपको बताया है। होप कि भाई आप तक जानकारी जो है सिटी अपडेट की ज़रूर पहुंच गई होगी। फिलहाल वक्त हो गया है आगे बढ़ने का और आपको एक बेहतरीन सा सॉन्ग सुनाने का, उसके बाद वापस आने का, और वापस आने के बाद जो है हम बातचीत का सिलसिला और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने वाले। फिलहाल आप ट्यून करे रहिए अपना गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: हाँ बच्चों, ए नीला झोला, नीली पन्नी, खड़े हो जा, खड़े हो जा।
2: खड़े हो गए मास्टर साहब।
1: गिनती सुनाओ जरा, और नहीं सुना पाए तो गेट आउट फ्रॉम द क्लास विद पन्नी। सुनाओ।
2: कितने तक सुनाओ मास्टर साहब?
1: अरे 10 तक सुनाते हो।
2: 1 2 3 4 5 7 8 9 10। हाँ, 1 2 3 4 5 7 8 9 10।
1: अरे छह कहाँ गया
2: मास्टर साहब? वो तो मर गया।
1: मर गया?
2: हाँ मर गया।
1: कैसे?
2: आज टीवी पर सुबह सुबह बता रहे

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

अच्छा क्या होता है कि जब हमारे मन में कोई ख्याल ऐसा आता है तो हम उससे भागने लग जाते हैं। कहा भी गया है कि लड़ो मत जागरूक बनो। आखिर किस चीज से लड़ना नहीं है बल्कि जागरूक बनना है। भाई आपने गौर भी किया होगा कि जब हमारे मन में कोई अनचाहा ख्याल आने लगता है तो हम क्या करते हैं, उसे हटाने की कोशिश में लग जाते हैं या तो फिर उससे लड़ने लग जाते हैं, है ना। यही तो नहीं करना है, ना उसको हटाने का सोचना है ना उससे लड़ना है, बल्कि उसको लेकर के जागरूक होना है। और ऐसे अनचाहा ख्याल जो है हर रोज़ का ही है, कोई आज नई बात नहीं है। हो सकता हो आज भी कई सारे थॉट आए हों और अभी आते जाएंगे। तो ये अनचाहे ख्यालों का लेकर आखिर करना क्या है, आखिर इनसे क्यों नहीं लड़ना है और इनसे जागरूक होने का मतलब क्या है, चलिए ये भी बताएंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। सो वापस से आइए, फिर आपको आपके ख्यालों की लड़ाई से दूर जागरूकता की तरफ जरा ले चलते हैं। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: A very good morning to all of you once again. So चलिए भाई, लड़ना नहीं है, जागरूक बनना है। आखिर किस चीज से नहीं लड़ना है? थॉट से। और जागरूक किससे बनना है? थॉट से। So करना क्या है भाई? वही तो हम बताने वाले हैं कि करना क्या है। So let's go.
2: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, सो लड़ना नहीं है, जागरूक बनना है। सो किस चीज से नहीं लड़ना है और कैसे जागरूक बनना है, राइट? सो आपने गौर किया है, जब हमारे मन में कोई ऐसा ख्याल आता है, कोई ऐसा थॉट जो हमको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, उसे हटाने की कोशिश में लग जाते हैं, या तो उससे लड़ने लग जाते हैं, या फिर अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करते हैं कि ध्यान ही भटका लो। फिर हम उसी विचार से और ज़्यादा जुड़ने लगते हैं। सो हम जितना उससे लड़ते जाते हैं, वो उतना ही हमें बांध लेता है। ये बिल्कुल एक दलदल की तरह है कि आप जितना बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारते हो, उतनी ही गहराई में आप धंसने चले जाते हो। सच में जब आप किसी विचार से लड़ते हैं या उसे दबाने की कोशिश करते हैं, तो आप अनजाने में अपने उसी ऊर्जा को ध्यान दे रहे होते हैं। और मन का एक सीधा सा नियम है, जिस चीज पर जितना ध्यान देंगे, उतना ही बड़ी और ताकतवर होती ही चली जाएगी। जी हाँ, जिस चीज पर आप जितना ज्यादा ध्यान देंगे, वो चीज उतनी ही ताकतवर और बड़ी होती चली जाएगी। और इत्तेफाक की बात है कि अगर हम परेशानियों से ही जूझते रहते हैं रोज और उसी के बारे में सोचते हैं, तो वही बड़ी हो जाती है, और अगर बेहतर सोचते हैं और करते हैं, तो वो बेहतर होता चला जाता है। सो फिर रास्ता क्या है, करना क्या है? सो रास्ता जो है वो लड़ना नहीं है ऐसे अनचाहे थॉट्स से, बल्कि सिर्फ देखना है। जब अनचाहा विचार आए तो उससे लड़िए मत, उसे एक दिन बुलाए, मेहमान की तरह कमरे में बैठने दे। आप किनारे खड़े होकर उसे ऐसे देखे जैसे सड़क पर गुजरती हुई किसी अनजान गाड़ी को देखते हो। उस विचार में आप उलझिए मत, बस जागरूक हो करके देखिए। और याद रखिए, ये वो विचार नहीं है, यानी आप जो है उस विचार को देखने वाले हो। सो जैसे ही संघर्ष करना आप छोड़ दोगे, उसके आप साक्षी हो जाते हो, वैसे ही उस विचार की पकड़ ढीली लगने लगती है। उस विचार से जुड़ना ही उससे ऊर्जा देता है। सो जब हम लड़ना छोड़ देते हैं, तो वो विचार कुछ देर मन के आसमान में मंडराता है, और फिर अगर हम साक्षी बने रहते हैं, तो उसकी ऊर्जा खत्म होने लगती है, फिर वो चुपचाप अपने आप विदा हो जाता है। सो असली जो सुकून है, वो हमारे थॉट्स से लड़ने में नहीं है, असली सुकून तो जाग जाने में है, और वही हमें करना है। बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि कुछ ऐसे ख्याल हैं जो हमको परेशान करते रहते हैं, और उस परेशानी बढ़ाने वाले ख्याल को किसी दिन हम आराम से कमरे में एक कोने में बैठ के उसको बुलाएं, और उसको बस देखें, उस विचार को, ये जो डरा रहा है, ये जो अजीब सा फील करा रहा है, उसके बारे में नहीं सोचना, बस उसे देखना है कि विचार है क्या। बिल्कुल वैसी जैसे बताया ना, किसी अनजान शख्स को, अनजान गाड़ी को हम लोग देखते रह जाते हैं, उसी तरह इसको भी देखते रहना है, और ये भी ऐसे ही निकल जाएगा। सो यही कहना है आज के थॉट ऑफ द डे के बाद, इस बात का जो हम फिलहाल आपसे विचार से संबंधित बात कर रहे हैं। सो आई होप कि भाई आप भी अब इस विचारों को समझ जरूर पा रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यही विचार है जो हमको एक अलग ही जहां में ले जाता है, राइट? सो चलिए, आज के बाद से अगर आपको कोई ख्याल ऐसा आता है जो डराता है, तो उससे आपको मुलाकात करना है ना, और साथ ही साथ मुलाकात ऐसे करना है कि उससे उलझना नहीं है, बल्कि उसके बारे में सिर्फ उसको देखना है, और वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट होगा, और फिर बाद में वो डरा नहीं पाएगा, वो चला जाएगा। इतनी ही छोटी सी बात है और इतना ही काम है, सो ये सब कुछ बेहतर कर देगा। सो आई होप कि भाई अब आप भी इस बात को समझ ही गए होंगे, और कहीं ना कहीं इस ख्याल को लेकर के आप भी ऑप्टिमिस्टिक हो गए होंगे। सो अच्छी बात है, लाइफ में वो होना ही चाहिए जो हम सोच रहे हों और कर नहीं पा रहे हों, लेकिन करने और सोचने के बीच में बस एक एक्शन लेने का ही फासला होता है। सो अगर आज इससे हम ये एक्शन ले लेंगे, तो डेफिनेटली अपनी उन चीज़ों को भी पा लेंगे जो हम फिलहाल कभी सोचते रहे हैं। सो कैसा लगा ये विचारों वाला जो बातचीत थी, इसका सोल्यूशन? चलिए, अगर ऐसा कोई विचार है, तो आज आप भी उन विचारों को जरूर मेहमान की तरह बुलाइए, और देखिए फिर देखिए कैसे कुछ ही दिनों में ये गायब हो जाएगा।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: सुनो, ये तुम्हारा टॉमी तब से मुझे घूर रहा है।
2: अरे जल्दी खा लो, लगता है ये अपनी प्लेट पहचान गया है।
0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: यस, कुछ मैसेजेस भी आ चुके हैं चैट बॉक्स पर। आइए देखते हैं भाई क्या क्या मैसेजेस आए हैं, किन किन के मैसेजेस आए हैं और क्या क्या लिखा है आपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो को सुनने के दौरान, यानी क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं हमारी बातों पर।
4: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अकान।

हाँ जी, तो भाई उसके बाद जो मैसेज आया है वो हमारे गीता श्रीवास्तव जी का आया है, और आपने लिखा है, सर आपने मॉर्निंग कैसी हुई पूछा था। मेरी मॉर्निंग तो टिफ़िन और पानी की बॉटल पैक करने पर ही टिकी हुई है, पहले बच्चे और अब बच्चों के पापा, रिटायरमेंट के बाद ही कुछ सुधर होगा। बहुत फैक्ट बात बता दी आपने। जी हाँ, सो चलिए भाई, आपका रूटीन बना हुआ है टिफ़िन का, और कहीं ना कहीं ये आपको बचपन से भी जोड़े रखता है। पहले बच्चों को पैक कर करके दिया, अब हस्बैंड को कर रही हैं, और कहीं ना कहीं वो फैमिली वाली फीलिंग जो है इससे जुड़ी हुई बहुत अच्छी है। एंड यस, इसके अलावा हम अपनी सुबह को कैसे शुरुआत करते हैं ये तो खैर हमारे हाथ में होता है, और अगर हाथ से बाहर है तो प्लीज़ हाथ में लेके आइए। अरविंद आ गए, लिखा है, काबिल लोग ना तो किसी को बेवजह दबाते हैं और ना ही किसी के सामने झुकते हैं। बेशक सही फरमाया आपने, थैंक यू सो मच अरविंद। लिखते हैं, हेलो आरजे अदनान सर, सुप्रभात, आपको भी सुप्रभात, आपका स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में अरविंद। एंड सविता दुबे जी को गाना पसंद आया है, आशु जी को आया है, गीता जी को आया है, क्या बात है, इतने सारे लोगों को इतना बेहतरीन गाना पसंद आ रहा है। आरिफ अंसारी फ्रॉम हैदराबाद से करते हैं, अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। एंड आसिफ आपका भी वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, और हैदराबाद से सुनने वाले और भी हमारे जो श्रोता हैं गोंडा एफएम को सुन रहे हैं, उन सभी का वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। तो भाई फिलहाल हम बातचीत कर रहे थे सुबह की शुरुआत और साथ ही साथ आपके रिएक्शंस के बारे में, सो ऑफकोर्स आपका रिएक्शन काफ़ी अच्छा आया है, और इसी खूबसूरत से रिएक्शन के चलते हम एक बेहतरीन सा गाना आपको सुनाना चाहते हैं। खुद से गा के नहीं यार, इतनी अभी अच्छी आवाज़ नहीं है बस, ठीक है, फिलहाल इस गाने को हम जब सुनेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा आपको फील होने वाला है, एंड होना भी चाहिए, है ना। सो ऑफकोर्स इसके बाद भी हम बता दें, अजय जी हमारे आ गए हैं, गुड मॉर्निंग से लिखा है, गुड मॉर्निंग टू यू अजय जी, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आसिफ जी, आसिफ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड अरविंद जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और काफ़ी बेहतरीन ऑफकोर्स माहौल बन गया हमारे और आपके सभी के दरमियाँ। तो चलिए क्यों ना एक हल्के से पुराने गाने को उठाया जाए, इसको सुना जाए, क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है और आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, लिटरली बता रहा हूँ। चलिए अगर 5 में से रेटिंग देनी होगी तो इस गाने को कितना देंगे आप, चैट बॉक्स में बताइए कितने स्टार्स आप भेजने वाले 5 में से।

यस, छाया है जादू है अभिजीत का जादू। आसिफ ने 4 स्टार दिए हैं आउट ऑफ 5 और 5 आउट ऑफ 5 आपने दिए आशु जी ने, वाओ क्या बात है। और 5 स्टार दिए हैं सविता दुबे जी ने और 5 आउट ऑफ 5 दिए हैं जोश मूवी का सॉन्ग अभिजीत भट्टाचार्य। थैंक यू सो मच गीता जी, सविता जी, आशु जी, आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई आप लोगों ने इस सॉन्ग को रेटिंग दिया और बता दिया कि भाई ये कितना खूबसूरत और कितना अलहदा और कितना बेहतरीन गाना है। फिलहाल कहते हैं कि लड़कों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिंपल होती है, पता है कैसे, बाइक की स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, सिंपली मतलब तेज़ चलाना, और उसके बाद जैसे ही किसी चौराहे पे या किसी ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं तो उसके बाद एक बंदा बैठता है हेलमेट लगा करके, बहुत आराम से जाता है, और जो पीछे 2 और बैठे होते हैं वो पैदल चल के चलने जाते हैं शराफत के साथ। सो तभी तो कहते हैं कि भाई बॉयज़ की लाइफ कितनी ज़्यादा सिंपल है, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वैसे आपको भी इसका एक्सपीरियंस होगा अपने दोस्तों के साथ बाइक पर बैठ करके स्पीड बढ़ाने का, राइट, और उसके बाद आगे ट्रैफिक पुलिस देखते ही शरीफों की तरह उतर करके आराम से एकदम भोला भाला चेहरा बना करके निकल जाने का, राइट।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9860 9876 9819176। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट, तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
6: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: एंजॉय तो फुल टू हो रहा है आप सभी का, है ना। राइट, सो मुझे लगा ही था कि भाई ये सॉन्ग भी आप लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि एंजॉय करने लायक सॉन्ग भी है। सो फिलहाल एक बार वापस से आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।
1: Now you're listening Good Morning Gonda with your favorite RJ Khan.

कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके काम को देख के लगता है कि सच में ये हमारी जिंदगी के नायक हैं। पूछिए कैसे, क्योंकि जब वो काम स्टार्ट करते हैं ऐसा लगता है कि कितने लोग इस काम को कर सकते थे और कितना ज़रूरी था और इनके करने से हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। जी हाँ, जैसे कि रियल हीरोज़ तो हम हमेशा बोलते हैं, लेकिन रियल हीरोज़ के सुपर डुपर हीरो तुकाराम मुंढे। कौन है तुकाराम मुंढे? आपने नाम भी बहुत बार सुना होगा। सो आपको बता दें कि ऐसी वैसी ख्याति नहीं, इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं कि अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर जो है वो तुकाराम मुंढे छाए हुए हैं। अब आप सोचेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स तक और तुकाराम मुंढे ऐसा आखिर क्या है और ऐसा क्यों? हम बताते हैं। सो सिर्फ 3 महीनों में 12,083 फूड इंस्पेक्शंस किए हैं और इसको करवा करके महाराष्ट्र में बदली है फूड सेफ्टी की तस्वीर। पूरे राज्य में जो है वो फूड सेफ्टी की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। किसके जरिए? तुकाराम मुंढे के जरिए। सो मतलब लिटरली ये यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है कि यार इतना ज़्यादा कोई कैसे कर सकता है। एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी बात कि जहाँ पर हम प्योर खाने की बात कहते हैं, हम मार्केट में निकलते हैं कुछ भी लेते हैं, सब कुछ मिलावट। इसके अलावा हम खेतों से मंगवाते हैं, हम अनाज खाते हैं, उसमें भी बड़े मसले होते हैं। उसमें भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि रासायनिक जो है वो उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। बट स्पेशली अगर हम बाहर की बात करें तो कोई भी ठेला, कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट अब नहीं बचा है जिसको हम लोग शक की निगाह से नहीं देखते हैं कि भाई इसमें भी मिलावट हो सकती है। पनीर की अपनी मिलावट है, चावल की अपनी मिलावट है, आटे की अपनी मिलावट है, और ऑफ कोर्स तेल की अपनी मिलावट है, सब्जियों की अपनी मिलावट है। इतनी सारी मिलावटों के बीच में तुकाराम मुंढे किसी सुपर हीरो से कम नहीं, जो महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी को लेकर के कई सारी फैक्ट्री बंद करा चुके हैं, कई सारे ब्रांड पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है और कई जगह ऐसी फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया है। सो ऐसे शख्स की शख्सियत जब बन जाती है तो वो अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे फ्रंट पेज पर, इतने बड़े अखबार पर छा जाते हैं। तो ये उनकी तारीफ के कसीदे नहीं होंगे तो क्या कहे जाएंगे। सो मुझे लगता है कि भाई ऐसे तुकाराम मुंढे की ज़रूरत हर राज्य में है ताकि हम फूड सेफ्टी को एंश्योर कर पाएँ और कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख पाएँ। वैसे तुकाराम मुंढे के बारे में क्या आपने भी सुना है? और अगर आपने सुना है तो क्या आप भी चाहते हैं उत्तर प्रदेश में भी अब ऐसा ही हो, बिहार में भी ऐसा हो, झारखंड में भी ऐसा हो, यानी इंडिया के किसी भी राज्य में जाए हमको फूड की सेफ्टी ज़रूर मिल जाए, वो इंश्योर किया जाए, वो ज़रूर किया जाए? अगर ऐसा आप भी सोचते हैं तो आप भी कमेंट करके हमको बता सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इसी मुद्दे से परेशान थे कि भाई मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है और कोई तो ऐसा आए जो इसके लिए इनिशिएटिव ले, जो इसके लिए किसी नायक से कम ना हो। और तुकाराम मुंढे बिल्कुल फिट बैठते हैं इसी नायक में। इवन उनकी वजह से अब और राज्यों में भी ध्यान दिया जा रहा है।

के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर्ड डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9018935394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अप

0: समाधान
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञान स्थल 9.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और देखिए ना, राहुल आ गए हैं फ्रॉम झुंझुनू राजस्थान से। गुड मॉर्निंग अदनान सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू यू। मैं बहुत बढ़िया हूँ और मुझे उम्मीद है कि भाई आप भी ज़रूर अच्छे होंगे। और राजस्थान की गर्मी तो आपकी वैसे भी फेमस है और रातें तो ठंडी होती ही हैं राजस्थान की। सो सबरिया साइकिल जो रहे गोंडा। आहा हा हा, क्या बात है। गीता जी हमारी लिखती हैं कि बिल्कुल सब जगह और हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए इसी तरह के ऑफिसर्स, तो फिर फर्जी रिपोर्ट्स सबमिट नहीं करनी पड़ेगी जैसा आपने शुरू में बताया था। थैंक यू सो मच। और हमारी प्रीति जी ने भी कहा ये ज़रूर फूड मिलावट पर रोक लगनी चाहिए। क्या बात है। और हमारी सविता जी लिखती हैं तुकाराम जी को सलाम करती हूँ, है ना, थैंक यू। एंड गीता जी लिखती हैं इतने ईमानदार तुकाराम जी को 21 साल की सर्विस में 25 बार ट्रांसफ़र हो चुका है, अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही है। सो शुरुआत में ऐसे ही होता है कि लोग आपको पीछे ढकेल देते हैं, लेकिन अगर आप लगे रहते हैं तो एक दिन इतना बड़ा फेस बन जाते हैं कि फिर लोगों को अपनी ज़रूरत पड़ती है कि आपके साथ खड़े हो जाए, राइट। एंड रोजली का है नाइस शो डियर आरजे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो चैट बॉक्स तक आए, उन लोगों का शुक्रिया जो हमको फ्रिक्वेंसी से सुन रहे हैं, साथ ही उन लोगों का शुक्रिया जो हमको रेडियो गार्डन और रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM के एप्लीकेशन से सुन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। बहुत मज़ा आया आज का शो, कैसा लगा हमको आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।

जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। जैसा कि आप सभी पहले से ही गांव की गूंज के कई एपिसोड सुन रहे हैं, तो अब मैं गांव की गूंज के नए एपिसोड लेके फिर से आ रही हूं, जिसमें हमारी मुख्य गायिका श्रीमती किरण पांडे की मधुर आवाज में मधुर मधुर गीतों की माला होगी और जिनका साथ दे रही हैं उनकी सह कलाकार श्वेता सिंह जी।
1: हेलो, मैं किरण पांडे। कितने दिनों बाद हम अपने गांव की तरफ जा रहे हैं और भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद है कि हम लोगों का गांव अयोध्या नगरी से होकर पड़ता है। चलो चलो, सरयू मैया को प्रणाम कर लेते हैं।
2: अरे किरण दीदी, क्या दूध जैसा निर्मल पानी है और कितना ठंडा है। हम लोग तो शहर में इतना शीतल जल देखने के लिए तरस गए हैं।
0: हाँ श्वेता, यहाँ की सरयू माँ के जल में इतनी सफेद सफेद लहरें, मेरा तो मन कर रहा है कि चलो हम सब लोग यहाँ पर थोड़ा स्नान करके हाथ मुंह धो लें। अरे किरण दीदी, ये मन में क्या गुनगुना रही हैं? चलिए घाट पे बैठकर इस गीत को गाते हैं। अरे लो, शीला काकी भी यहीं पे है। आओ आओ शीला काकी, सभी मिलकर यहाँ सरयू मैया की जय जयकार करते हैं। तो बोलो सरयू मैया की
3: जय।

0: वाह वाह किरण दी, अति सुंदर, अति मनमोहक और मन को मोह लेने वाला भजन गाया आपने, क्यों समता दी?
1: हाँ हाँ श्वेता, बिल्कुल मन को तो मोह ही लिया। चलो हम लोग यहाँ तक तो आ ही गए हैं, तो अब अयोध्या दर्शन करते हुए अपने गांव की ओर चलते हैं, क्यों किरण दी?
2: अच्छा चलो चलो चलते हैं। ये देखो ये चाय की दुकान। अरे हम लोग चाय की दुकान पर पहुंच गए। और श्वेता तुम्हें कुछ याद आया ये चाय की दुकान देखकर?
0: नहीं किरण दी, अभी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। समता दी क्या आपको कुछ याद आ रहा है इस चाय की दुकान को देखकर?
1: नहीं श्वेता, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा है, क्योंकि इतने दिनों के बाद तो हम सब यहाँ पर मिले हैं, तो मुझे तो ये चाय की दुकान बिल्कुल भी नहीं याद है।
2: अच्छा सुनो, मैं सबको याद दिलाती हूँ। याद करो वो सोंधी सोंधी खुशबू अपने गांव की। बहुत दिन बाद हम लोग वापस आए हैं ना अपने गांव की तरफ, तो इसलिए नहीं याद आ रहा है। याद करो वो कुल्हड़ की चाय जो हम लोग बैठ के पीते थे, है ना? तो अरे भैया जरा चाय दे देना तीन, और वो कुल्हड़ वाली चाय देना। अरे छोटू कितना बड़ा हो गया छोटू। अरे छोटू सुनना, जरा सुनना, तीन चाय देना हमें।
3: अरे किरण दीदी आप कितना दिन बाद आवागा है, कहाँ रहे हो आप सब, का हाल चाल है? दीदी चायवा तो हम पिलाई दिए, लेकिन कुछ गौनेवा सुनावे पड़ी।
2: हाँ हाँ क्यों नहीं छोटू, हम तुम्हारी पसंद का कोई गीत सुनाएंगे अभी। चलो चलो सब लोग मिलकर ये गीत छोटू के लिए सुना दें।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं
1: क्यों नहीं क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं।

0: वाह दीदी, बहुत नीक गायो आप सब है, हम इतनी बधैया सुनाई दीन जाए।
1: ठीक है छोटू, ठीक है, तुम कहते हो तो एक बधाई गीत सुना ही देते हैं। श्वेता, वो बधाई गीत जो तुम अक्सर गाया करती थी राम जी का, वही सुना दो।

0: वाह भाई वाह, ये तो बधाई गीत भी हम लोगों ने गा लिया।
1: अरे किरण दी, हम सब ने बधाई गीत तो पहले ही गा लिया, मतलब प्रभु श्री राम के जन्म के पहले ही बधाई तो दे दी, और सोहर कहाँ है हमारा?
0: अरे भाई, सोहर मुझे याद है, और सबको पता है कि सोहर क्यों गाया जाता है।
1: नहीं किरण दी, सोहर के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है, थोड़ा आप जरा बताएं।
0: अरे भाई, सोहर मुझे याद है, क्या सबको पता है सोहर कब गाया जाता है? तो सुनो, सोहर तब गाया जाता है जब बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेते समय सोहर गाया जाता है, विवाह में भी गाया जाता है, लेकिन सोहर जो मेन होता है वो बच्चा जन्म लेता है तब गाया जाता है। तो एक सोहर मुझे याद है समता, मैं थोड़ा गुनगुनाती हूँ, ठीक है?

0: हाँ हाँ किरण दी, यही सोहर तो हम सोच रहे थे कि आप हमें सुना दें, तो चलो हम सब मिल करके अब यही सोहर सभी गाएंगे, क्यों किरण दी?
1: हाँ हाँ बिल्कुल।

0: वाह किरण दी, मजा आ गया। अवधि हमारे अवध प्रांत की मुख्य भाषा है और कुछ भी हो मुझे तो सुन के बड़ा ही मजा आ गया, क्यों श्वेता?
1: हाँ हाँ समता दी, क्यों नहीं, आनंद तो आना ही था। एक तो हम आज सभी सहेलियां मिले हैं अवध में और उसी में हमारी प्यारी किरण दी की आवाज, आहा क्या बात है, और यहाँ की मिट्टी की खुशबू और किरण दी की आवाज, क्या ही बात है।
0: यह हम सभी जानते हैं कि यह हमारी अयोध्या नगरी एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी है और यह सरयू नदी के तट पर स्थित है और अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत है एवं प्रभु श्री राम की जन्म स्थली होने के कारण अयोध्या को मोक्षदायिनी एवं हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल भी कहा जाता है।
1: वाह, वो कॉलेज के दिन फिर से लौट कर आ गए हैं, वही मस्ती बिना किसी टेंशन के, सचमुच कितना मजा आ रहा है। किरण दी, अयोध्या कितनी बदल सी गई है।
2: हाँ सच में श्वेता, ये लता मंगेशकर चौराहा, ये राम की पैड़ी, ये तो हमारी भगवान राम की नगरी बिल्कुल मॉडर्न लुक दे रही है। अब तो हर गली घूम कर ही जाएंगे, तो चलो हनुमान गला की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और पुजारी जी के साथ मिलकर हनुमान जी के भजन गाते हैं।

0: वाह वाह किरण दी, बहुत ही मधुर भजन था। और क्या इसी के साथ आपको एक छोटी सी मुझे कहानी याद आ रही है जो कि हनुमान जी से है और प्रभु श्री राम और माता सीता जी से है, तो क्या किरण दी मैं छोटी सी ये कथा आपको सुनाऊं?
1: हाँ क्यों नहीं, सुनाओ सुनाओ।
0: तो आइए मैं एक छोटी सी ये कथा हनुमान जी की सुनाती हूँ। एक दिन माता सीता अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थी, तब तक हनुमान जी आज्ञा पाकर कक्ष में प्रवेश किए तो देखा माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। जिज्ञासा से श्री हनुमान ने माता सीता से पूछा, माते यह आप क्या लगा रही हैं? तो माता सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रभु श्री राम की दीर्घ आयु के लिए अपने मांग में सिंदूर लगा रही हूँ। इसको लगाने से प्रभु दीर्घ आयु रहेंगे। इतना सुनते ही हनुमान जी ने भी अपने पूरे शरीर पर वह नारंगी रंग का सिंदूर लगाकर सभा में प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच गए और वहां प्रभु श्री राम जी के पूछने पर कहा, यदि माता सीता जी के एक चुटकी सिंदूर से आप दीर्घ आयु हो सकते हैं तो हमने तो पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लिया।
2: समता दी की कहानी सुनते सुनते कब हम लोग कनक भवन आ गए पता ही नहीं चला, और किरण दीदी कुछ गुनगुना रही हैं, तो चलिए किरण दी की स्वर में मीठा सा गीत सुन लेते हैं।

0: किरण दी अवधि में आई हैं, तो सारे गीत अवधि में ही सुना रही हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन किरण दी और श्वेता, एक छोटी सी एक और मुझे कहानी याद आ रही है, तो कहिए तो मैं छोटी सी कहानी और सुना दूं।
1: सुना दो, सुना दो।
0: कनक भवन जैसा कि देखने में इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है, वह अंदर से भी अति सुंदर और मनमोहक छवियां हैं। और क्या आप सभी को पता है, यह भवन प्रभु श्री राम जी से विवाह के तुरंत बाद महारानी कैकई जी के द्वारा देवी सीता को उपहार में दिया गया था। यह देवी सीता जी व भगवान राम का महल भी है।
1: अच्छा, तो चलो अब हम लोग चलते हैं। और चलते चलते मुझे एक राम विवाह गीत भी याद आ रहा है, तो हम लोग गाते हुए चलते हैं।

0: आप कहाँ चलें?
1: चलिए चलिए, अब तुलसी उद्यान की तरफ चलते हैं। वही समता दीदी जो पूरी सब्जी लाई हैं, वो खाते हैं।
2: वाह क्या बात है, अरे वाह, लहसुन की चटनी किसने बनाई श्वेता? मम्मी ने या भाभी ने? और श्वेता बचना बंदर।

0: ये तो पुरानी अयोध्या का वर्णन है। नया घाट लता मंगेशकर चौराहा, यह नई अयोध्या की पहचान है। समता, क्या तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में?
1: हाँ किरण दी, थोड़ा बहुत जानकारी है जो मैं आपको बताती हूँ। जब हम यहाँ पढ़ते थे तब 14 कोसी मार्ग सब कच्चा था, पर अब कितना खूबसूरत बन गया है। ये लता मंगेशकर चौराहा नई अयोध्या की पहचान है। और किरण दी जानती हैं, इस चौराहे पर 40 फीट लंबी और 14 टन वजनी वीणा को स्थापित किया गया है और इसके चारों तरफ 92 कमल के फूल भी लगाए गए हैं। तो किरण दी, आपसे ये गुजारिश है कि लता दीदी के गाए हुए गीतों में से कुछ 4 लाइन आप अपने स्वर में गुनगुना दीजिए।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं समता।

0: वाह वाह किरण दी, लता दी की तो बात ही कुछ और है। और आपने उनके जो गीत गाए हैं आज आपकी आवाज़ में सुन के बड़ा ही अच्छा लग रहा है।
1: और पता है तुम दोनों को कि छोटी दिवाली के दिन दीपोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ लाखों की संख्या में दिए जलाए जाते हैं।
0: तो ठीक है किरण दी, अब की बार हम लोग दीपोत्सव देखने जरूर आएंगे।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पक्का वादा। और पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही।

0: अच्छा अब चलो, अपना गांव हमें पुकार रहा है, वहां की माटी हमें बुला रही है। अब हम लोग गोंडा के नौबस्ता गांव में मिलेंगे। किरण दी और श्वेता, सरयू आरती का समय हो गया है, तो चलिए सभी आरती करके अपने गांव की ओर चलते हैं।
1: हाँ, क्यों नहीं?

पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: मेरा अंतिम संस्कार गीली लकड़ियों पर मत करना। मैंने कुछ सूखी लकड़ियां अपने लिए बचा कर रखी हैं, मेरा अंतिम संस्कार उनसे करना। क्योंकि मरते वक्त जब तुम मेरा अंतिम संस्कार करोगे तो उन गीली लकड़ियों से धुआं उठेगा, लोगों की आंखों में जाएगा और उनकी आंखों से पानी आएगा, और मुझे यह गलतफहमी हो जाएगी कि लोग मेरे लिए रो रहे हैं। कम से कम मरते वक्त तो ये गलतफहमी खत्म होनी चाहिए। ये लाइन पता किसकी है?
1: यस मैम।
0: किसकी?
1: नाना पाटेकर की।
0: बिल्कुल, ये लाइन नाना पाटेकर साहब की है, एक ऐसे उम्दा कलाकार जिन्होंने कल हमें अलविदा कह दिया, जिनकी एक्टिंग को देखने के बाद लगता था कि वो उस जिंदगी को जी रहे हैं, ना कि कोई किरदार निभा रहे। उन्होंने कभी कभी विलन्स का रोल किया है, कभी कॉमेडियन, तो कभी लोगों को इतना हंसाया है कि लोगों के पेट में दर्द होने लगा, कभी अपने एक्टिंग के जरिए इतना ज़्यादा भावुक किया है कि लोगों की आंखों में आंसू आ गया। जब उन्होंने अपने जज्बातों से भरे कुछ शब्द अपने मुंह से निकाले और कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें पूजता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कम से कम मरने से पहले तो तुमसे ये लाइन सुन लूँ, तो ऐसा लगता है कि मानो एक तरफा मोहब्बत सच में किसी के अंदर से चीख कर बोल रही हो कि बस एक बार, तुम बस एक बार कह दो, मुझे पूरी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हें खुदा की तरह पूछता आया हूँ। और ये होता है ना, जिसने भी एक तरफा मोहब्बत की होगी उसे वो महसूस हुआ है, वो भी यही कहना चाहता था उससे जिससे वो कभी कह नहीं पाया, और नाना पाटेकर के इन शब्दों ने उसके जज्बातों को आवाज़ दे दी। इसीलिए तो उनको मैं कहती हूँ कि बहुत उम्दा कलाकार हैं, और बड़े अफसोस की बात है कि हमने एक ऐसे दिग्गज कलाकार को खो दिया जिन्होंने हमारे लिए इतनी गजब की एक्टिंग की है, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में ऐसे किरदार हमको दिखाए हैं, ऐसे बेहतरीन किरदार पेश किए हैं, जिन्होंने हमें हंसाया है, हमें रुलाया है, इवन जिंदगी जीने का कई बार सही राह भी दिखाई है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो चौक की उन्नति, मौजूद हूं आप सभी के साथ, और आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली लाइव, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर, गोंडा शहर की धड़कन। और ये ट्रिब्यूट है हमारे उस दिग्गज कलाकार को जिन्होंने कल हमें फाइनली अलविदा कह दिया। ये शॉकिंग न्यूज़ था मेरे लिए, क्योंकि जब मैं इंस्टाग्राम खोलकर देख रही थी, कल मेरा ऑफ था और मैं बस सो रही थी, मेरी सोते सोते आँख खुली, न जाने क्यों मेरा हाथ फ़ोन पर गया और स्क्रॉल करने लगी, जैसे इंस्टाग्राम ओपन किया पहला पोस्ट था कि नाना पाटेकर रेस्ट इन पीस। मुझे लगा शायद किसी का बहुत घटिया मजाक होगा, पर नहीं, सेकंड पोस्ट फिर यही थी, और मुझे यकीन भी नहीं हुआ। मैंने गूगल किया, बात सच थी, गूगल पे भी यकीन नहीं कर पाई, जाकर सवाल करने लगी दूसरों से, क्या ये बात सच है? और जब उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सच है, तो मेरी आंखों की नींद तक उड़ चुकी थी, ये सोचकर कि जिनकी एक्टिंग को मैं आज तक इतनी रिस्पेक्ट देती आई हूँ, जिनकी एक्टिंग मुझे इतनी नेचुरल लगती है कि लगता है मानो कोई असल ज़िंदगी का इंसान मेरे सामने खड़ा हो, जिनको शक्ति फिल्म में देखने के बाद लगा था कि अगर एक हीरो विलन बन जाता है तो कितना खौफनाक लगता है, जिनको देखने के बाद वेलकम फिल्म में जब उनको मैंने देखा उनकी सिंगल सिंगल हर एक डायलॉग याद कर लिए, जिनके डायलॉग को अक्सर मैं कहीं ना कहीं मजाक में बोलती रहती हूँ कि भगवान का दिया सब कुछ था, पैसा था, दौलत थी, शोहरत थी, एक तूफ़ान की कमी थी, लगता है वो भी शैतान ने पूरी कर दी, वो इंसान अब हमारे बीच रहा ही नहीं। यूँ तो मुझे बॉलीवुड में किसी से भी मिलने का शौक नहीं, बट कुछ ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जिनसे मुलाकात करने का सपना सपना ही रह जाता है, जिसमें एक हमारे नाना पाटेकर साहब हैं, एक इरफान सर थे, और अफसोस की बात ये दोनों ही कलाकार हमारे बीच में फिलहाल मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट सुहानी, और आइए उनसे बात करते हैं थोड़ी सी। हाय सुहानी।
1: हेलो मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, और कहूँ तो नहीं भी ठीक हूँ।
1: हाँ, क्योंकि सब ठीक हैं पर अंदर से कोई नहीं ठीक है।
0: तुम्हें नाना पाटेकर की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है?
1: मैम वेलकम बैक।
0: वेलकम, वो किरदार अपने आप में यूनिक है,
1: बहुत अच्छा मैम।
0: कंट्रोल कंट्रोल, क्या करूं मैं इसका, इसको तो मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता हूं।
1: यस मैम, वो
0: ये हमारे अंदर के जज्बात होते हैं ना, जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और उसकी ऐसी ऊटपटांग हरकतें देखकर बहुत नाराजगी आती है, पर उसे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम उससे बहुत प्यार करते हैं। ये लाइन भले बहुत नॉर्मल सी लगती है, लेकिन जिस अंदाज में वो बोली गई है, इट वॉज ग्रेट
1: मैम। वो लास्ट वाली लाइन, लगता है सारे प्रॉब्लम्स को किसी ने अपना ही एड्रेस दे दिया है।
0: हाँ, और जब कोई सवाल करता था उनसे कि ऐसा क्यों, तो उसको उठाकर फेंक कर बोलते थे, जा पूछ किया।
1: यस मैम, बहुत अच्छी एक्टिंग थी उनकी, लग नहीं रहा था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हाँ ये रियल है।
0: वो एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा इंसान, एक ऐसे दिग्गज कलाकार जिनके लिए रिस्पेक्ट अपने आप निकलती है। उन्हें ये नहीं करना पड़ता यार कि ज़बरदस्ती है कि वो एक बॉलीवुड के स्टार हैं तो उनके लिए इज्जत लेकर आनी पड़ेगी, नहीं, अपने आप आ जाती है।
1: यस मैम, क्योंकि उन्होंने एक्टिंग एक्टिंग समझ के नहीं किया, उन्होंने खुद को उसमें ढाल दिया कि नहीं, अब मेरी दुनिया यही है, मुझे यही करना है।
0: और कमाल की बात बताऊँ, उनके लिए एक्टिंग का मतलब था खुद के खुद को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, वो बस खुद को दिखाना चाहते थे।
1: वो किसी के प्रेशर में आके एक्टिंग नहीं करते थे,
0: उन्हें एक्टिंग का शौक था, वो बचपन से एक्टिंग करते थे। तुमने कभी सोचा है कि तुम स्कूल में जो प्ले कर रही हो वो आगे जाकर तुम्हारे लिए बॉलीवुड का रास्ता खोलेगा? नहीं ना।
1: नो मैम,
0: मैं भी नहीं सोचती। इवन मैं तो प्ले करने के लिए रेडी भी नहीं होती थी, मुझे लगता था डायलॉग्स में क्या ही डायलॉग्स बोलूंगी मैं, और डायलॉग के बीच में मैं क्या बोलूंगी, नहीं पता चलता ना। पर डायलॉग के बीच में भी एक डायलॉग होता है जो सुनाई नहीं पड़ता, जो सिर्फ ऑडियंस महसूस करती है, और उसे महसूस वही करा पाता है जो उस जज्बात को समझता हो, जो उन चीज़ों को समझता हो, जिसकी आंखों में वो नज़र आता हो। और वो आंखें नाना पाटेकर साहब की बहुत बेहतरीन बोलती हैं, एक खामोशी भी आप महसूस करते हैं।
1: यस मैम,
0: उनके डांस परफॉर्मेंस की बात करें तो किया किया में इतना बढ़िया डांस है कि भाई मज़ा आ जाता है। शक्ति में बात करें तो इस कदर खौफनाक विलन का रोल किया कि करिश्मा कपूर तो छोड़ो, मैं बैठकर जब देख रही थी तो खुद में डर लग रहा था कि अगर मैं इसके अंदर होती और नाना पाटेकर साहब असल में ऐसे होते तो क्या होता। उसके अलावा जब वो ये कहते हैं कि दुनिया में कोई किसी को नहीं बचाता, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद अपने हिस्से की लड़नी होती है, लगता है ना कि एक्टिंग नहीं, किसी ने सच बोल दिया हो।
1: यस मैम,
0: कि खुद को खुद ही बचाना पड़ता है, यहाँ कोई तुम्हारे लिए नहीं लड़ता,
1: सब तुम्हारे अगेंस्ट लड़ते हैं।
0: और एक और लाइन है जो आई थिंक इंस्टाग्राम की बहुत वायरल लाइन है, क्यों समझा रहा हूँ मैं इनको,
1: समझने वाले हैं नहीं,
0: है ना, नाना पाटेकर खड़े होकर चिल्ला रहे होते हैं कि क्यों समझा रहा हूँ मैं इनको, और लोग कहते हैं कि क्लास में जब बच्चे बैठे हों तो टीचर्स भी यही कहते हैं, क्यों समझा रहा हूँ मैं इनको। वो चीज़ें भले ही उस वक्त मजाक लगती थी, बट इस कदर इस हुनर के साथ उन्हें रिप्रेजेंट किया गया था कि जब आप सोचते हैं कि ऐसे दिग्गज कलाकार जिनसे मैं कभी मिल नहीं पाई, जिनसे शायद मेरा बहुत कुछ सीखने का मन था, जिनसे एक्टिंग सीखने का मन था, मेरा एक सपना था कि नाना पाटेकर से मिलके उनसे एक्टिंग की कुछ टिप्स लूँगी, मैं भी एक्टर बनूँगी, हालांकि वो सपना सपना रह गया। फिलहाल ये ट्रिब्यूट है हमारे नाना पाटेकर साहब को, करते हैं उनके बारे में कुछ और बातें, पर एंजॉय करते हैं उनकी फिल्म वेलकम का किया किया गाना। मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना शो ज्ञान असली लाइफ विद राजनदी।

0: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने शो ज्ञानस्थली लाइव में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो चौक की उन्नति, मौजूद हूं आप सभी के साथ। और ये है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। एक छोटा सा ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से हमारे प्यारे और बहुत ही उम्दा कलाकार नाना पाटेकर साहब को। सुहाने, तुम्हें पता है, नाना पाटेकर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें सिगरेट पीने की बहुत गंदी आदत लग गई थी और वो एक दिन में लगभग 60 से ज़्यादा सिगरेट पी जाते थे।
1: तो मैम, इतनी सिगरेट एक दिन में?
0: हाँ, देखो ये बात होता है ना कि हमें लगता है कि जो स्टार्स हैं उनके अंदर कोई गलत आदत हो ही नहीं सकती है, बट नाना पाटेकर अपनी आदतों को, जो ख़राब आदत है, उन्हें भी खुल के बोलना पसंद करते थे। वो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बोलते थे, वो रियल लाइफ में भी करते थे। अगर उन्हें लगता था कि मेरी कोई ऐसी आदत है जो ख़राब है, तो लोग छुपाते हैं कि हमारे फॉल्ट किसी को पता ना चले।
1: यस मैम,
0: हमारे बारे में किसी को पता ना चले, मेरे बारे में पूरी दुनिया सिर्फ अच्छा सोचे, अच्छा जाने। बट कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो अपनी खामियों को भी बताते हैं, अपनी गलतियों को भी बताते हैं, वो ख़राब आदतें भी बताते हैं, क्योंकि इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता।
1: यस मैम,
0: और परफेक्शन के पीछे हर दूसरा बंदा भागने की कोशिश करता है ना।
1: यस मैम,
0: हमें लगता है यार कि हर एक इंसान परफेक्ट है, ये बॉलीवुड स्टार्स हैं, ये तो कितने परफेक्ट होंगे। कई लोग जिनको देखकर हम कहीं ना कहीं उन्हें अपना आइडल बना लेते हैं और लगता है कि ये तो खुदा हो चुके हैं। yes, और खुदा तो कभी गलती नहीं करता।
1: यस मैम,
0: वहीं पर वो सामने आकर बताते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ और खामियां मुझ में भी हैं,
1: गलतियां मैं भी करता हूँ।
0: वो अलग बात है कि इन गलतियों की सीख कभी कभी ऐसे मोड़ पर मिलती है जो आपने सोची भी ना हो।
1: यस मैम,
0: नाना पाटेकर साहब बताते थे कि उन्हें सिगरेट पीने की जो आदत थी ना, उनकी वजह से उनकी जो कार थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिगरेट की स्मेल होती थी, लोग बैठना पसंद नहीं करते थे। अब तुम्हें और मुझे अगर सिगरेट की स्मेल नहीं पसंद है, तो हम उस कार में, उस जगह पे, उस दुकान पे क्यों खड़े होंगे जहाँ पे सिगरेट की स्मेल आ रही है।
1: यस मैम, हम वहाँ से दूर हट जाएंगे,
0: है ना।
1: इवन
0: कोई अगर हम सामान ले रहे हैं और कोई हमारे पास खड़ा होकर सिगरेट पीता है, तो हम उसको बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं।
1: यस मैम,
0: जज करते हैं, जिसको हम इंस्टाग्राम की भाषा में कहते हैं बॉम्बास्टिक साइड आइज, तिरछी नज़रों से देखकर उसे ऊपर से जज करते हैं, और वो बेचारा समझ जाता है, वो तुरंत हट जाता है वहाँ से।
1: यस मैम,
0: नाना पाटेकर साहब भी बताते हैं कि उनकी कार में कोई बैठना पसंद नहीं करता था उनकी सिगरेट पीने की वजह से। फिर एक दिन उनकी बहन ने कुछ ऐसा कहा जिससे उनकी आदत छूट गई।
1: क्या मैम?
0: उनकी बहन ने उनसे कहा कि पता नहीं अभी और क्या क्या देखना मेरी ज़िंदगी में बाकी है। उनकी बहन के बच्चे का देहांत हुआ था, और उन्होंने ये नहीं कहा तुम सिगरेट छोड़ दो, उन्होंने ये कहा कि पता नहीं मेरी अब इस ज़िंदगी में और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। बच्चे की मौत का गम था, नाना पाटेकर को ये बात दिल पर लग गई, और उन्होंने अपनी बहन की इस बात को इतनी गहराई से समझा कि उन्होंने अपनी इस आदत को, इस लत को छोड़ दिया। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, जिनको भी सिगरेट, शराब या फिर इन चीज़ों की आदत लग जाती है ना, लत लग जाती है, ये बहुत गंदी होती है। हम कोशिश करते हैं छोड़ने की, लेकिन हमारा दिमाग छोड़ने नहीं देता।
1: यस,
0: तुम दूध पीना छोड़ सकते हो लेकिन शराब नहीं छूटती। तुम पत्ता गोभी खाना बंद कर सकते हो लेकिन बाहर के मोमोज नहीं छूटते, है ना।
1: यस मैम,
0: तुम घर में बैठ के लॉन्ग इलायची छोड़ सकते हो क्योंकि वो तो तीखी लगती है ना, बट सिगरेट, तम्बाकू, क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग के साथ खेलता है और इसकी आदत बहुत गंदी होती है। सोचो, एक ऐसा कलाकार जिसको दिन में 60 सिगरेट पीने की आदत लगी हो, अचानक से उसने एक भी ना पिया हो, कितना मुश्किल हुआ होगा।
1: बहुत ज़्यादा।
0: खुद पर कंट्रोल करना, खुद को संभाले रखना, खुद को रोकना कि नहीं ये नहीं खाना है। जब मैंने फास्ट फूड छोड़ा था तो मुझे भी इसकी आदत लगती थी, यहाँ तक कि अगर उसकी स्मेल भी कहीं मेरे जहन में आती थी तो मन करता था खा लूँ, रोकना पड़ता था। और यहाँ पे आपका सिर्फ विल पावर काम आता है, और मुझे लगता है कि यही चीज़ नाना पाटेकर को बाकी लोगों से अलग बनाती है।
1: यस मैम,
0: वो अपनी खामियों को सरेआम बताते, हंस कर बताते हैं कि मैंने भी गलतियाँ की हैं, पर उन गलतियों से सुधार भी किया है। उनकी एक्टिंग की बात करें, उनकी रियल लाइफ की बात करें, तो दोनों बड़ी इंस्पायरिंग है। और लास्ट में मरते वक्त, यानी कि जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, उस वक्त उनकी एक ऐसी लाइन थी जो यार सुन के थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, और बात बहुत गहरी है। जो मैंने आते ही कहा था कि उन्होंने कहा था कि मुझे गीली लकड़ियों पर मत जलाना, गीली लकड़ियों से धुआं उठता है, वो धुआं लोगों की आंखों में जाएगा जो मेरे पास खड़े होंगे, और उस धुएं की वजह से लोगों की आंखों में आंसू आएगा,
1: मुझे
0: गलत फहमी हो जाएगी कि ये मेरे लिए रो रहे हैं। कम से कम इस दुनिया को अलविदा कहते टाइम मैं अपने जहन में कोई गलत फहमी नहीं रखना चाहता। कोई मेरे लिए क्यों रोएगा, है ना? डीप है, बहुत गहरी बात है। और मैं तुम्हें बता दूं, उन्होंने अपने अंतिम संस्कार के लिए खुद सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके रखी थी। हम बात भी नहीं करना चाहते, हमें लगता है कि ये जिंदगी ना झूठ पर चल रही है, हमें कभी कुछ नहीं हो सकता। हम मौत के बारे में सोचना पसंद नहीं करते, हमें लगता है यार ये तो बहुत कर्स वाली चीज़ है ना, हम इसके बारे में क्यों सोचें। बट उन्होंने उसे भी एक्सेप्ट किया था, उन्हें पता था एक दिन ज़रूर आएगा, और इसके लिए उन्होंने अपने हिसाब से अपने लिए लकड़ियाँ तक रखी हुई थी।
1: मैम, ऐसा करने वाले बहुत महान इंसान थे, क्योंकि हम लोग ये भी
0: हम मजाक में भी अगर कह दें ना कि यार कितने दिन की जिंदगी है, तो लोग टोक देते, नहीं ऐसी बातें नहीं करते। हाँ। बट ये तो सच्चाई है, राइट?
1: अगर हम अपने बारे में थोड़ा गलत सोचते हैं कि अभी जाएंगे हमें चोट लग जाएगी या ऐसा कुछ है, तो भी सब ये नहीं सोचना चाहिए,
0: क्योंकि हम इमोशनल होके सोचते हैं और वो शायद थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोच रहे थे। जिंदगी की हकीकत नहीं बदली जा सकती। इवन जब मैं मजाक में लोगों से ये कह देती हूँ ना कि अरे मैं जब रोड क्रॉस करती हूँ तो मेरे बगल में ही यमराज खड़े होते हैं, हम दोनों में कॉम्पिटिशन चल रहा होता है कि कौन जीतेगा, क्या मैं रोड सेफली क्रॉस कर पाऊंगी, तो लोगों का कहना होता है यार तुम इस बात पे कैसे मजाक कर सकती हो,
1: ऐसा मत बोला करो,
0: ऐसे नहीं होता, जाओ मैं ऐसे बात नहीं करते। हाँ, मुझे उनके इमोशंस की कद्र है, बट कभी कभी ये हकीकत भी होती है जो इंसान बताकर चला जाता है, ये कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले,
1: हाँ,
0: इससे पहले कि मैं रोने लग जाऊं। चलो एक प्यारा सा ब्रेक लेते हैं, दिल का रिश्ता फिल्म से एंजॉय करते रहिए अलका जी की आवाज में, साजन साजन, और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9976 9260 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आर्शुनति, और मेरे साथ है
0: सुहानी।
1: सुहानी सुहानी, तुम्हारे नाम का मतलब क्या है?
0: सुहानी मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा हो, सुहावना हो, तो उसको सुहानी से ऐसे रिलेट कर सकते हैं।
1: रिलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, फिलहाल के लिए हम बात करते हैं हमारे नाना पाटेकर साहब की, क्योंकि आज का ट्रिब्यूट खास उनके लिए। ज्ञान असली लाइव आप इंजॉय कर रहे हैं, आपका अपना FM रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। बहुत ही प्यारे 90s के नगमे आपने अभी इंजॉय किए हैं, और कुछ तुम बताना चाहोगी नाना पाटेकर के बारे में?
0: हाँ, मुझे उनके बारे में एक बात पता है।
1: एक ही बात पता है?
0: मतलब पता तो कई सारी है, मैं बताऊंगी मैं एक ही।
1: ओके।
0: उनको ना खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था, मतलब खाना बनाने के इतने ज़्यादा शौकीन थे, वो खाना बनाने के इतने ज़्यादा शौकीन थे कि जब उनके घर पे कोई आता था या फिर वो अपने दोस्तों को बुला के वो खाना बना के खिलाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनसे अच्छा खाना शायद कोई शेफ भी ना बना पाए।
1: इसका मतलब ये था भाई कि नाना पाटेकर ख़ुद को एक्टर से ज़्यादा कुक समझते थे। उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक था, वो लोगों को खाना बनाकर खिलाना पसंद करते थे। इस मामले में मैं और नाना पाटेकर साथ साथ में काम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी खाना बनाकर दूसरों को खिलाने में बहुत मज़ा आता है।
0: और मैं उनमें से हूँ जो जिनको बुला के खिलाते थे।
1: ओके, तो मतलब मैं बनाऊंगी तुम खाओगे?
0: यस मैम, क्योंकि अब वो बनाते थे उनके दोस्त।
1: वैसे एक बात ये भी खास है कि खाना बनाने वाले को मज़ा तभी आता है जब खाना खाने वाला भी शौकीन हो।
0: तो मैम आप बनाइए, हम खाएंगे। अब
1: मैं बनाया था मैंने, तुम आई नहीं थी उस दिन।
0: मैम तो एक बार
1: अफसोस की बात है। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें कि नाना पाटेकर शूटिंग के दौरान अक्सर अपनी टीम के लिए खाना बनाया करते थे और उन्हें खाना बनाकर खिलाते थे। और एक कमाल की बात पता है एक शेफ़ के लिए, कुक के लिए क्या होती है?
0: क्या?
1: जब वो किसी के लिए खाना बनाए और उनके बनाए खाने की कोई तारीफ कर दे तो मानो सातों आसमान एक साथ मिल जाते हैं। देखकर मज़ा आता है कोई हमारे खाने को इंजॉय कर रहा हो। वो कहते हैं ना उंगलियां चाट लेते हैं।
0: यस मैम,
1: बस अगर कोई ये देखता है ना दिल खुश हो जाता है। फिलहाल आइए इंजॉय करते हैं नाना पाटेकर की फिल्म का एक बहुत ही बेहतरीन नगमा, और इस नगमे के बाद आपके अपने चैट बॉक्स में चलेंगे। अपने थॉट्स जरूर बताइएगा कि आपको खाना बनाना पसंद है या आप खाने वाली टीम से। और आज
0: एक मिनट, अगर बनाने वाले होंगे तो टीम ए में होंगे, खाने वाले होंगे तो टीम बी। टीम ए आप हो, टीम बी मैं हूँ।
1: ओह ओह ओके, तो फिलहाल हम और नाना पाटेकर एक साइड हैं और आप एक तरफ हो जाइए।
0: मैं खाने वाले एक साइड।
1: चलिए बहुत शुक्रिया, इंजॉय करते रहिए। मिलते हैं आपके चैट बॉक्स में आपके फीडबैक्स और आपके ओपिनियंस लेने के लिए, तब तक

हाँ जी, तो आप एंजॉय कर रहे थे ज्ञानसली लाइफ में नाना पाटेकर का गाना तेरा गम मेरा गम, और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं चैट बॉक्स में आपके मैसेजेस को लेने के लिए। एंड मैसेजेस में जो हमारे पास मैसेज आया है वो अरविंद जी का आया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उन्नति मैम का शो चल रहा है? आपने बिल्कुल सही गैस किया था, मेरा ही शो चल रहा था। हालांकि ये हमारा शो चल रहा था जिसमें हम, आप और मेरी को होस्ट शामिल थे। एंड आज मैम के लिए बहुत सारे फूल भेजे गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर उन्नति मैम होंगी तो रिप्लाई करेंगी। अजी, हमने किया तो आपको रिप्लाई।

0: उसके बाद है कि ओके ओहो, और डांस किया गया है गाने को लेकर के, 60 सिगरेट पीते थे, उन्होंने सिगरेट केवल अपनी बहन के लिए छोड़ा था, ये बात सच है, क्योंकि उनकी बहन का इकलौता बेटा एक्सपायर हो गया था और वो भी वही सिगरेट पी रहे थे. बिल्कुल सही कहा है आपने. एंड इसके बाद लिखा है, और नाना साहब कभी पार्टी में शराब नहीं पिए, अगर पिए तो केवल घर पर ही पिया करते थे. ओके, नाना साहब हमेशा अपनी सादगी की वजह से पहचाने जाते हैं, और ये बात सच है कि उनकी फिल्मों के अंदर भी वो सादगी आपको नज़र आती है, और इसीलिए मुझे लगता है कि वो जब भी किसी की एक्टिंग करते हैं तो वो एक्टिंग नहीं होती, असल जिंदगी चल रही होती है. मुझे नहीं लगता वो कैमरे के पीछे एक्टिंग करते हैं, वो मुझे लगता है कि मेरी आंखों में देख कर एक्टिंग कर रहे हैं, वो स्पेशली मेरे लिए कर रहे हैं. और ऐसा तब होता है ना जब आप एक्टिंग में बहुत ज़बरदस्त होते हो. अगर किसी किरदार से आपको नफरत हो जाए तो यकीनन उस किरदार को निभाने वाला माशाल्लाह है, उसने बहुत उम्दा काम किया है, और ये बात उनकी विलन की एक्टिंग में नज़र आती थी.
1: यस मैम,
0: जिस भी किरदार को आप देखोगे या तो उससे आपको मोहब्बत हो जाएगी या तो उससे नफरत हो जाएगी, और ये किरदार वो इस तरह से जिया करते थे कि मानो उनकी ज़िंदगी का एक और पहलू चल रहा हो. एंड इसके बाद है कि आप एक गाना प्ले कर दें, तो हमने भैया वो गाना प्ले भी कर दिया है, और आपने कहा कि मुझे मठे वाले आलू बहुत पसंद है, क्या बात है, बरेली की स्पेशली यही चीज़ तो मुझे भी पसंद आती है कि बरेली में इस तरह का खाना बहुत अच्छा बनता है, और हमारे पास जब कोई भी आइडिया नहीं होता है तो हम मठे वाले आलू बनाना पसंद करते हैं. एंड हरीश चंद्र सविता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं. और आपने तो लगता है कि पूरा मेन्यू मेरे को बता दिया कि ये बना सकते हैं और बना के खिला सकते हैं. फिलहाल तुमको नहीं बताएंगे, तुम बगल में ही बैठी हो खाने के इंतज़ार में, और ये सब मैं बना लेता हूँ, हमें अपने घर पर इनवाइट करिए, मैं आपको खिला दूंगा. क्या बात है, सच में आप बना लेते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है यार. खाना बनाना एक कला है और खाना खाना भी एक कला है. बनाने वाले टीम ए में तो 3 लोग हो चुके हैं, टीम बी से तुम अकेली ही हो फिलहाल.
1: मैम टीम बी वाले सुन रहे हैं,
0: टीम बी वाले सुन रहे हैं कि कब बनेगा, कब हम खाएंगे.
1: जब खाना हो तब हम लोग आगे आते, बनाने के टाइम पे नहीं. आप लोग बना लीजिए,
0: कोई बात नहीं, हम खाना भी बनाते हैं, हम बातें भी बनाते हैं. और अब चाहेंगे आपसे इजाज़त, मुलाकात होगी हमारी 3 से 4 कॉलर ट्यून गुना में, वो भी आज 2 घंटे के लिए, तो तैयार रहिएगा क्योंकि 1 घंटा कुछ तो होगा बॉलीवुड स्टाइल, कुछ होगा हमारे नाना पाटेकर के स्टाइल में, और कुछ आपकी आज चुनौती आपके लिए खुरापात ज़रूर लेकर आएंगी. लेकिन ये सब होगा 3 से 5 वाले कॉलर ट्यून गुंडा फ्राइडे स्पेशल में, जहां आपकी डिमांडेड गानों के साथ साथ आज बहुत सारा फन करेंगे. तो मिलेगा ज़रूर, बने रहिएगा मेरे साथ, सुनते रहिए आपका अपना वाला FM रेडियो ज्ञानसली 89.6 FM. और मैं छोड़कर जाती हूँ आपको जगजीत सिंह की आवाज़ के साथ, किसका चेहरा. एंजॉय करते रहिए, बहुत ही प्यारी सी गजल है, बहुत ही प्यारा सा बॉलीवुड का गाना है, जगजीत सिंह की आवाज़ है. आई होप आपकी इस दोपहर को ये और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देगा. बाय बाय, टेक केयर.

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकासेंदु अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सुजाता जी।
1: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
2: ये तो सुजाता जी, अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं, उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
1: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
2: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटरबॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशुजनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पायरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
1: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
2: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
1: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
2: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
2: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए, उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं। तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं तो उसके बाद हाथ धोएं बहुत अच्छे तरीके से, अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
1: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जाँच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
2: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
1: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
2: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जाँच करवाना बहुत ही ज़रूरी है। और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है टीबी में, हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कंफर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
1: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
2: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है, और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
1: अच्छा, दस्त और डायरिया उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
2: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास, अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें, और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है, और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें, और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरीनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं, या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
1: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
2: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं, वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
1: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है, या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
2: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है, लेकिन इसके साथ कैसे प्रचार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी। तो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए।
1: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
2: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्त्री होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें, कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते सकते हैं और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे, कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
1: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
2: सही जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना ना केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है, तो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
1: सर आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
2: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये स्वास्थ्य की कुंजी है। और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं, तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता, उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं आपने सुना, सही जानकारी, समय पर जांच करो और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास हेंदु सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
3: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण, याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान, टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
5: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए, इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी, सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
6: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
5: भैया बिल्कुल सही कहा आपने, आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
6: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो, NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी RJ आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
5: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
6: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
5: अच्छा।
6: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है, ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
5: अच्छा भैया, तो अब ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
6: बहुत सारी,
5: जैसे?
6: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ।
5: जी।
6: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
5: और बाकी?
6: अरे बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर, आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी RJ आकांक्षा जी, NBSU का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते तो NBSU माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है, जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है, बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है, और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है, त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है, माता पिता दोनों KMC कर सकते हैं।
5: अरे वाह, क्या बात है भाई, और इसके अलावा भी कुछ है?
6: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। NBSU में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है, और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है, और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल, यदि बच्चा गंभीर हो। NBSU पहले बच्चे को स्थिर करता है, फिर SNCU को रेफर करता है, 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है,
5: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत NBSU ले जाना चाहिए।
6: देखिए आकांक्षा जी,
5: जी
6: नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है।
5: जी
6: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है या बच्चा हाफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे, तो सीधा NBSU। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है। देर मत करो आरजे दीदी
5: जी।
6: खास कर कम वजन वाले बच्चे, 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर NBSU दिखाना चाहिए। ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
5: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा NBSU से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
6: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है। और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड ना लगने दे, सिर हाथ पैर ढककर रखे, KMC यानी माँ की छाती से चिपका कर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा, साफ सफाई, नाभि पर कुछ ना रखना, ना तेल, ना घी, ना हल्दी, बच्चे को भीड़ या बीमार लोगों में बिल्कुल ना ले जाएं। और डॉक्टर जो तारीख दे, फॉलो अप जरूर कराएं, खासकर कम वजन वाले बच्चों का। अगर बच्चा फिर से दूध ना पिए, सांस तेज चले, बुखार आए, पीलिया बढ़े या दौरा पड़े, तो तुरंत वापस NBSU।
5: ओके, तो ये सब तो भैया ठीक है, आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत सही जानकारी दे दी। लेकिन अब ये बता दीजिए कि इन सभी चीजों में परिवार और गांव की क्या भूमिका है?
6: बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे गर्भवती महिला की ENC हो, प्रसव सुरक्षित जगह पर हो, बच्चे का टीकाकरण पूरा हो, ये सब परिवार और गांव मिलकर सुनिश्चित करें। खतरों के संकेत जाने और 102 और 108 एम्बुलेंस का उपयोग करें। साफ पानी और स्वच्छता को आदत बनाएं। जब पूरा गांव जागरूक होगा, नवजात ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
5: और भैया, हमारे आशा और ANM दीदी तो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्यों?
6: बिल्कुल, वे जन्म के 24 से 48 घंटे में घर घर जाती हैं, खतरों के संकेत पहचानती हैं, कंगारू केयर और स्तनपान सिखाती हैं और जरूरत पड़े तो रेफरल करवाती हैं। उनका योगदान नवजात की जान बचाता है।
5: तो आखिरी में आप क्या संदेश देंगे भैया?
6: बस इतना ही, NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है। नवजात को कभी हल्के में मत लीजिए, उसका एक एक मिनट कीमती होता है। संकेत दिखे तो तुरंत कदम उठाओ, NBSU पहुंचो। आपका सही समय पर लिया गया फैसला एक नन्ही जान बचा सकता है।
5: बहुत सुंदर बात कही भैया आपने। तो श्रोताओं, जानकारी ही सुरक्षा है। हम फिर मिलेंगे, तब तक जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अपने रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM के साथ। नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच में हमारी यानी आपकी और हमारी सभी की प्यारी वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो हमारे हर एक रोग का इलाज करती हैं। हमारे बीच मौजूद हैं हमारी डॉक्टर साहिबा। पहले इनका हम स्वागत करेंगे और इन्हीं से इनका परिचय जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
7: धन्यवाद आकांक्षा जी आपको यहाँ बुलाने के लिए। आज हम बात करेंगे कुष्ठ रोग पे और मेरा नाम है आभा सिंह, कुष्ठ रोग स्पेशलिस्ट।
5: बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने के लिए। सबसे पहले मैम, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये कुष्ठ रोग है क्या और इसकी पहचान कैसे करें?
7: कुष्ठ रोग को नॉर्मल भाषा में कहा गया है लाल चकत्ता सुन निशान, कुष्ठ रोग की यही पहचान।
5: इसको प्लीज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हमारे श्रोताओं को बता दें।
7: इसका मतलब है शरीर में लाल चकत्ते पड़ना।
5: जी,
7: और जब लाल चकत्ते पड़ते हैं, अगर वो कुष्ठ रोग है तो वहाँ पे आप कुछ भी करेंगी, कोई भी एक्टिविटी वहाँ करेंगे तो वो सुन्न होगा एरिया, वहाँ पे आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा।
5: ओके, तो मैम अभी मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार आज भी उन राज्यों में है जहाँ कुष्ठ रोग के मामले सामने आते हैं, आपके जिले की स्थिति क्या है और किन इलाकों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है?
7: देखिए आकांक्षा जी, ये सच है
5: जी
7: कि कुष्ठ रोग अब पहले से बहुत कम है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ग्रामीण इलाके, घनी आबादी वाले क्षेत्र और वह जगह जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुँच कम है, वहाँ जोखिम ज़्यादा रहता है। हमारा मुख्य फोकस है जल्दी पहचान और समय पर इलाज, ताकि फैलाव रोका जा सके।
5: अब मैम ये बताइए कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार 2027 तक कुष्ठ रोग खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में ये कितना व्यवहारिक है?
7: लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है आकांक्षा जी, लेकिन पूरी तरह संभव है, क्योंकि कुष्ठ रोग का इलाज पूरी तरह मुफ्त है और उपलब्ध दवा से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है।
5: जी,
7: इलाज शुरू होते ही बीमारी फैलना बंद हो जाती है। सबसे जरूरी है डर, भेदभाव खत्म करना।
5: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज भी कई गांवों में लोग कुष्ठ रोग को लेकर दवा की बजाय झाड़ फूंक या घरेलू उपाय से ठीक करने लगने, मतलब ठीक करने की उसकी कोशिश करते हैं, ये कितना खतरनाक है?
7: आकांक्षा जी, यह बहुत गंभीर खतरा है।
5: जी,
7: कुष्ठ रोग में देरी से इलाज करने पर हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं।
5: जी,
7: घाव बन सकते हैं और अस्थाई विकलांगता हो सकती है। झाड़ फूंक से बीमारी नहीं जाती, लेकिन समय जरूर चला जाता है, जो सबसे बड़ा नुकसान है।
5: कहीं ना कहीं वो जो एक छोटा सा लाल धब्बा, वो एक सड़न का रूप ले लेता है, उसके बाद में जब हम बहुत हानिकारक स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो हमें वो दृश्य देखने को मिलेगा जो कोई भी सोच भी नहीं सकता है।
7: जी जरूर।
5: जी, अभी एक और सवाल है हमारे बीच में कि कई लोग डर और बदनामी के कारण जांच नहीं कराते, खासकर छोटे गांव में, स्वास्थ्य विभाग इस भरोसे को कैसे मजबूत करता है?
7: आकांक्षा जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया।
5: जी,
7: हम पूरी गोपनीयता रखते हैं। आशा और स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर समझाते हैं, मुफ्त जांच करवाते हैं।
5: जी,
7: सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करते हैं।
5: जी,
7: हम साफ कहते हैं कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता।
5: जी,
7: और इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है।
5: अब ये बताइए कि यूपी और बिहार में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करती हैं, कुष्ठ रोग की पहचान और इलाज में उनकी भूमिका कितनी अहम है?
7: आकांक्षा जी, उनकी भूमिका सबसे अहम है।
5: जी,
7: यही बहनें त्वचा पर सुन्न दाग पहचानती हैं, मरीज को जांच तक लाती हैं और दवा पूरा करवाने में साथ देती हैं।
5: जी,
7: कह सकते हैं कि कुष्ठ उन्मूलन की असली ताकत जमीनी स्तर पर आशा दीदी ही है।
5: मैम, अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज कई बीमारियां पूरी तरह से ठीक होने वाली हैं, इलाज मुफ्त भी हैं, फिर भी लोग झोला छाप या ओझा तांत्रिक के पास क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है?
7: देखिए खानसा जी,
5: जी,
7: इसकी सबसे बड़ी वजह है डर, अज्ञानता, आदत। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो खर्च होगा,
5: जी,
7: बदनामी होगी या बीमारी फैल जाएगी। इस व्यवहार को बदलने के लिए हम गांव-गांव अपनी आशा को भेजते हैं।
5: जी,
7: वो जागरूक करती हैं, सफल इलाज के लिए प्रेरित करती हैं, स्थानीय भाषा में समझाती हैं और लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं और अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंच भी रहे हैं।
5: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई अपना आदमी हम सभी को कुछ समझाता है तो बात दिल तक आसानी से पहुंच जाती है। अब मैम एक और सवाल आपसे मैं करूंगी कि सामाजिक बहिष्कार, काम से निकाल देना, बच्चों को स्कूल ना भेजना, ये सब आज भी यूपी और बिहार में दिखता है, इससे आखिर में हमारी समाज पे क्या फर्क पड़ता है?
7: आकांक्षा जी, बहुत सही सवाल है आपका।
5: जी,
7: व्यक्ति टूट जाता है, आत्मविश्वास खो देता है और समाज में डर फैलता है।
5: बिल्कुल,
7: और समाज का नुकसान ये कि लोग बीमारी छुपाने लगते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ जाता है।
5: बिल्कुल,
7: याद रखिए, बीमारी से नहीं, गलत सोच से समाज बीमार होता है।
5: बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात आपने कह दी। उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोता हमें सुन रहे होंगे उनको आज एक बहुत ही गहरी बात समझ में आ रही होगी।
7: जी आकांक्षा जी।
5: जी मैम, आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज सरकार इतनी सारी दवाइयां दे रही है, लोगों को ये क्यों नहीं समझ आता कि सिर्फ मरीज नहीं पूरा परिवार सुरक्षित।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता है। आपका फेवरेट एंड फेवरेट शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है सुन सहेली। और सुन सहेली शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि अभी हमारी अंशिका आज नहीं आई है और जल्दी ही वो स्वस्थ होकर के वापस लौटेंगे। आपका क्या हाल है और आपको प्यार भरा मेरा शुभ दोपहरिया भाई। अब जैसे कहते हैं ना कि नवरात्रि आने वाले हैं, नवरात्रि शुरू होने वाले हैं एंड कल है हमारा, यानी कि जो पितृ विसर्जन का, जो पितरों का दिन चल रहे थे वो है हम सभी का पितृ, जैसे पितृ विसर्जन का त्यौहार। तो हम सभी लोग बहुत ही श्रद्धा से सेलिब्रेट करते हैं, सभी लोग बहुत ही श्रद्धापूर्वक इसको मनाते हैं क्योंकि हर घर में पितरों का आना और उनका सम्मान होता है ये 15 दिन में। तो कल है उनका अंतिम दिन यानी कि पितृ विसर्जन है। तो आप सभी को बता दूं और उसके बाद संडे से शुरू हो रहा है, हमारी माता जी आ रही है, हमारी माँ आ रही है। तो भाई माँ के आने की तैयारियां तो खुशी खुशी बहुत सी होती है। सब घरों में मंगल गीत गाए जाते हैं एंड सबसे पहले तो मंदिरों की साफ सफाई होती है। तो मंदिरों की साफ सफाई जिनके घर नहीं हुई है वो आज और कल में कर लें क्योंकि संडे से होने वाला है माँ का आगमन। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं आज के ब्यूटीफुल सेक्शन को लेकर के शुरू करते हैं जैसे आज हमारा है स्किन और हमारी प्यारी सी खूबसूरती के लिए एक प्यारी सी कविता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चेहरे पर हो निखार, चेहरे पर हो निखार, चेहरे पर हो निखार, मुस्कान में हो बहार, त्वचा से झलके प्यार जैसे खिला हो गुलजार, पानी की हर बूंद से चेहरे को सजाएं, प्राकृतिक देखभाल से निखार अपना पाए। न चाहिए महंगे नुस्खे न कोई दिखावा, न चाहिए महंगे नुस्खे न कोई दिखावा, खुद से प्यार ही है खूबसूरती का खजाना। चेहरे की चमक में हो सेहत का हुनियारा, खूबसूरत त्वचा से खिले व्यक्तित्व हमारा। चांद सी महको फूलों सी मुस्कान, चांद सी महको फूलों सी मुस्कान, खूबसूरत त्वचा बने अपनी पहचान। पानी पोषण और देखभाल का हो साथ, निखरी निखरी त्वचा खिले हर दिन रात, सादगी का नूर हो चेहरे पर बहार, पर मुस्कान लगे जैसे खुशियों का त्योहार। खूबसूरती सिर्फ रंग से नहीं दिल से भी आती है, खूबसूरती सिर्फ रंग से नहीं दिल से भी आती है, जब खुद से प्यार करें त्वचा भी मुस्कुराती है, जब खुद से प्यार करें तो त्वचा भी मुस्कुराती है। एग्जैक्टली, और मैं बता दूं कि जब हम खुद से प्यार करते हैं तो और ही कुछ निखर कर आता है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि जब हम अपने आप की केयर करने लगते हैं, अपने आप से प्यार करने लगते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आने लगती हैं कि हम अपनी तो देखभाल करते ही हैं और अपने साथ साथ अपने घर वालों की भी देखभाल करने लगते हैं। तो चलिए आज का प्यारा सा जो है रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ भी हम आपको बता देते हैं कि खूबसूरत त्वचा आपकी होती है असली जिंदगी। एंड खूबसूरत त्वचा को बनाने के लिए हमें क्या करना है। चेहरे पर झुर्रियां हो या आंखों में थकान, चेहरे पर झुर्रियां हो या आंखों में थकान, खूबसूरती कम नहीं करती ये जिंदगी की पहचान, खूबसूरती कम नहीं करती।

0: बार लौटेंगे आपके और हमारे एक प्यारे से रिश्ते पे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, ये गाना सुनते हैं।
1: चांदनी

ये कौन

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ओआरएस का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और हमारे साथ अंशिका नहीं है, आप सभी को पता है। और मैं सोच रही हूँ कि आज अंशिका से बात कर लेते हैं फोन पे कि अंशिका कब आएगी, क्योंकि अंशिका के बिना वाकई में मुझे भी बहुत ही अधूरा सा बन लगता है। और फिलहाल चलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते पर जो कि होने वाला होता है बहुत ही खूबसूरत। वो रिश्ता और कोई नहीं, वो रिश्ता है माँ बेटी का। माँ बेटी का रिश्ता एक ऐसा होता है कि जिसमें विश्वास होता है, समझदारी होती है, और उसको खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये कि माँ और बेटी का रिश्ता यूं ही नहीं बनता है। जब वो कोख में आती है तभी उनसे एक रिश्ता जुड़ सा जाता है, और वो रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक रिश्ता होता है माँ और उसकी बेटी का। माँ वो होती है जो बेटी की आंखों में आंसू आने से पहले ही उसकी तकलीफ समझ लेना चाहती है, और बेटी वो होती है जो कभी कभी माँ की डांट से नाराज जो हो जाती है लेकिन मुसीबत आने पर सबसे पहले माँ को ही याद करती है। फिर भी इस रिश्ते में कई बार ऐसा होता है कि जब हम रिश्ता सुनते हैं, देखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उनसे नाराज हो जाते हैं। फिर भी क्या होता है कि इस रिश्ते में कई बार प्यार होते हुए भी दूरियां आ जाती हैं। कभी माँ की चिंता बेटी को पाबंदी लगाती है, तो कभी बेटी की चुप्पी माँ को अपनी बेरुखी सी लगने लगती है। इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ प्यार होना काफी नहीं होता है। प्यार को सही तरीके से जताना और एक दूसरे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और भी बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं एक माँ बेटी के रिश्ते में। उन गलतफहमियों को कभी भी अपने जहन में नहीं डालना चाहिए। सबसे पहली गलतफहमी क्या होती है कि माँ की चिंता को, बेटी पाबंदी को हमेशा एक चिंता को वो पाबंदी समझने लगती है। माँ बार बार पूछती है कि कहाँ जा रही हो, किससे बात कर रही हो, कब तक घर लौटोगी, और तुमने कुछ खाया कि नहीं। माँ के मन में सुरक्षा की चिंता हो सकती है, लेकिन बेटी को ये लग सकता है कि उस पर भरोसा ही नहीं किया जा रहा है। एग्जैक्टली अभी कुछ दिन पहले ही मैं कहीं बाहर गई थी, तो मम्मी ने मुझे सिर्फ इतना बोल दिया और मैं थोड़ा भड़क गई थी। मैं गुस्सा हो गई थी मम्मी से कि तुम तो मुझे सुबह से आज दिखाई नहीं दे रही हो, कहाँ पे हो, किससे बात कर रही हो, कहाँ हो। तो एग्जैक्टली वो मेरे पर जो उनकी चिंता थी वो उसको मैंने पाबंदी समझ लिया था, जो कि पहला पॉइंट एग्जैक्टली बिल्कुल राइट है कि बेटी जो होती है वो माँ की चिंता को पाबंदी का रूप देने लगती है। तो हर माँ को हर बात पर रोकने के बजाय उनकी चिंता का कारण समझना चाहिए। बेटी को भी अपनी योजनाओं के बारे में खुलकर बताना चाहिए ताकि भरोसा बन सके, उन पर भरोसा बन सके। कभी भी कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। बेटी की चुप्पी को माँ गलत समझ लेती है, ये दूसरी गलतफहमी है। कभी कभी बेटी पढ़ाई, करियर, दोस्ती या अपनी निजी परेशानियों के कारण चुप रहती है, और माँ सोचने लगती है कि बेटी अब उनसे कुछ छिपाने लगी है या उससे दूर हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी का कारण होता है कि अगर वो पढ़ाई कर रही है, जॉब कर रही है, या फिर उसकी शादी हो गई है, कुछ बातें अपनी माँ को नहीं बताना चाहती है, तो उसकी माँ को लगता है कि वो हमसे दूर हो गई है या फिर कुछ बताना नहीं चाहती है वगैरह। तो ऐसा भी गलतफहमी का ये एक पॉइंट हो सकता है। तो माँ को हर चुप्पी का मतलब नाराजगी नहीं समझना चाहिए। प्यार से पूछे, बेटा क्या तुम किसी परेशानी में हो? अगर अभी बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सिर्फ इतना कह देना ही वो सारी गलत चीजों को अपने मन से निकाल करके एक प्यार भरा हाथ आपके ऊपर रख देगी। उसके बाद गलतफहमी आती है कि सलाह को आलोचना समझ लेना। जब हम हमारी माएँ जो एडवाइस करने लगती हैं तो हम लोग उसको अपना उसको समझने लगते हैं कि ये किसी और बच्चे से कंपैरिजन कर रही हैं, या फिर उसमें एक ना कंपटीशन को हम समझने लगते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही बेटी को
हर एक चीज की एडवाइस करती है। लेकिन बेटी को लगता है कि माँ उसे कम समझती है या उसकी काबिलियत पर भरोसा नहीं करती है। और माँ को सलाह देने से पहले बेटी की बात पूरी सुननी चाहिए। बेटी भी यह समझने की कोशिश करे कि हर सलाह के पीछे एक कंट्रोल की इच्छा नहीं, कभी कभी उनका एक्सपीरियंस और उनकी जो टेंशन होती है वो होती है। हालांकि बेटी को अपनी पसंद और फैसले का अधिकार करने का पूरा पूरा अधिकार होता है। आइए अब हम इसके खूबसूरत से रिश्ते के बनाने के तरीके जो होते हैं वो हम आप बात करेंगे, लेकिन उसके पहले लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे सीधे चैट बॉक्स में, क्योंकि चैट बॉक्स में हमारे बहुत सारे लिसनर्स आ गए हैं एंड कुछ तो हमारे नए लिसनर्स आ गए हैं जो काफी पहले से यहाँ पर आना भूल गए थे और उनका रास्ता आज उन्होंने देख लिया है, तो उनका भी वेलकम करना है, लेकिन इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता एंड थैंक यू सो मच आरके जी। और आइए चलते हैं फटाफट हम चैट बॉक्स में। तो आरके जी एंड एंड एंड सॉन्ग सिलेक्शन में तो समता जी आपका कोई जवाब नहीं है। थैंक यू सो मच आरके जी एंड धर्मेंद्र जी, राम राम जी। आरके जी ओ क्या सॉन्ग प्ले किया, थैंक यू। प्रीति जी थैंक यू, एंड शुभ दोपहरिया आप सभी को भी। धर्मेंद्र जी, आरके जी, इट्स कुमार जी, इट्स कुमार जी, हाँ वो नॉब थोड़ा सा ऊपर रह गया था, इस वजह से आपकी मेरी आवाज़ स्लो आ रही थी, अब मैंने सही कर दिया है। एंड अरविंद जी वेलकम है सभी लिसनर्स का। तो आइए फटाफट चलते हैं, अब हम सीधे सीधे सीधे आज के ब्यूटी टिप्स की ओर चलते हैं। एंड जो हमारा सेक्शन अभी अधूरा है हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन हमारे स्टूडियो में एक गेस्ट आ गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं एंड देन हम सीधे चलेंगे बाकी बचे हुए सेक्शन की ओर। तो हमारे साथ में हैं आज हमारी कॉलेज की एक स्टूडेंट जिसका नाम है अल्फिया। तो हेलो अल्फिया, कैसी हो?
1: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। मैम
0: गुड आफ्टरनून, कैसी
1: मैं
0: हो?
1: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं कैसी लग रही हूँ दिखने में?
1: माशाल्लाह बहुत अच्छी।
0: तो बस ठीक ही हूँ फिर तो, है ना? तो अच्छा मुझे ये जानना है कि जैसे आप लोग की स्किन है ना बहुत ब्यूटीफुल सी है और बहुत ब्राइट सी रहती है, तो ऐसा कौन सा पैक है, ऐसी कौन सी चीज है जो आप टीनेजर्स यूज करते हैं? मतलब हम लोग को भी थोड़ा बता दें, हम लोग बड़ी एज के हैं तो थोड़ा सा हम लोग को भी बता दें, हम लोग भी थोड़ा सा ब्यूटीफुल हो जाए।
1: यस मैम, पहली बात तो हम लोग केमिकल वाली चीजों से बहुत दूर रहते हैं और अपने घर के इंग्रेडिएंट से बने हुए हेल्दी पैक को यूज करते हैं।
0: ओ माय गॉड, तो केमिकल्स को यूज नहीं करना चाहिए?
1: यस मैम, ये केमिकल बहुत हार्मफुल होता है।
0: मैं एक बार बताऊं अल्फिया कि केमिकल्स तो मैं भी यूज नहीं करती हूँ हमेशा से, मतलब मेरा एक मन का मेरा एक विचार होता है कि मैं कभी भी केमिकल्स को अपने फेस पे ना लगाऊं।
1: यस मैम, केमिकल्स सिर्फ आपको कुछ एज तक ही अच्छा कर सकता है, बट नेचुरल चीजें आपको बहुत लाइफ टाइम तक वो चीजें आप में बरकरार रह सकती है।
0: एग्जैक्टली ये तो है। तो ऐसा क्या खजाना बताने वाली आज आप?
1: मैम चावल का जो पैक होता है वो सबसे अच्छा पैक होता है।
0: ओ माई गॉड,
1: और मैम आपको पता होगा कि कोरियन राइस पैक यूज करते हैं।
0: हाँ ये तो पता है भाई हमें,
1: कोरिया में राइस बहुत ज्यादा फेमस है।
0: अच्छा खाने से भी उसका असर होता है?
1: यस मैम, खाने से भी बहुत कम होता है।
0: चावल खाने से भी असर होता है कि केवल लगाने से होता है?
1: मैम पहली बात तो एक बहुत बड़ी इंसान में गलत फहमी होती है कि हमारा वेट चावल से बढ़ता है, जो नहीं बढ़ता है।
0: नहीं बढ़ता है, रोटी से बढ़ता है।
1: यस मैम,
0: चावल से बिल्कुल नहीं बढ़ता है, क्योंकि चावल में इतना स्टार्च और पानी होता है कि आपका पेट कितना जल्दी भर जाता है, है ना? बट अगर आपने उसकी जगह पर आपने क्या कहते हैं दो रोटी खा ली, तीन रोटी खा ली, तो आपका वेट जल्दी गेन होता है।
1: मैम यस मैम, और चावल तो इतना फायदेमंद है कि अगर आपने रात में उसको भिगो के रखा है उसके पानी को भी आप यूज कर सकते हैं।
0: तो अभी हम फिलहाल पैक के बारे में जानेंगे कि कौन सा पैक है।
1: मैम ये है राइस पैक।
0: ओके,
1: जिसके लिए हमें चावल, एलोवेरा,
0: मतलब पिसा हुआ चावल का आटा?
1: नहीं मैम,
0: साबित चावल।
1: साबित चावल जिसको रात में हम पानी में भिगो देंगे।
0: ओके,
1: उसके पानी को और चावल को अलग कर लेंगे।
0: फिर
1: एलोवेरा, दही, विटामिन सी की गोली,
0: एक
1: कैप्सूल, सॉरी मैम, कैप्सूल, और गुलाब जल, बस इतना ही।
0: तो जो पानी आएगा वो यूज होना है कि चावल यूज होना है?
1: मैम दोनों ही यूज होगा, क्योंकि दोनों ही अच्छे होते हैं स्किन के लिए।
0: ओके, तो भाई आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर किसी को भी अगर कोरियन वाली स्किन चाहिए तो आप लगा सकते हैं। और अब मुझे पता चल रहा है कि इनकी जो चेहरे पे जो शाइनिंग आती है ना, तो ये नहीं बताती थी, आज मैंने इसको पकड़ लिया, तो इसीलिए आज मुझे बताना ही पड़ेगा।
1: थैंक यू मैम।
0: तो चलिए बताइए कि ये पैक बनता कैसे है?
1: मैम ये पैक बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है, हम रात में चावल को भिगो देंगे।
0: हाँ।
1: सुबह उसको हम पानी को और चावल को अलग कर लेंगे। चावल को हम पीस लेंगे।
0: ओके,
1: और दही।
0: हाँ।
1: और एलोवेरा और विटामिन सी की कैप्सूल।
0: हाँ।
1: और गुलाब जल एक दूसरे को मिक्स कर लेंगे।
0: हाँ।
1: और उसको मिक्स करने के लिए इस तरह पीसेंगे कि उसमें कोई लम्स ना हो,
0: मतलब क्रीमी वाला रूप आ जाए उसमें।
1: यस मैम, क्रीम की तरह हो जाए। उसको हम 15 मिनट के लिए रख देंगे।
0: हाँ।
1: उसके बाद हम यूज करेंगे उसको।
0: ओके,
1: बहुत इजी।
0: कितनी देर लगाना होता है?
1: मैम 20 से 25 मिनट, इससे ज्यादा कोई भी पैक नहीं लगाना चाहिए।
0: और उसके बाद से नॉर्मल पानी से धुल दें?
1: नहीं मैम, नॉर्मल पानी से धुल दें, और जो पानी हमने सेपरेट करके अलग रखा हुआ था उसको भी हम यूज कर सकते हैं।
0: अच्छा, बॉटल में भर कर स्प्रे कर सकते।
1: यस मैम, उसको दिन में 3 से 4 बार हम उसको स्प्रे कर सकते हैं।
0: लेकिन एक बार बताऊं उल्फिया, मैंने ये बनाया था, मतलब इसको जो पानी वाला, पर ना उसमें 2 दिन के बाद पर उसमें स्मेल आने लगती है बहुत ही गंदी सी, मतलब। तो उसका कुछ उपचार है?
1: yes,
0: कि चावल को अगर हम लोग ने रात में भिगो के रखा है उसका पानी, तो वो स्मेल करने लगता है फिर।
1: यस मैम, उसमें आप लौंग डाल दें, लौंग भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है स्किन के लिए। अगर आप लौंग डाल देंगे तो उसमें स्मेल नहीं आएगा,
0: स्मेल नहीं आएगी, वो तो बढ़िया वाली एक फ्रेग्रेंस हो जाएगा उसका।
1: यस मैम, उसको आप 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं।
0: ओके, वाओ, मतलब फ्रिज में इसको रख दें और जैसे मैं यहाँ से ऑफिस से जाती हूँ और दिन में ही स्प्रे करके सो जाएं। तो yes, ये तो बड़ा अच्छा बता दिया। और वैसे मेरी स्किन पर क्या मतलब यूज हो सकता है? मेरी स्किन मतलब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है कि अभी भी बची है?
1: नहीं मैम, अभी बची हुई है।
0: अभी नहीं खराब हुई है। तो मतलब क्या लगता है कि मेरी स्किन पे क्या यूज हो सकता है? बट मैं कुछ लगाती नहीं हूँ, देख लो, मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ।
1: yes, वो तो आपको तो पता है कि आप कोई मेकअप यूज नहीं करती हैं। बट आप क्या नाम है, राइस पैक तो जरूर यूज कर सकती है, इससे टैनिंग भी, और जैसे हम बढ़ते बढ़ते एज होती है तो हमारी स्किन ढीली होने लगती है, रिंकल्स आने लगती है।
0: जी जी जी जी।
1: अगर इसको हम यूज करेंगे हफ्ते में, कोई भी चीज मैम 1-2 बार करने से नहीं होता, उसे हमें कम से कम 1 हफ्ता तो यूज करना ही पड़ेगा।
0: एग्जैक्टली, तो इसको आप लोग भी यूज करें। और आज मेरे साथ में अल्फिया ने बहुत ही अच्छा सा बता दिया है, तो मैं अभी इसे करूंगी बाय बाय। और फिर ये मेरे साथ कल फिर से आएंगी, आई मीन कल नहीं, कल तो हॉलीडे है, कल हॉलीडे है, और उसके बाद में मंडे को या फिर ट्यूसडे को मैं इसको फिर से बुलाऊंगी। एंड फिर से अगर इसके पास कुछ ना कुछ उपचार होगा, इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो आई थिंक सो कि आप मेरे साथ शेयर करेंगी एंड लिसनर्स के साथ भी। ठीक है
1: मैम,
0: ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। एंड लिसनर्स को आप कुछ कहना चाहेंगी?
1: मैं यही कहना चाहूंगी कि आप चाहे जितना बिजी हो बट अपनी स्किन की केयर हमेशा करनी चाहिए।
0: जी हाँ, जैसे ये करती है, मतलब कॉलेज आने में देर हो जाए, मेरा फोन उठाने में देर हो जाए, मेरी डांट भी खा लेती हैं, लेकिन अपने स्किन केयर को ये पूरा करती
1: yes,
0: हैं और तभी इसकी स्किन इतनी ग्लो करती है।
1: हम लोग कहते हैं कि क्या नाम है, इंसान का फेस नहीं देखना चाहिए, दिल देखना चाहिए, बट सबसे पहले देखता है इंसान फेस ही है।
0: एग्जैक्टली, ये तो बहुत पॉइंट वाली बात है।
1: तो मैम, उसको तो मेंटेन करके रखना ही पड़ना चाहिए।
0: तो मैं भी आज से शुरू कर दूंगी कि मेरा भी चेहरा सब लोग देखें, मेरी डांट और मेरे उसमें ना जाए। तो आज से लगाना हम भी शुरू कर देंगे। आप सभी भी इस पैक को जरूर से यूज करिएगा। तो चलिए लिसनर्स, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे, जानेंगे अपने अधूरे वाले अभी एक पॉइंट पर कि माँ और बेटी के रिश्ते को ऐसा क्या तरीके हैं जिससे और खूबसूरत बना सकते हैं। तो बस हम यू गए, यू आए, स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और हमारा दिन है आज फ्राइडे, यानी कि आज होता है रिश्तों का दिन एंड अपने आप को और ब्यूटीफुल बनाने का दिन। तो भाई अभी मेरी बात हो गई थी अधूरी क्योंकि हमारे स्टूडियो में आ गई थी गेस्ट, तो मैंने उनको मौका दिया, मैंने सोचा पहले ब्यूटी टिप्स उनसे पूछ लेते हैं, जान लेते हैं। एंड देन अभी अधूरी बात थी कि माँ बेटी का रिश्ता खूबसूरत बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला मैंने आपको मैं बताने जा रही हूँ कि रोज कुछ समय सिर्फ एक दूसरे के लिए निकालें। इसका मतलब ये है कि रोजमर्रा की भागती हुई जिंदगी में आप अपने दोनों लोगों को थोड़ा थोड़ा टाइम देना सीखें। दिन में 10-15 मिनट भी बिना मोबाइल और बिना किसी दूसरे काम के साथ बैठकर बात करना रिश्ते में अपनापन बढ़ा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई बड़ी बात है, मतलब हर बार कोई बड़ी बात हो। कभी चाय पर चर्चा, कभी बचपन की यादें और कभी दिन भर की छोटी मोटी सी घटना ही काफी होती है बात करने के लिए। जवाब देने से पहले एक दूसरे को सुने। आजकल टीनेजर्स हैं, आप सभी को पता है कि जवाबदाही इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाते हैं वो लोग जवाब देने के लिए। जब बेटी अपनी परेशानी बताए तो तुरंत ये न कहें कि मैंने पहले ही कहा था, पहले उसकी बात को सुने। इसी तरह बेटी भी माँ की बात को बीच में काटने के बजाय समझने की कोशिश करे। कई बार इंसान को समाधान से पहले सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसे ध्यान से सुनना चाहता है। उसके बाद आता है प्यार जताने में संकोच ना करें। माँ हमेशा बेटी के लिए खाना बनाकर उसकी चिंता करके या उसके काम करके प्यार को जताती है, लेकिन कभी कभी बेटी को माँ के मुंह से मुझे तुम पर गर्व है सुनने की जरूरत होती है। बेटी भी कभी माँ का हाथ पकड़कर कहे, माँ आप मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। ऐसे छोटे शब्द बड़ी दूरियों को कम करते हैं। इसके बाद आता है कि माँ को सिर्फ माँ और बेटी को सिर्फ बेटी ना समझे। माँ की भी अपनी इच्छाएं, थकान, सपने और भावनाएं होती हैं। बेटी भी अपनी पहचान, पसंद और भविष्य के सपने, उसके भी सपने होते हैं। कभी माँ की पसंद की फिल्म देखें, उनके पुराने दोस्तों के बारे में पूछें या बेटी के किसी नए शौक में दिलचस्पी लें। रिश्ता तब और गहरा होता है जब दोनों एक दूसरे को एक इंसान के रूप में भी जानती हैं। एंड उसके बाद आता है कि मतभेदों में भी सम्मान बनाए रखें। हर बात सहमत होना जरूरी नहीं होता है। पढ़ाई, करियर, कपड़े, दोस्ती, शादी या जीवन शैली को लेकर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन असहमति के दौरान अपमान करना, ताने देना या पुरानी गलतियां गिनाना रिश्ते को चोट पहुंचाता है। विचार अलग हो सकते हैं मगर सम्मान बना रहना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और है कि पुरानी बातों को बार बार हथियार ना बनाएं। गुस्से में कही गई बातें लंबे समय तक मन में रह सकती हैं। अगर किसी बात से चोट पहुंची है तो सही समय पर शांति से उस पर चर्चा करें। अपनी गलती होने पर माफी मांगे। माफी मांगना कमजोरी नहीं, रिश्ते को महत्व देने की निशानी होती है। एक दूसरे को बदलने से पहले स्वीकार करना सीखें। माँ को समझना होगा, माँ को समझना होगा कि बेटी की जिंदगी के फैसले हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होंगे। बेटी को भी समझना होगा कि माँ की सोच और आदतें एक दिन में नहीं बदल सकती। जहाँ बदलाव संभव हो वहाँ मिलकर प्रयास करना चाहिए और मतभेद को मिटाना चाहिए। तो ये था आज के ब्यूटीफुल रिश्ते में किस तरह की कोई गलतफहमी होती है तो उसको दूर करना। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, जैसे कि अभी आर के जी ने कह ही रखा है कि समता जी के प्लेलिस्ट का तो जवाब ही नहीं है, तो आइए उसी प्लेलिस्ट में से एक प्यारा सा गाना सुनाते हैं एंड आऊंगी लौटूंगी फिर से कुछ ब्यूटी टिप्स हमारी तरफ से।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में अंशिका नहीं है, लेकिन आइए लास्ट बट नॉट लीस्ट हम शुरू करते हैं कि घर की चीजों से बनाए खूबसूरत त्वचा और बालों की देखभाल के टिप्स। भाई आप सभी को पता होना चाहिए कि हर किसी की जिंदगी में खूबसूरत बनना, खूबसूरत दिखना बहुत ही आसान सा होता है। तो खूबसूरत बनने और दिखने में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। ओके, तो मैं बताऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों को एक गाना सुना देती हूँ। मैं जल्दी आ गई, तो कोई नहीं, एक प्यारा सा गाना सुनते हैं और मैं लौटती हूँ बस विद इन 2 या 3 मिनट में।

थी जय नारकी जी कि आज का सॉन्ग सिलेक्शन आप सभी को कैसा लगा है? भाई ये गाना खत्म होते मुझे लग रहा है कि हमारा टाइम भी ओवर हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, आपकी जो एक दिली ख्वाहिश होती है ना कि गानों की प्लेलिस्ट तो सकता मैम, तो मैंने सोचा दिल से गाना चला दूं यार। आइए सुनिए इस प्यारे से गाने को और फिर मैं आपसे आऊंगी चाचा बाय करने के लिए, लेकिन आप सुनिए इस प्यारे से गाने।

ओके लिसनर्स, तो मुझे दे इजाजत, मैं मिलूंगी कल सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आज के प्रोग्राम का फीडबैक देना ना भूलिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। सभी लोगों को ये मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है कि सभी लोग प्लीज आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9268-9976-9260-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरशु नदी, और प्रोग्राम चल रहा है कॉलर ट्यून कोड। फ्राइडे का स्पेशल वाला शो, यानी कि बॉलीवुड वाला दिन, बॉलीवुड की बातें, बॉलीवुड की गपशप, और ऑफकोर्स बहुत सारी गेम्स के साथ हम आ चुके हैं आपके फ्राइडे को और भी स्पेशल बनाने के लिए। फरमाइशों वाला कार्यक्रम, जिसके अंदर आपकी फरमाइशें होने वाली हैं, कुछ गेम्स होने वाले हैं, आपकी मेरी बातें होने वाली हैं। तो आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM रेडियो ज्ञान गोंडा शहर की धड़कन पर, और हमारे पास आज की हमारी पहली कॉल भी आ चुकी है। लेट्स सी कौन है। हेलो हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून जी, आपका नाम?
1: डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू राजस्थान से राहुल बात कर रहा हूँ मैम।
0: क्या बात है भाई, राजस्थान से स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगी आप राजस्थान की भाषा में बोल के बताइए थोड़ा।
1: राजस्थानी में क्या अब आपको आती है? राजस्थानी थोड़ी बहुत है।
0: कोशिश कर सकते हैं। कहते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वही है जो कोशिश करता है।
1: वैसे राजस्थानी में हमारे मारवाड़ी बोलते हैं, तो मारवाड़ी तो आपको, जैसे मैंने अभी आपसे किया कि जैसे हिंदी में बोला तो इसको ऐसे बोलेंगे, हेलो जी, नमस्ते, खम्मा गणी, राम राम सा,
0: राम ऐसे राम बोलते सा। हमारे ओके तो क्या खम्बागणी साहब, और क्या आप खुद को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मारवाड़ी में? मुझे भाषाएं सीखने का बड़ा शौक है।
1: मारवाड़ी मैम थोड़ी मेरे को भी इतनी नहीं आती, क्योंकि मैं क्या है कि इधर हिंदी बेल्ट में हूँ, हरियाणा की, दिल्ली एनसीआर की तरफ हो, तो ये जो मारवाड़ी बोलते हैं हमारे, ये जोधपुर पूरा जो मारवाड़ में है ना, वहाँ पे ज्यादा बोलते हैं थोड़ी।
0: ओके, समझ गए।
1: हमारी थोड़ी हिंदी और हरियाणवी मिक्सअप चलती है।
0: अरे वाह, हमको दोनों ही भाषा बड़ी पसंद है। वैसे हमको तो भाषा ही में बहुत पसंद है, फिर
1: चाहे हरियाणवी में। जी जी जी मैम,
0: तो वैसे तो हरियाणवी
1: में मैं आपसे पूछूं मैम क्या कर रहे हो, तो उसको हरियाणवी में बोलेंगे कुकर कर रहा है, ऐसे बोलेंगे।
0: हमको थोड़ा टाइम समझने में ही लग जाएगा, ये क्या बोल गए आप।
1: जी मैम, उन्ती मैम बोल रहे हो ना आप?
0: हाँ जी, उन्नति जी ही बोल रहे हैं हम। अपने नाम के आगे जी लगाना कोई हमसे सीखे।
1: जी जी लगाने से मैम आदमी की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है
0: ना, और हम खुद ही खुद की रिस्पेक्ट कर लेते हैं। मैं ना वो कुछ नाना पाटेकर से थोड़ी ज्यादा ही खुश हो चुकी हूँ, उनसे इंस्पायर्ड हूँ।
1: आप अच्छी बात, आप सेल्फ रिस्पेक्ट में बिलीव करती हो मैम।
0: बेशक, अभी कहते हैं सेल्फ लव की पहली सीढ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट ही होती है, और हमारे नाना पाटेकर साहब सिखाते हैं कि अपनी आरती उतारने में क्या दिक्कत है।
1: जी मैम,
0: अच्छा,
1: चलो उनको भी ट्रिब्यूट रहेगा, अच्छे हास्य कलाकार थे मैम।
0: हाँ जी, उनका ट्रिब्यूट रहने वाला
1: है। शाहरुख खान साहब के साथ वो गाना उन्होंने जो गाना शूट किया था,
0: कौन सा?
1: सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ,
0: लवेरिया हुआ।
1: जी जी मैम, अच्छा? और गुलामे मुस्तफा, कई मूवी उनकी अच्छी थी। एक वेलकम मूवी में भी उन्होंने तेरा सराफा कुछ गाने में भी।
0: हाँ जी, बेहतरीन बात कही है। फिलहाल आप उनका कोई मुझे डायलॉग सुना सकते हैं नाना पाटेकर साहब का, जो आपका सबसे पसंदीदा हो?
1: उनकी मिमिक्री तो देखो बहुत, उनकी मिमिक्री थोड़ी डिफिकल्ट है।
0: आपको मिमिक्री नहीं करनी, आपको बस उनका कोई एक डायलॉग बताना है जो आपको बहुत पसंद है।
1: डायलॉग तो कई है मैम, अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को थोड़ा।
0: चलिए कोई बात नहीं, अपना गाना बता दीजिए और अपना नाम एक बार और बता दीजिए प्लीज।
1: मेरा नाम राहुल है, मैं राजस्थान झुंझुनू से बात कर रहा हूँ।
0: ओके, आपका
1: गाना?
0: और अभी
1: जो प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ कॉलर ट्यून, आरजे उन्नति मैम।
0: जी
1: और जी, और मैं आज गाना सुनूंगा, मूवी का नाम है क्या यही प्यार है,
0: क्या यही बाबुल प्यार है।
1: और बाबुल सुपुरियो और अलका याग्निक जी की आवाज में गाना है, और गाने के बोल है, मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, कितना मजा है, कैसा नशा है, प्यार करके देखो ना, ये गाना सुना दीजिए मैम।
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कॉलर ट्यून में कॉल करने के लिए। आई होप आपका दिन शुभ जाएगा और आप एंजॉय करेंगे कॉलर ट्यून हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो भाई ये तो थे हमारे साथ राहुल जी फ्रॉम राजस्थान, और आइए एंजॉय करते हैं उनकी पसंद पर ये वाला नगमा।

0: और इससे पहले कि हम अगली फरमाइश ट्यून करते, हमारे पास एक और कॉल आ गई है। एंड लेट्स सी कौन है हमारे साथ इस बार कॉल पे। हेलो
1: हेलो, राम राम, गुड आफ्टरनून, सब कैसे हैं?
0: हेलो राम राम, हम ठीक हैं, आप बताइए।
1: हमारे भी अंदाज अच्छे हैं।
0: आपके अंदाज अच्छे हैं, हमें तो आप ही अच्छे लग रहे हैं।
1: शुक्रिया,
0: स्वागत करते हैं आपका कॉलर ट्यून में। और प्लीज अपना नाम बता दीजिए।
1: जी बिल्कुल, मेरा नाम है रोशनी रावत और मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: वाह, बल्ब जल गया ऊपर। इसी के लिए हम कहते हैं आप आए, रोशनी आई।
1: बिल्कुल, साथ में अपने रोशनी का उजालों का ढेर सारा गट्ठर बांध के लाए।
0: ओके, तो रोशनी जी अभी आप क्या कर रही हैं, मुझे बता सकती हैं?
1: मैं हॉस्पिटल में हूँ, सिविल हॉस्पिटल में।
0: ओह माय गॉड, व्हाई, क्यों,
1: किस लिए? सो नहीं रही,
0: मैं सोच रही थी कि आज आप जग कैसे रही हैं, क्योंकि आपके एंट्री का टाइम होता है 3:40।
1: लेकिन आज मैं जग रही हूँ और इसका कारण ये है कि हमारे घर में कोई नन्हा मुन्ना सा आने वाला है, नन्नी मुन्नी।
0: क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, और हम इंतजार में बैठे हुए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, लड्डू मिलेंगे, वो भी संडीला से आएंगे, गुलता दीदी लाएंगे उधर से।
0: क्या बात है, लड्डू भी आए,
1: वो भी तो बुआ बनेंगी। क्यों, बुआ कहाँ कहे ना, नाना बुआ उधर से लाएंगी।
0: अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल, और हम तो मिठाई के साथ साथ उस प्यारे से बेबी को देखने के लिए भी इंतजार में बैठे हैं। अब
1: आप जैसे ही आएगा खुशखबरी मिलेगी, बिल्कुल आएगी फोटो आपके पास।
0: चलिए चलिए, हम इंतजार करेंगे फिलहाल, क्योंकि अभी हम अपना शो ट्रिब्यूट दे रहे हैं नाना पाटेकर साहब को। तो मैं आपसे चाहूंगी कि उनका कोई एक डायलॉग उन्हीं के अंदाज में थोड़ा बोल के दिखाएं।
1: जी जी बिल्कुल, बोल उन्हीं का एक डायलॉग।
0: जी
1: डायलॉग कुछ इस तरह है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
0: हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। और वैसे आपने डायलॉग तो बहुत अच्छा बोला, लेकिन जैसे आपने बोला ना आ गए, मुझे सुनाई पड़ा आ गई, आ गई मेरठ की मशहूर नान खटाई, आ गई।
1: जैसे उनका डायलॉग है वैसे हमारे यहाँ सिचुएशन चल रही है कि कब आएगा कब आएगा। मेरी दीदी का बच्चा है ना, वो अब 4 साल का हो गया, तो बार बार बोल रहा है मामी का बेबी हुआ, मामी का बच्चा कहाँ है, मामी कहाँ है, वीडियो कॉल करके दिखाओ जल्दी से मुझे।
0: बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, इवन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ, और अब मैं भी सवाल ये करूँ कि कब आएगा कब आएगा। इससे पहले मैं अगला गाना ट्यून करना चाहूंगी।
1: जी, और मैं ना कुछ लोगों को डेडिकेट करना चाहूंगी, स्पेशल गाना।
0: पहले गाने का नाम, देन उनका नाम जिनको आप डेडिकेट करने वाले हैं।
1: जी, मूवी का नाम है मुस्कान और गाने को बोल है नच पंजाबन, और स्पेशली डेडिकेटेड हमारे आसिफ भैया को रहेगा जो तेलंगाना से है, और आपको रहेगा, और हमारी अनु पांडे जी और हमारी गुलशन दीदी महेंद्र भैया और भी जितने सुन रहे हैं सभी लिसनर्स को।
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपका दिन शुभ हो। और जाने से पहले बता दूं, वो छोटे से प्यारे से बेबी का फोटो हमको जरूर सेंड कीजिएगा, इंतजार नहीं हो रहा है।
1: भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे, हमें खुद ही भी सब रीति इंतजार है कि जल्दी आए तो हम सबको बताएं खुशखबरी।
0: चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि हम तीसरी बार फिर बोल दें यही लाइन, मैं चाहूंगी कि आप गाना एंजॉय करें।
1: आ गए हमारी मौत का तमाशा देखने।
0: नहीं नहीं, फिलहाल तो अभी हम खुशखबरी देखने आए हैं और हम उसी के इंतजार में बैठे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत
1: शुक्रिया।
0: तो भाई ये तो थी हमारी रोशनी जी, जिनके घर में आ रही है खुशियों की बहार, बधाई हो, और हम इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल आइए ट्यून करते हैं और एंजॉय कीजिए पहले हमारा ये गाना जो हमने बीच में ही रोका था, और हम मिलते हैं इसके बाद हमारी नच पंजाबन को लेकर के। स्टे ट्यून्ड।

तो भाई ये तो फरमाइश थी हमारे राहुल जी की, और आइए अब एंजॉय करते हैं हमारी अगली फरमाइश जो कि ऑफ कोर्स आपकी अपनी रोशनी जी की है, एंड इसके बाद मिलते हैं लेकर के अगली फरमाइश को जो कि आपके कॉलर ट्यून में होने वाली है आपकी अपनी। तो अपनी फरमाइशें करने के लिए उठाइए अपना फोन, डायल करें 6393316429।

0: इससे पहले कि हम दोनों हाथ हवा में उठाकर नाचते और पंजाबी बन जाते, इससे पहले हमारे पास कॉल आ गई, तो आइए देखते हैं कॉल पे कौन है। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया है। और गोंडा की जो 89.6 एफएम का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें मेरा कॉल लग चुका है, तो ऑन एयर पहुंच चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम बता दीजिए प्लीज।
1: जी मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश तली बोल रहा हूँ।
0: अविनाश जी, कैसा मौसम है?
1: मौसम तो बस हल्का हल्का बादल छाए हुए हैं और हल्का हल्का धूप भी बादल के बीच में से जब निकलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ है और अब नवरात्रि आने वाला है, तो त्रिपुरा में तैयारी बहुत ही जोर शोर से चल रहा है।
0: अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, अक्टूबर होती है सर्दियों की शुरुआत का महीना, आप ये गर्मी बरसात क्यों भेज रहे हैं त्रिपुरा से?
1: जी क्या है कि अभी मौसम का देखिए पता नहीं चलता, क्योंकि मौसम कब रंग बदल दे। जैसे देखिए अभी ओले गिरने का टाइम नहीं है, फिर भी कभी अभी यूपी में बहुत सारी जगह पे ओले भी गिरे थे और बारिश का ऐसा जोरदार प्रवाह हुआ था कि मतलब पूरे तहस नहस कर दिया था। तो ऐसा देखिए ये सब जो आपदा आती है ये बोल के नहीं आती, इसी तरह से हम भी जब भेजते हैं वो हो सकता है कहीं किसी का मदद मिल जाए इससे थोड़ा बहुत।
0: अरे हम बोल के कैसे नहीं आते, हम तो रोज बताते हैं कि कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, नरसों मिलेंगे, तरसों मिलेंगे और इसके अलावा बरसों मिलेंगे।
1: जी जी जी बिल्कुल, वो तो आप बताती हैं लेकिन मौसम थोड़ी ना बताता है।
0: हाँ तो वही तो मैं जानना चाह रही थी कि हमारे यहाँ की 4 दिन की बत्ती गुल हो गई थी, आपको पता कितना टेंशन का माहौल बन चुका था सब जगह। चलिए
1: वो इसलिए तो मैंने बताया था कि आप चार्ज अपना संभाल के रखिएगा, क्योंकि मोबाइल अगर एक बार बत्ती गुल हो गई तो फिर किसी से संपर्क भी नहीं हो पाएगा।
0: और अब मेरा ख्याल है कि मुझे आपकी बत्ती गुल करनी चाहिए, एक नाना पाटेकर का डायलॉग हो जाए।
1: अच्छा, नाना पाटेकर के डायलॉग, ठीक है सुना देते हैं।
0: जी
1: अरे नाथ, आज से तू उल्टा गिनती गिनना शुरू कर दे, क्योंकि यही 1500 की नौकरी करने वाला तुझे एक दिन 150 का कफन पहनाएगा। क्योंकि आज से उल्टा गिनती गिनना शुरू कर दे, क्योंकि जिस दिन भी तेरे खिलाफ मुझे एक भी सबूत मिल गई ना, उस दिन तेरी पापी आत्मा को ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी ये पापी आत्मा अगले 7 जन्मों तक 10 बार किसी दूसरे शरीर में घुसने के लिए 10 बार सोचेगा।
0: क्या बात है, क्या बात है। अब ये बताइए कि गाना कौन सा सुनेंगे आप?
1: गाना मुझे देखिए आज नाना पाटेकर जी के डायलॉग की बात हो रही है और तो तिरंगा मूवी से ही एक गीत है, मेरी आन तिरंगा है मेरी जान तिरंगा। इसमें क्योंकि देखिए कल राजकुमार जी का भी जन्मदिन गया था और नाना पाटेकर जी का कल, तो इन दोनों का देखिए मिला जुला है जो मूवी है तिरंगा, और इसमें उन दोनों का डेट ऑफ बर्थ और उनका जो कल नाना पाटेकर जी चले गए तो इनमें बहुत ही मेल है, क्योंकि नाना पाटेकर जी का कल निधन हो गया था और इसी दिन मतलब कि कल का दिन राजकुमार जी का जन्म हुआ था और कल का 100 साल का उनका 100वां जन्मदिन था, तो इसीलिए मैं ये दोनों को ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इसी गीत को मैं सुनना चाहूंगा।
0: ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय करते रहिए, कॉल अच्छी उन्होंने आया, आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।
1: बिल्कुल, थैंक यू, बाय बाय।
0: तो भाई आइए एंजॉय करते हैं, ये मेरी जान तिरंगा है, ये मेरी शान तिरंगा है, हमारे नाना पाटेकर जी के लिए ट्रिब्यूट दिया गया है, एंजॉय करते रहिए। है, मिलते हैं अगली फरमाइश पर, अगले कॉल पर, देखने के लिए भैया कि अगली कॉल किसकी है और कौन है जो हमें अगला डायलॉग सुनाने वाला है, तो बने रहिए, मिलते हैं आपके चैट बॉक्स में बस कुछ ही पलों में।

0: भैया हमारे साथ एक और लिसनर जुड़ गए हैं और आइए उनसे बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो
1: हेलो गुड आफ्टरनून मैम।
0: आइला हम तो डर गया। हेलो जी आपका नाम?
1: जी मैम आप कैसे हो?
0: मैं ठीक हूँ। अपना शुभ नाम गुड नेम वेरी गुड नेम बता दीजिए प्लीज।
1: मैं सोच रही हूँ नाम क्या बताऊँ। नाम तो अभी कोई सोचा ही नहीं क्या बता दूँ। कोई नाम ही नहीं रखा घर वालों ने।
0: ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा कैसे हो गया?
1: ये पॉसिबल है मैम।
0: ऐसा कैसे हो गया भैया?
1: आप नहीं थी अभी तक ना इसलिए ऐसे हो गया।
0: चलिए हम धर देते हैं।
1: आप तो कोई अच्छा सा
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं हम धर देते हैं आपका नाम। आज आपका नाम है अनु पांडे जी। देखा अच्छा नाम रखा ना मैंने।
1: बहुत अच्छा नाम रखा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा नाम रखने के लिए।
0: चलिए इसी खुशी में अब हमको तो नहीं कि नाना पाटेकर का डायलॉग सुना ही दीजिए।
1: काहे को इतना शोर मचा रहे हो? खुश हो तो खुश रहो। काहे का ढिंढोरा पीट रहे हो?
0: ढिंढोरा ही तो पिटेंगे क्योंकि हम बहुत खुश हैं। हम खुश हैं तो तुम्हें खुश होनी चाहिए।
1: जी
0: और देखिए आप कैसे मुस्कुरा रही हैं। आप कैसे मुस्कुराहट को बरकरार रखिएगा।
1: अरे मैम आपका आशीर्वाद रहा और आपसे बात होती रहेगी ना तो ये मुस्कुराहट कभी कम नहीं होगी।
0: अरे क्या बात है तो हमसे ऐसे ही बतियाते रहिए। फिर गाना बता दीजिए।
1: गाना हमको तिरंगा मूवी से ही सुनना है क्योंकि कल राजकुमार जी का जन्मदिन था और नाना पाटेकर जी हमारे बीच नहीं रहे तो मैं ही गाना सुनना चाहूंगी पीले पीले ओ मोरी जानी।
0: पर पिलाना क्या है ये भी बता दीजिए। चाय पियेंगी दूध पियेंगी पानी पियेंगी कोल्ड ड्रिंक पियेंगी सोडा पियेंगी क्या पियेंगी?
1: मैं वो तो जब पार्टी में आएंगे ना तब बताएंगे क्या रहेगा।
0: अच्छा
1: वो भी आपके साथ
0: आए, आए? हाँ? ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो गया लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मैं नाम ले ले।
0: हाँ जी चलिए भैया नाम की बरसात शुरू करते हैं और देखते हैं गाना किस किस के पास ज्यादा है और किस किस को पार्टी में इन्वाइट किया जा रहा है पीने के लिए चाय।
1: जी मैम पहले तो आप है और उसके बाद सर है और रोशनी रावत जी है गुलस्ता अंसारी जी है अमनाथ भैया राहुल जी है। कितने लोग सुने सभी के लिए है क्योंकि किसी को निराश नहीं करना। वैसे भी गाना तो सभी लोग ही सुनेंगे।
0: ओके ओके चीनी कम पत्ती कम अदरक ज्यादा ऐसी चाय कड़क बनेगी मेरे लिए। बाकी आप अपना बता दीजिए चैट बॉक्स में आपको कैसी चाय पीनी है। हमारी अनु पांडे जी पिलाने को तैयार हैं। थैंक यू सो मच अनु जी बहुत मजा आया आपसे बात करके। बाय बाय ख्याल रखिएगा। भाई ये तो थी हमारी अनु जी और ये बढ़ते हैं पहले आप एंजॉय कीजिए मेरी शान तिरंगा है और हम फिर चलेंगे पार्टी की तरफ चाय पीने और कहीं मजा आइएगा। सुनते रहिए कॉल ऑन गुंडा।

0: देखा सर, पहले लात, फिर बात, उसके बाद मुलाकात।
1: नहीं वागले, नहीं, पहले मुलाकात फिर बात।
2: एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। एंजॉय कीजिए अनुपाने जी की फरमाइश। लेकिन इस गाने को ट्यून करने से पहले क्यों ना मेरे ख्यालों में जो ख्याल है कि चैट बॉक्स की तरफ चल दिया जाए, तो ये ख्याल आपका भी होना चाहिए, है कि नहीं? तो आइए ट्यून करते हैं। आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली गोंडा शहर की धड़कन पर। चैट बॉक्स में मैसेजेस की झड़ी लग चुकी है। तो भैया किन किन के पैगाम आ चुके हैं, किन्होंने बहुत मोहब्बत से पैगाम भेजे हैं, उनकी थोड़ी मोहब्बत को देखते हैं, स्वीकार करते हैं और ऑफ कोर्स उनके मैसेजेस को पढ़ते हैं। महेंद्र दीपन जी का मैसेज आया है फ्रॉम राजस्थान। लिखा है, गुड आफ्टरनून, नमस्ते आशुनती मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप महेंद्र जी। एंड इसके बाद अरविंद जी का मैसेज है, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी, हेलो कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। बाबू अंसारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अहमदपुर बाजार बाराबंकी से, आपका भी स्वागत करते हैं। तबिश खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू यू। आसिफ अंसारी जी लिख रहे हैं हैदराबाद से, गुड आफ्टरनून अति मैम, हैदराबाद तेलंगाना से। क्या बात है भैया, हैदराबाद की बिरयानी खाने का अब हमारा दिल कर रहा है। और मैंने सुना है कि भैया आपकी शादी होने वाली है, तो कंग्रेचुलेशंस एंड गुड आफ्टरनून टू यू। इसके बाद लिखा है, पक्का आप हम सबकी दोस्त हो आरजी मैम। हाँ जी, इसमें कोई शक है? अगर आपको शक है तो शक हटा दीजिए, क्योंकि शक बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त दोनों ही हूँ। एंड इसके बाद है नाजिया अंसारी जी का मैसेज, गुड गुड आफ्टरनून अति मैम, गुड गुड आफ्टरनून टू यू नाजिया जी, कैसी हैं आप। राही फ्रॉम लखनऊ लिख रही हैं, गुड आफ्टरनून मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू। धर्मेंद्र मोहन जी आवास विकास से लिख रहे हैं, जी नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक, नमस्ते एंड थैंक यू सो मच। महेंद्र जी ने लिखा है कि केकर हो नती मैम जी, कैसी हो नती मैम जी, मैं ठीक हूँ। केकर का मतलब थोड़ी मैं समझ नहीं पाई थी और मुझे लगा था आप पूछने जा रहे थे कहां से हूं नती मैम जी, मैं तो गोंडा से हूं। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारे अगले मैसेज पर। अब्दुल जी का मैसेज आया है, ऐसा नहीं कि तेरे सिवा कोई नजर नहीं आता। क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा नहीं कि तेरे सिवा कोई नजर नहीं आता, हकीकत तो यह है कि किसी और को देखने की हसरत नहीं रही। क्या बात है, लेकिन ये लिखा किसके लिए गया है, बस ये बता दीजिए, और ताकि हम आपका ये लिखा हुआ जो खूबसूरत सी लाइन सही है उन तक पहुंचा सके। नाजिया जी का हंसते हंसते हो गया है पेट दर्द, और इसीलिए उन्होंने अपनी हंसी को ट्रांसफर करते हुए महेंद्र जी की तरफ भेज दिया है, और महेंद्र जी भी खिलखिला उठे हैं। फिलहाल अगले मैसेज जो हमारे पास आया है आपको इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अरीबा शेख हमारे साथ जुड़ गई, हेलो गुड आफ्टरनून अति मैम एंड फ्रेंड, गुड आफ्टरनून टू यू अरीबा जी, आपका भी वेलकम करते हैं। और आई थिंक आप हमें सुनती हैं लखीमपुर से, देखा मेरी याददाश्त, बादाम बहुत खाए हैं मैंने। इसके बाद है, ये आवाज़ सुनी सुनी लगती है, सुनी सुनी आवाज़, आप हमको रोज़ सुनते हैं, फिर ऐसा डायलॉग मारेंगे तो हम रोने लग जाएंगे गाइस। इसके बाद लिखा है, हमारे यहाँ अंधेरा है पता नहीं क्यों, क्योंकि आपके यहाँ रोशनी जी अभी तक आई नहीं, हमारे यहाँ आ गई इसलिए हमारे यहाँ बत्ती जल गई। इसके बाद था, कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी, आसिफ जी ने मुबारकबाद भेजे हैं आपको। गुलफशा जी का ओके, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, गुलफशा जी लिख रही हैं, फंस गई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं फंसी है, अभी तो आपको फंसाने का इरादा है। दादा यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सुंदर आवाज़, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी स्वागत करते हैं। एंड इसके बाद है गुलफशा जी का मैसेज, उन्नति मैम गुड आफ्टरनून, और बताओ कैसे हो, सब मस्त? जी हाँ, सब मस्त, सब बिंदास, सब झक्कास। मेरा गाना सबको डेडिकेटेड है, ये बात तो दुनिया जहान को पता है अरविंद जी, कि आपका गाना यहाँ पर हर एक शख्स को डेडिकेटेड होता है। इसके बाद विकी जी हमारे साथ जुड़े हैं और कह रहे हैं, उड़ी बाबा मैं तो डर गया। कोई बात नहीं, डरते नहीं है, ये हमारे नाना पाटेकर साहब के अंदाज में जो मैसेजेस आते हैं ना, उनसे डरा नहीं करते। इसके बाद हमारे इट्स कुमार जी का मैसेज है, ओहो बहुत ही शानदार, थैंक यू सो मच। हे आज हनोनी, ए हाय कैसे हैं आप। एंड ओके, धर्मेंद्र जी लिख रहे हैं, सूरज हूँ डूब कर भी फिर से निकल आऊंगा, वक्त के इस धूल से मैं कभी नहीं घबराऊंगा, माना कि आज अंधेरे ने घेर रखा है मुझे, पर अपनी चमक से मैं फिर नया सवेरा लाऊंगा। क्या बात है, बहुत ही प्यारा लिखते हैं आप। और आपके लगातार मैसेजेस को पढ़ने के बाद अब मेरा ख्याल है कि अगले गाने को पेश किया जाए। अनु पांडे जी की फरमाइश पे एंजॉय करते रहिए और एंजॉय कीजिए पीले पीले ओ मेरे राजा। और पीना क्या है, चाय, चाय के अलावा कुछ नहीं पीना, पानी पी सकते हैं, कोकोनट वाटर भी पी सकते हैं, चलाओ है इतना, एंजॉय करते रहिए।

0: हां जी, और हम एंजॉय कर रहे थे हमारे अनु पांडे जी की फरमाइश, और इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कि जुड़ गई हैं, आइए देख लेते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
2: हेलो, गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून जी, आपका नाम? आवाज से तो हम पहचान गए। हाँ देखा, हम आवाज से पहचान जाते हैं, बहुत अखरोट खा लिए हैं हम।
2: हाँ, बहुत बादाम खाए हैं आपने।
0: बादाम के साथ साथ हम अखरोट भी खा रहे थे, कोई तो हमको लाके दे। हाँ, कोई हमको लाके
2: दे, हमको भी दे देना।
0: पर शर्त यह है, आपको दांत से तोड़ने पड़ेंगे मेरी तरह। हाँ,
2: दांत तोड़ने हैं तो शक्ल बिगड़ जाएगी।
0: नहीं, दांत नहीं तोड़ने हैं, दांत से तोड़ने हैं।
2: अच्छा, दांत से तोड़ने हैं, बहुत मजबूत दांत है हमारे।
0: हाँ तब ठीक है, क्योंकि हमने ना पेप्सोडेंट का एड देखा था और उसमें दांत से तोड़ा जा रहा था अखरोट, तब से हमने चैलेंज ले लिया है, सारे अखरोट हम दांत से ही तोड़ेंगे।
2: अच्छा
0: जी,
2: बहुत अच्छी बात है।
0: के लिए आपका स्वागत करते हैं हम कॉलर ट्यून गोंडा में, और आप मुझे डायलॉग सुनाना पसंद करेंगी या मेरे सवालों का जवाब देना पसंद करेंगी?
2: आपको जो अच्छा लगे। वैसे एक डायलॉग हम याद करके बैठे थे।
0: अरे वाह, तो शुरू हो जाइए। हमको भी बताइए, ऐसा कौन सा डायलॉग है जो आपने रट लिया है?
2: जी, वो रट लिया था, इंसान कितना भी ताकतवर हो लेकिन एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है।
0: क्या बात है, क्या बात है भाई। हम आपको बता दें, ये है नाना पाटेकर साहब का डायलॉग कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। भाई नाना पाटेकर साहब बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग करते थे, उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी सुपर्ब थी कि कई बार तो लगता था वो मेरी आंखों में देखिए मुझे ही ताने मार रहे हैं।
2: सच में आपको बहुत अच्छे कलाकार थे।
0: आपको नहीं लगा कभी ऐसा?
2: नहीं, मुझे नहीं लगा, मुझे लगा बहुत प्यार से देखते हैं सबको।
0: आई नहीं, आपने उनको शक्ति फिल्म में ना ही देखा है। करिश्मा कपूर जिस तरह से भाग रही थी ना, मेरा मन कर रहा था मैं भी भाग जाऊं, नहीं तो टीवी से निकल जाएंगे।
2: लेकिन हमें उनकी जोड़ी ना सब्बू के साथ बहुत अच्छी लगती है।
0: क्या बात है, चलिए इसी बात पे गाना बता दीजिए मुझे।
2: मुझसे शादी करोगी टाइटल सॉन्ग?
0: नहीं नहीं, आपकी शादी हो चुकी है, आप इससे कैसे पूछ सकती हो।
2: मेरी शादी हो चुकी है लेकिन आसिफ भाई की नहीं हुई, होने वाली है, बस उन्हीं के लिए ये गाना है।
0: ओके, वही मैं सोचूं कि अचानक से कैसे।
2: हम मुझे नहीं शादी करनी।
0: चलिए अभी उनको एंजॉय करने दीजिए और शादी मुबारक हो।
2: जी, और ये रोशनी जी के लिए है, अनु पांडे के लिए है, अरविंद जी के लिए है, महेंद्र जी के लिए, अरीबा जी के लिए है, और जितने लोग चैट बॉक्स पे लिए हैं, चैट बॉक्स में है, मेरी जबान फिसल रही है।
0: ओके, और ये उन सभी के लिए डेडिकेटेड है जो शादी करना चाहते हैं या जो शादी नहीं करना चाहते, उनकी तरफ से आपके लिए एक मैसेज है कि भैया शादी कर लो क्योंकि हमको दावत में आई है।
2: जी, हमें दावत खानी है और हम लड्डू खा के पछता रहे हैं, आप भी बताइए।
0: दूसरों का दुख भी नहीं देखा जाता है और दूसरों का सुख भी नहीं देखा जाता है।
2: जी, क्यों, हम दुख में हैं तो आप भी दुख में रहिए।
0: वाह, ऐसी दोस्ती बरकरार रखिएगा, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच गुलाबशाह जी।
2: थैंक यू।
0: तो भाई ये जो थी हमारी गुलाबशाह जी, जो खुद तो शादी कर चुकी हैं और आप सोच रही हैं कि सबकी शादी करवा दे, तो ये गाना आप सभी के लिए डेडिकेटेड है, एंजॉय करते रहिए। हमें बख्श दिया गया है, इसका मतलब हमें शादी नहीं करनी है।

हाँ जी, और हमारे आसिफ जी के लिए, बाकी सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड था गुलफशा जी की तरफ से, मुझसे शादी करोगी, लास्ट में कह भी दिया कि हाँ तुमसे शादी करूंगी। सूर्य निगम, सुरंदी चौहान, उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे थे जली शेरवानी का लिखा हुआ गाना। और हम आपको बता दें, सलमान खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा पर फिल्माया गया ये सॉन्ग था। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। मुस्तफा जी जुड़ गए हैं फ्रॉम सऊदी, आपका स्वागत करते हैं हम कॉलर ट्यून गोंडा में। अरविंद जी का मैसेज आ गया है कि हमारा गाना बजा दो। सानिक सबर करो यार, बजाते हैं, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा पेशेंस, और कहाँ, क्योंकि यहाँ पे ना सब्र का फल जो होता है वो गाने होते हैं, और आपके गाने, क्योंकि आप हमने साथ गेम नहीं खेल रहे थे, इसलिए हम तानिक आपका गाना लेट बजाएंगे, बट बजाएंगे ज़रूर, ये हमारा वादा रहा। तो आइए इन्जॉय करते हैं हमारे अगले गाने को। अगला गाना जो आया है वो आया है घर आजा परदेसी। क्या बात है, गदर फिल्म से इन्जॉय करते रहिए। और ओके, ये गाना हमारे DDLJ से फरमाइश थी, और दोनों गाने को हम मिक्स करने वाले थे। इन्जॉय करते रहिए, हम मिलेंगे इस गाने के उस पार, सुनते रहिए। फरमाइश है बैंगलोर से राजेश मीना जी की, और अगली फरमाइश हमारे पास है बाबू अंसारी जी की अहमदपुर बाराबंकी से। मिलते हैं इस गाने पर, तब तक के लिए सुनते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान 89.6 FM।

पटना में, एंड इसके बाद चांद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपने लिखा है हाय हाय कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं। पप्पू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। कॉल ट्यून गोंडा में लगातार आपकी फरमाइशें आ रही हैं और लगातार आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए कॉल ट्यून गोंडा। अगली फरमाइश बाराबंकी से है, अरिजीत सिंह की आवाज में एंजॉय कीजिए, मन जो गया बाबू अंसारी जी की फरमाइश है, और आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गोंडा 89.6 FM रेडियो ज्ञान स्लीपर, गोंडा शहर की धड़कन पर एंजॉय करते रहिए। अपनी फरमाइशें भेजने के लिए बस उठाइए अपना फोन, डायल करें 6393316429 और अपने नाम के साथ साथ अपने शहर का नाम और अपने गाने के बोल भेज दीजिए हम तक।

और ये फरमाइश थी हमारे बाबू अंसारी जी की फ्रॉम बाराबंकी अरिजीत सिंह की आवाज़ में. आप इंजॉय कर रहे थे मन जो किया, धीरज कुमार के लिखे हुए बोल थे और बहुत ही प्यारा सा गाना आप इंजॉय कर रहे थे. फिलहाल आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ. नाइस सॉन्ग लिखा है हमारे महेंद्र जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया. धर्मेंद्र जी की तरफ से आ गए हैं बहुत सारे इमोजीज, तो बहुत बहुत शुक्रिया. अगली फरमाइश हमारे पास जो आई है वो किसी और की नहीं, अब्दुल मुजीम की है और वो इंजॉय करना चाहते हैं. बड़े शान वाला है तो इंजॉय करते रहिए. ये प्यारा सा नगमा है राहत फतेह अली खान की आवाज़ में, ताजदारे मदीना. मिलते हैं इस गाने के उस पार, यानी कि इस फरमाइश के उस पार, आपकी अगली फरमाइश को लेकर के, जो कि हमारे देवी प्रसाद जी की है. एंड ये गाना डेडिकेट किया है उन्होंने मुझे, थैंक यू सो मच. इसके बाद है धर्मेंद्र मोहन जी एंड चांद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. इंजॉय करते रहिए.

और ये फरमाइश थी हमारे अब्दुल मजीद साहब की, एंड हमारे साथ कैफल हसन जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं। एंड आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। देवी प्रसाद जी की फरमाइश पर एंजॉय कीजिए कॉलेज की लड़की, तो एंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे अगले सॉन्ग पर। अगला सॉन्ग हमारे धर्मेंद्र जी की फरमाइश है, जब से दूर लगे हो रहने। एंजॉय करते रहिएगा, मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

कट जाए। और ये फरमाइश थी हमारे देवी प्रसाद जी के। नाइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। जब से दूर रहने लगे हो रहने, एंजॉय करते रहिए अल्ताफ रजा की आवाज में। मिलते हैं अगले गाने को लेकर के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और ये फरमाइश थी हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की फ्रॉम आवास विकास। और आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला गाना हमारे पास आया है चांद बाबू जी की फरमाइश, 90s का नगमा है, तेरा सजना सवरना बिन साजन के बेकार है। एंजॉय करते रहिए। आवाज अलका जी कुमार सानू की, चीता फिल्म से 1994 में रिलीज किया गया गाना। आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा विद राजू नतीक।

और ये फरमाइश थी हमारे चांद बाबू जी की। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना पेश करते हैं आपके लिए राजू टेलर्स की फरमाइश, लड़की अकेली तू भी मैं भी अकेला। एंजॉय करते रहिए। अगला गाना है हमारे महेंद्र जी का, राम नरेश जी का, रघुवेंद्र प्रताप सिंह जी का, अरविंद मौर्या जी का, रईस साहब का, सुरेश जी का, शारदा प्रसाद जी का, निशा जी का, उस्मान खान का एंड मुस्तफा फ्रॉम सऊदी एंड अमित कुमार जी का, जिकू भाई का। एंजॉय करते रहिए।

एंड आइए अब बढ़ते हैं इसी के बाद हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग जो आपके लिए हम पेश कर रहे हैं वो है हमारे महेंद्र जी का, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और ये फरमाइश आई थी हमारे पास सीधे राजस्थान से, इंजॉय कर रहे थे आप हमारे महेंद्र जी की फरमाइश। एंड महेंद्र जी की तरफ से आ गया है मैसेज, अरे वाह उन्होंने मैम जी मारो गानो बजा दियो, दिल खुश कर दिया थाने घनो घनो धन्यवाद, सी मारी तो मौज करवा दी। इतनी अच्छी मारवाड़ी नहीं लिखनी होती है सर, क्योंकि हम हिंदी वाले हैं, हम अटक जाते हैं इसमें। रेडियो पर मारो गानो बजायो, मारो सीना गर्व से चौड़ो हो गयो, राम राम सा मैम जी, थैंक यू सो मच। और इतनी अच्छी मारवाड़ी पढ़ने के लिए मैं खुद पे थोड़ा सा प्राउड फील कर लूँ क्या कुछ देर के लिए ही सही। एंड राज मौर्या जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेलो मैम, हेलो कैसे हैं आप? राज जी आपका स्वागत करते हैं। और राज जी आपको राज की बात बता दें कि फरमाइश करने के लिए आपको कॉल करना पड़ता है 6393316429 पर। इंजॉय करते रहिए कॉल अच्छी गुंडा। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला गाना हमारे पास आया है राम नरेश जी की फरमाइश, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, क्योंकि नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि वाइब्स को बरकरार रखते हुए एंजॉय करते रहिए ये बेहतरीन सा भजन। और हम मिलेंगे अगले गाने पर। अगली फरमाइश हमारे अरविंद मौर्या जी की है, तो सुनना मत भूलिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए कॉल ट्यून गुंडा विद राज। ये है आपका अपना रेडियो ज्ञान 89.6 FM।

हाँ जी, तो आप एंजॉय कर रहे थे हमारे राम नरेश जी की फरमाइश। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास है हमारे अरविंद जी की, और आप एंजॉय करने जा रहे हैं। ये दोस्ती तेरे दम से है, और इस गाने की फरमाइश जो आई है भैया, बहुत सारे लोगों को डेडिकेट किया गया है, जिसमें हमारी गुलबशा जी, अरीबा जी, रोशनी जी, महेंद्र जी, नागेश्वर जी, इट्स कुमार जी, धर्मेंद्र मोहन जी, एंड आप सभी जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, उन सबको डेडिकेट करते हुए ये गाना उन्होंने आपके लिए फरमाइश की है। तो एंजॉय करते रहिए। अगली फरमाइश हमारे पास है रघुवेंद्र प्रताप सिंह जी की एंड रई साहब की। मिलते हैं इस गाने के अगले गाने पर, यानी कि इस गाने के बाद अगली फरमाइश पर। आपकी अपनी कॉलर ट्यून गुंडा को आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो 91.6 FM, फ्राइडे स्पेशल 2 घंटे का, जो कि आपकी आशीर्वादी लेकर आ चुकी है।

आप एंजॉय कर रहे थे हमारे अरविंद जी की फरमाइश दोस्ती फिल्म से। ये दोस्ती तेरे दम से है, अक्षय कुमार बॉबी देओल पे फिल्माया गया गाना था। नदीम श्रवण का संगीत, उदित नारायण सोनू निगम की आवाज और समीर साहब के लिखे बोल थे। एनएसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग नाना पाटेकर जी की फिल्म से आया है, तेरा गम मेरा गम। एंजॉय करते रहिए। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और बहुत ही प्यारा संगीत, बहुत ही प्यारा सा नगमा। जैसे कि आज हमारा शो ही ट्रिब्यूट था नाना पाटेकर साहब के लिए, उनकी याद में रखवेंद्र प्रताप सिंह ने उन्हीं का पसंदीदा गाना फरमाइश की है। मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और ये फरमाइश थी हमारे रघुवेंद्र प्रताप सिंह जी की, तेरा गम मेरा गम एक जैसा है। बहुत ही प्यारा सा नगमा था और हम आपको बता दें आनंद बख्शी के बोल थे, राजेश रोशन का संगीत। एन एस सी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग जो हमारे पास है वो है टैक्सी नंबर 9211 से एक नज़र मैं भी। तो इन्जॉय करते रहिए, रईस साहब की फरमाइश है और हम मिलेंगे अगले गाने पर जो कि हमारे पास चौक से आ चुकी है, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। अगला सॉन्ग वन ऑफ माय फेवरेट होने वाला है, सुरेश जी की फरमाइश है, लेकिन इस गाने के इस बार इन्जॉय करते रहिए कॉल ट्यून गोंडा।

0: करना है।
1: हां जी, तो मुझे लगता है अब अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा रुख बदलने वाला है हमारे प्रोग्राम का। अभी आप एंजॉय कर रहे थे केकेएस सुनील चौहान के वास में टैक्सी नंबर 1 से एक नजर में भी, और ये जो गाना था ना, इसको लिखा था हमारे विशाल साहब ने। और अब क्योंकि आपके एफएम का मूड चेंज करने की बारी आ चुकी है, और हमारे पास रिक्वेस्ट भी आ गई है कि क्यों ना एफएम का मूड चेंज कर दिया जाए, और गाने की फरमाइश अब लगातार जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट आई है, नई आई है, नए नए गाने आ चुके हैं, हाई बीट आ चुका है। और हमारा पहला गाना जो है वो ऑफकोर्स चौक से आया है सुरेश जी की फरमाइश पर, मेरी महबूबा, एंजॉय करते रहिए। और वन ऑफ माय फेवरेट गाना है, सारके पे फिल्माया गया सॉन्ग है, 1997 में रिलीज किया गया था कुमार सानू अलका जी की आवाज में, आनंद बख्शी के लिखे बोल है, नदीम श्रवण का संगीत है, तो एंजॉय कीजिए। और अगला सॉन्ग जो है वो है मथुरा से हमारे शारदा जी का, और उन्होंने कहा है कोई भी तो मेरी पसंद का कोई एक गाना आपको जरूर पेश करते हैं।

अरे भैया महबूबा मिल जाएगी, तड़प कर आएगी, और आप एंजॉय कर रहे थे सुरेश जी की फरमाइश पर। बहुत ही प्यारा सा नगमा था और वन ऑफ माय फेवरेट गाना था ऑफकोर्स। फिलहाल आइए ट्यून करते हैं हमारे अगले गाने को, और अगला गाना हमारे पास मथुरा से फरमाइश आई है शारदा प्रसाद प्रजापति की, और उन्होंने कहा है कि अपनी पसंद का कोई भी एक गाना तो क्यों ना मेरी पसंद भी आपको थोड़ा सा डराया जाए। डर फिल्म से पेश करते हैं आपके लिए जादू तेरी नजर। आय हाय हाय, किसकी नजर में जादू है बताइए जरा।

क्या बात है भाई, एसआर के साहब जब इसमें नजर आए थे ना, भले ही वो एज अ विलन के किरदार में नजर आए थे, जो हीरो बिल्कुल भी चांस नहीं लेता है, रिस्क नहीं लेते भैया हीरो लोग कि हम विलन बन जाए, क्योंकि एक बार अगर आप विलन बन गए तो फिर आपको दुनिया विलन की नजर से देखती है। लेकिन एसआर के एक ऐसे इकलौते एक्टर हैं आई थिंक, जो विलन भी इतनी शिद्दत से निभाते हैं और विलन को लोगों से मोहब्बत हो जाती है। जब लोग जाते हैं हीरो को देखने के लिए और निकल कर आते हैं कि अब तो हम विलन के फैन बन चुके हैं, तो वो फैन अगर किसी ने पहली बार खरीदे थे या फिर गए तो पहली बार कमाए थे, तो वो हमारे एसआर के साहब ही थे। देखने गए थे सनी पाजी को, बन के फैन आए हैं एसआर के, और ये जादू सिर्फ उनकी नजरों में था। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग आपके लिए पेश करते हैं, कुर्सी की पेटी थाम लीजिए, क्योंकि अगले गाने में इमरान हाशमी नजर आने वाले हैं और आप एंजॉय करेंगे अक्सर फिल्म से झलक दिखला जा। निशा जी की फरमाइश है, तो आइए मिलके एंजॉय करते हैं।

और ये वही गाना है जिस पर भैया लोगों ने बैन लगा रखा था, कहते थे इस गाने को गाने से भूत आ जाता है। मुझे नहीं पता किसको भूत मिला किसको नहीं मिला, लेकिन एक बात ये है कि इस गाने को सुनने के बाद जो आपके अंदर एनर्जी का भूत चढ़ता है, जी हाँ वो सच है, आपका डांस करने का मन करता है। अगर आप एक भरी महफिल में बैठे हैं और आप नहीं चाहते कि आपको डांस नहीं करना है, ये गाना प्ले होता है तो आपका दिनों दिमाग और आपका हाथ पैर सब आपके खिलाफ चले जाते हैं और कहते हैं हमको डांस करना है। अब आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं करना है और वो कहते नहीं करना है, होता है ना ऐसा। जी हाँ, हिमेश रेशमिया की आवाज़ थी, समीर साहब के लिखे बोलते हैं और हिमेश रेशमिया का ही संगीत था। हिमेश जी ने वो गाने दिए हैं जिनकी याद भैया इस लेवल पर है, जिस बाजार में बजता था, जिस दुकान पे बजता था, लोग उस दुकान के फैन हो जाते थे। फिलहाल आइए बढ़ते अगले गाने को पेश करते जो कि हमारे पास उत्तराखंड से आया है, एंड किस बेखुदी में इस गाने को लिखा गया है जरा वो एंजॉय कीजिए। गाने का नाम है ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, दीवाना फिल्म से, क्योंकि आपको भी पता है मोहब्बत में ही आपको एक प्यारा सा नाम दिया जाता है और यहाँ पर दिव्या भारती ने SRK को नाम दे दिया था दीवाना का।

हाँ जी भैया, तो आप एंजॉय कर रहे थे दीवाना फिल्म से ऐसी दीवानगी। उत्तराखंड से रीना शर्मा जी की फरमाइश आई थी, बोल थे समीर साहब की आवाज थी, अलका जी विनोद राठौड़ की, नदीम श्रवण का संगीत। और आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे उस्मान खान जी की फरमाइश है, तो जरा एंजॉय करते रहिए आज और कल का गाना ये वादिया ये फिजाए। मोहम्मद रफी की आवाज में अगला सॉन्ग पेश करेंगे हम आपको सऊदी से, जो कि हमारे मुस्तफा जी की आई है। उसके बाद है अमित कुमार जी, जुगु भाई और आसिफ अंसारी जी। एंड जाने से पहले हमारे पास राज जी की भी फरमाइश आ चुकी है, तो उनकी फरमाइश को भी जरूर कवर अप किया जाएगा।

और आप एंजॉय कर रहे थे हमारे उस्मान खान जी की फरमाइश को। आइए बढ़ते हैं अगले गाने पर। सऊदी से भेजा गया है गाना तुम तो धोखेबाज हो। ओह माय गॉड भाई, सऊदी से ये ताने मुस्तफा जी। फिलहाल के लिए एंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे अगले गाने पर। अगला गाना हमारे अमित कुमार जी का है लाल परी। एंजॉय करते हैं लेकिन इस गाने के उस पार।

और ये फरमाइश थी हमारे मुस्तफा जी की, उन्होंने भेजी थी सऊदी से। और आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला गाना पेश करते हैं अमित कुमार जी की फरमाइश पर, लाल परी। एंजॉय करते रहिए। एंड बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी आपके इन प्यारे से इमोजीज के लिए।

और अब एंजॉय कर रहे थे हमारे अमित कुमार जी की फरमाइश। अब आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। ये फरमाइश आई हमारे जग्गू भाई की। इसके बाद है आसिफ अंसारी जी की, इम्तियाज जी की और हमारे राज जी की फरमाइश। लगातार फरमाइशें हैं, तो बने रहिए, एंजॉय करते रहिए।

वक्त को मद्देनजर रखते हुए आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला गाना हमारे पास हैदराबाद तेलंगाना से है और गाने का नाम है अक्सर इस दुनिया में दीवाने मिलते हैं। एंजॉय करते रहिए धड़कन फिल्म से और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार लेकर के हमारी अगली फरमाइश जो ऑफ कोर्स किनकी है आप भी जानते हैं, हमारे इम्तियाज जी की है और हमारे राज जी की है। स्टे ट्यून्ड।

माफी चाहेंगे बीच में रोकने के लिए, लेकिन आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। इम्तियाज जी की फरमाइश पे आप एंजॉय कीजिए ये वाला नगमा। और हमारी आज की जो आखिरी फरमाइश है वो है, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। स्टे ट्यून्ड।

एंड ये फरमाइश थी हमारे इम्तियाज जी की, और अब बारी है हमारे शो की आखिरी फरमाइश को ट्यून करने का। तो आइए बढ़ते हैं, राज जी की फरमाइश आई थी हमारे पास, तो इंजॉय करते रहिए। दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, एंड ये गाना डेडिकेट करते हैं हम उन सभी को जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे पिछले 2 घंटे से रेडियो गाते ऑन फ्रिक्वेंसी और एप्लीकेशन के साथ। फिलहाल के लिए घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, तो आपसे चाहूंगी इजाजत, फिर मुलाकात होगी यानी कि कल मिलेंगे आपसे सैटरडे वाले स्पेशल एंड हमारे वीकेंड वाले शो में। तो सुनते रहिएगा कॉलर ट्यून गोंडा, आप सुन रहे हैं गोंडा का अपना एफएम रेडियो 89.6 FM। बाय बाय, ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में, और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। मैं हूं आईके श्रीवास्तव।
2: और मैं हूं रचना शर्मा।
1: लेकर हाजिर हूं गोंडा हलचल। गोंडा की छोटी बड़ी घटनाओं से आप सभी जनपद वासियों को कराते हैं रूबरू। सेवा सेतु अभियान के तहत जनपद गोंडा के मालवीय नगर पुस्तकालय में विशेष जन कल्याणकारी कैंप आयोजित किए गए हैं। बता दें कि जन कल्याणकारी कैंप का आयोजन जनपद के मालवीय नगर में किए गए। कैंप के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ आम जन तक पहुँचाया गया। कैंप से समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी वहाँ पर उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित विभिन्न योजनाओं के आवेदन प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही एवं त्वरित निस्तारण किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कैंप में पहुंचे लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कराई गई तथा आवश्यकता अनुसार निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया है। कैंप में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है।
2: एशियन गेम्स में भारत की जीत पर विदेश राज्य मंत्री ने दी बधाई। एशियन गेम्स में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की जीत पर विदेश राज्य मंत्री और गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने खिलाड़ियों को बधाई दी। शनिवार को जय महल स्थित अपने संसदीय कार्यालय में जनता दर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि ये जीत खिलाड़ियों की मेहनत, निष्ठा और लगन का परिणाम है, इससे पूरे देश का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के खिलाड़ी भी इस उपलब्धि पर गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। मैदान में मुकाबला अपनी जगह है, लेकिन खेल को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। दुनिया के देशों के बीच कई तरह के मतभेद हैं और मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन खेल को इससे अलग रखना जरूरी है।
1: जनपद गोंडा में 23 अक्टूबर को होगा गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन का मतदान। बता दें कि शिक्षक निर्वाचन को लेकर जिला प्रशासन ने की तैयारियां। जिला पंचायत सभागार में बनेगा अस्थाई स्ट्रांग रूम। 23 अक्टूबर 2026 को करीब सुबह 8 बजे से अपराह्न 4 बजे तक निर्धारित 12 मतदेय स्थलों पर कराया जाएगा मतदान। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा बताया गया कि मतदान को सकुशल एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टी तथा जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रस्थान 22 अक्टूबर 2026 को जनपद पंचायत सभागार गोंडा में किया जाएगा। मतदान प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए जिला पंचायत सभागार गोंडा के बगल स्थित कमरे को अस्थाई स्ट्रांग रूम घोषित किया गया है। मतदान संपन्न होने के बाद सभी सील्ड मत पेटिकाओं, गोपनीय अभिलेख तथा संबंधित प्रपत्रों को अस्थाई स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा। सभी पोलिंग पार्टी की वापसी के उपरांत सील्ड मत पेटिका एवं गोपनीय अभिलेख को पीठासीन अधिकारी तथा नियुक्त मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सशस्त्र पुलिस बल की सुरक्षा में निर्धारित जमा स्थल पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को जमा किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।
2: मृत्यु प्रमाण पत्र में हेरा फेरी करना अब पड़ सकता है भारी। गोंडा की एक अदालत ने ऐसे ही एक मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। मामला मृत्यु प्रमाण पत्र में गलत तारीख दर्ज कर उसे संपत्ति विवाद में इस्तेमाल करने के आरोप से जुड़ा है। जांच में एक ही व्यक्ति के नाम से अलग अलग मृत्यु प्रमाण पत्र सामने आने की बात कही गई है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। ये मामला एक अहम बात सामने लाता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे आधिकारिक दस्तावेज में गलत जानकारी देना, उसमें हेरा फेरी करना सिर्फ कागजी गलती नहीं बल्कि गंभीर कानूनी मामला बन सकता है। यानी किसी की मृत्यु की तारीख या उससे जुड़ी जानकारी में फर्जीवाड़ा कर संपत्ति या किसी अन्य लाभ के लिए इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है।
1: जनपद गोंडा के नगवा अतिक्रमण मामला मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचा। बता दें कि तरबगंज तहसील क्षेत्र के नगवा गांव में सरकारी खलिहान और खाद गड्ढे की जमीन से 26 घर हटाए जाने का मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है। गुरुवार दोपहर करीब 6 भाजपा विधायक ने लखनऊ में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। विधायकों ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत की मांग उठाई है। मनकापुर विधायक रमापत शास्त्री ने मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा है। पत्र पर कटरा बाजार विधायक बावन सिंह, तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे, महनौन विधायक विनय कुमार द्विवेदी, गौरा विधायक प्रभात कुमार वर्मा और करनेलगंज विधायक अजय कुमार सिंह ने भी हस्ताक्षर किया है।
2: सुभागपुर विद्युत उपकेंद्र पर ग्रामीणों ने जड़ा ताला। कई दिन से बिजली संकट से नाराज लोगों ने की नारेबाजी, तत्काल आपूर्ति बहाल कराने की मांग। घर में पानी नहीं, बच्चों की पढ़ाई ठप और मरीजों की देखभाल तक हो रही है मुश्किल। कई दिन से बिजली संकट झेल रहे इंद्रापुर समेत आसपास के गांवों के लोगों का सब्र टूट गया था। ग्रामीणों ने सुभागपुर विद्युत उपकेंद्र का घेराव कर नारेबाजी की। देर शाम तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा तो ग्रामीणों ने उपकेंद्र के गेट पर बाहर से ताला जड़ दिया। उन्होंने क्षेत्रीय जेई को हटाने और तत्काल आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे राहुल शुक्ला, राजा शुक्ला, गिरीश और राम स्वरूप समेत कई ग्रामीण उपकेंद्र पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि कई दिन से बिजली आपूर्ति बाधित है। नलकूप और मोटर बंद होने से पीने और घरेलू जरूरत के पानी के लिए भी भटकना पड़ रहा है। जरूरी काम के लिए लोग 500 से 1000 रुपए तक में जनरेटर किराए पर लेने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली संकट की शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई है लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ। विद्युत कर्मियों के अनुसार आंधी बारिश के दौरान सुभागपुर फीडर क्षेत्र में बिजली के लगभग 250 से अधिक पोल टूट गए थे। लाइन दुरुस्त करने का काम जारी है। अधीक्षक अभियंता सुशील कुमार यादव ने बताया कि जेई और एसडीओ को समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए गए हैं।
1: जनपद गुना में गुरुवार को दोपहर करीब 1 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। पार्टी कार्यालय से निकले कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े। गोंडा उतरौला मार्ग पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। आगे जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक और धक्का मुक्की शुरू हुई। मार्च रोके जाने से नाराज गोंडा सदर की पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी रमा कश्यप सड़क पर ही लेट गयी और नारेबाजी करने लगी। मौके पर मौजूद महिला उप निरीक्षक अर्पिता यादव और अन्य महिला पुलिस कर्मचारी ने उन्हें सड़क से हटाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर बल प्रयोग और कुछ लोगों को हाथ पैर पकड़कर घसीटने का आरोप लगाया है। पुलिस की तरफ से इन आरोपों पर तत्काल कोई अलग पक्ष सामने नहीं आया है।
2: नवोदय में प्रवेश के लिए पंजीकरण 15 अक्टूबर तक। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मनकापुर में सत्र 2027-28 में कक्षा 11 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। प्राचार्य लालता प्रसाद शर्मा ने बताया कि पात्र विद्यार्थी cbseitms.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश संबंधी विवरणिका और दिशा निर्देश भी पोर्टल पर उपलब्ध है। उन्होंने विद्यार्थियों और अभिभावकों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना पंजीकरण कराने की अपील की है।
1: जनपद गोंडा के कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद करण भूषण सिंह के परिवार के लिए खेल जगत से आज दोपहर 12 बजे एक बेहद गौरवशाली खबर सामने आई है। नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 11वें इंडिया ओपन कंपटीशन में सांसद की बेटी और बेटे और भांजे ने निशानेबाजी में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। प्रतियोगिता की ट्रैप शूटिंग सब यूथ श्रेणी में सांसद करण भूषण सिंह की बेटी कामाक्षी सिंह और बेटा असमर्थ भूषण सिंह और भांजे अर्थव सिंह ने सटीक निशाने लगाते हुए शानदार प्रदर्शन किया है और आगामी नेशनल कंपटीशन के लिए अपनी जगह पक्की कर लिया है।
2: गोंडा के LBS PG कॉलेज में टीकाकरण के लिए किया गया जागरूक। LBS डिग्री कॉलेज के ललिता शास्त्री सभागार में नियमित टीकाकरण अभियान विषय पर रोवर्स और रेंजर्स सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम हुआ। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में 0 डोज बच्चों तक टीकाकरण पहुंचाने और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने पर चर्चा हुई। डॉक्टर GM चिश्ती, डॉक्टर विनय डांगे, अनवर खान, तौसीफ अहमद, अंशु तिवारी, राजन यादव, आलोक शुक्ला, नितेश श्रीवास्तव और अरविंद कुमार कन्नौजिया ने जानकारी दी।
1: जनपद में 3 दिवसीय सरल मेले का उद्घाटन सीडीओ ने फीता काट कर किया शुभारंभ। बता दें कि गोंडा के गांधी पार्क टाउन हॉल में 3 दिवसीय जनपद स्तरीय सरस मेले का आयोजन किया गया है। इसमें स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए स्वदेशी और हाथ से बने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री हो रही है। यह मेला 8 अक्टूबर 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर तक चलेगा। मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ दयानंद प्रसाद ने फीता काट कर मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि 16 विकास खंड से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपने हाथ से बने उत्पादों के स्टॉल लगाए हैं। सीडीओ दयानंद प्रसाद ने शहर के लोगों से अपील किया है कि वे यहां आकर उत्पादों को देखें और खरीदें। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं।
2: कोलकाता के कारीगर गोंडा में गढ़ रहे दुर्गा माँ की प्रतिमाएं। नवरात्र शुरू होने में बस चंद दिन ही बाकी हैं। इसके साथ ही साथ शहर में स्टेशन रोड पर माँ दुर्गा की पूजा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शहर के स्टेशन रोड स्थित माँ दुर्गा आदिशक्ति मंदिर के मैदान में इन दिनों माँ दुर्गा की मूर्तियां तैयार करने का काम जोरों पर है। मंदिर परिसर में जगह जगह मूर्तियां नजर आ रही हैं और कारीगर दिन रात इन्हें अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। कोलकाता के दर्जनों मूर्ति कलाकार प्रत्येक वर्ष नगर में आकर मूर्तियां बनाकर बेचते हैं। शहर के स्टेशन रोड स्थित माँ दुर्गा आदिशक्ति मंदिर के पीछे मूर्तिकार राजीव दत्त, दीप कुमार, हरिपाल, दीनू बंधु बैरागी प्रत्येक वर्ष नवरात्र से लगभग 4 महीने पहले ही आकर निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं। कलाकार ने बताया कि माँ दुर्गा की मूर्ति का चेहरा बनाने के लिए कोलकाता से मिट्टी मंगवाई जाती है। पर्यावरण का ख्याल रखते हुए मिट्टी, घास, बांस व जूट के बोरों से इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही हैं। कलाकारों ने बताया कि मूर्तियां 10,000 से लेकर 30,000 रुपए तक में तैयार की जा रही हैं। वहीं छोटी मूर्तियां भी बाजार के लिए तैयार की जा रही हैं। दुर्गा पूजा के लिए बनने वाली बड़ी मूर्तियों में केश, नथ, चूड़ी, टीका और मुकुट सहित अन्य सभी आभूषण कोलकाता से ही मंगवाए जाते हैं।
1: स्कूलों के ऑनलाइन काम में लापरवाही पर प्रधानाचार्य को नोटिस। बता दें कि गोंडा में माध्यमिक विद्यालय में ऑनलाइन काम में लापरवाही पर DIOS डॉक्टर रामचंद ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने 4 बजे राजकीय सहायता प्राप्त और वित्त विहीन हाई स्कूल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी किया है। लंबित ऑनलाइन काम तत्काल 100% पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। DIOS ने जनपद की रैंकिंग 75वें नंबर पर होने पर नाराजगी जताई है। DIOS ने कहा कि विभागीय योजनाओं का काम ऑनलाइन पूरा किया जाना है। विद्यालयों की लापरवाही के कारण जनपद की रैंकिंग खराब हो रही है। इससे उच्चाधिकारी और विभागीय निर्देशों की अवहेलना माना गया है। आदेश में कहा गया है कि सहायता प्राप्त विद्यालय में काम अधूरा मिलने पर संबंधित प्रधानाचार्य का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया जाएगा।
2: गोंडा के 13 वेटलैंड को मिलेगी पहचान, सवरेगा परिवेश। जिले के 13 आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड को संरक्षण और विकास के लिए चिन्हित किया गया है। भारत सरकार के आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 के तहत चयनित इन वेटलैंड का कुल क्षेत्रफल 287.98 हेक्टेयर है। पहले चरण में इनकी भूमि का चिन्हांकन कराया जाएगा। इसके बाद संरक्षण और विकास की कार्य योजना तैयार होगी। DM प्रियंका निरंजन ने बताया कि वेटलैंड के आसपास के प्राकृतिक परिवेश को बेहतर बनाने पर भी जोर रहेगा। यहाँ प्रवासी पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की कोशिश रहेगी। वहीं संभावनाओं के अनुसार पक्षी दर्शन और प्राकृतिक भ्रमण जैसी पर्यटन सुविधाएं भी विकसित की जा सकती हैं। DFO अनुराग प्रियदर्शी ने बताया कि वेटलैंड को नियमावली के अनुरूप पहचान दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए संबंधित स्तर पर पत्राचार किया जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बनी परिवार के लिए आर्थिक संबल। बता दें कि कलेक्ट्रेट जनता दर्शन में जिलाधिकारी ने लाभार्थी पूनम तिवारी को सौंपा 2 लाख रुपए का चेक। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति मृत्यु के उपरांत उसके आश्रित को बीमा लाभ प्रदान किया गया है। कलेक्ट्रेट में आयोजित जनता दर्शन के दौरान जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन तथा अग्रणी जिला प्रबंधक LDM श्री विनोद तिवारी ने स्वर्गीय ब्रजेश किशोर तिवारी निवासी वादीपुर इतिया थोक की पत्नी श्रीमती पूनम तिवारी को 2 लाख रुपए की बीमा धनराशि का चेक प्रदान किया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य सामान्य परिवार को एक प्रीमियम पर जीवन बीमा का सुरक्षा कवच उपलब्ध कराना है। योजना के माध्यम से बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में उसके नामित लाभार्थी को निर्धारित बीमा राशि प्रदान की जाती है, जिससे परिवार को विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक सहायता मिल सके। इंडियन बैंक शाखा सदाशिव इतियाथोक द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए स्वर्गीय ब्रजेश किशोर तिवारी के बीमा दावे का निस्तारण किया गया और उनकी पत्नी श्रीमती पूनम तिवारी को 2,00,000 रुपए की बीमा राशि का चेक प्रदान किया गया।
2: टेलीग्राम पर निवेश और नौकरी के नाम पर साइबर ठगी से सावधान। साइबर जागरूकता माह के तहत पुलिस ने बुधवार को टेलीग्राम के जरिए होने वाली साइबर ठगी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया। जिले के सभी 18 थानों में अभियान चलाकर पुलिस ने फर्जी निवेश, नौकरी, क्रिप्टो और कस्टमर केयर के नाम पर होने वाली ठगी से सावधान रहने की अपील की। SP अभिषेक झा ने लोगों को अनजान व्यक्ति या ग्रुप पर तत्काल भरोसा नहीं करने या असामान्य मुनाफे के झांसे से बचने और अनजान AP के फाइल व संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने की सलाह दी। OTP, UPI पिन, पासवर्ड और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करने और टेलीग्राम पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन सक्रिय रखने को कहा गया है। संदिग्ध अकाउंट या ग्रुप को ब्लॉक और रिपोर्ट करने की भी अपील की गई है। बताया गया कि साइबर ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी 1930 पर सूचना दें, ताकि ठगी की रकम को होल्ड कराने में मदद मिल सके।
1: प्रदेश में 28,000 शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापसी का इंतजार। सिर्फ 5 जनपद में मात्र 2,000 शिक्षा मित्रों को ही इसका लाभ मिल सका। आरोप है कि जनवरी 2025 में शासना आदेश होने के बावजूद जनपद में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। दरअसल शिक्षा मित्र को शिक्षक बनाया गया था। वर्ष 2017 में इनका समायोजन रद्द कर इन्हें दोबारा शिक्षा मित्र बनाया गया। जून 2018 में शिक्षा मित्रों की मूल विद्यालय वापसी की गई, मगर तमाम शिक्षा मित्र छूट गए। इसके बाद 7 साल तक संघर्ष किया और जनवरी 2025 में शासना आदेश जारी कर इन्हें अपने मूल विद्यालय भेजने के आदेश दिए गए या अपने निवास स्थान की जिन ग्राम पंचायतों में शिक्षा मित्र पद पर रखे गए थे वहीं इन्हें वापस भेजा जाना है। सबसे अधिक कठिनाई वह महिलाओं शिक्षा मित्र उठा रही हैं, जिन्हें शादी के बाद दूसरे जनपद में जाना पड़ा। अब वह अपने मायके वाले जनपद में लंबी दूरी नाप कर पढ़ाने आती हैं या उन्हें मायके में ही रहना पड़ रहा है।
2: वन रक्षक भर्ती 2023 मेडिकल परीक्षा का परिणाम जारी। प्रदेश में वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक के 709 पदों पर भर्ती की 2023 से चल रही प्रक्रिया फिर से तेज हुई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शनिवार को इसके लिए चिकित्सा परीक्षा में सफल व अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए 2,802 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट करते हुए उनकी सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। जानकारी के मुताबिक आयोग के सचिव हरिकेश चौरसिया ने बताया कि अभ्यर्थी अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं, साथ ही इसके लिए आगे की सूचना भी आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। बता दें कि 2023 से चल रही भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर अभ्यर्थी परेशान थे और उन्होंने कई बार इसकी प्रक्रिया पूरी करने के लिए आयोग कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया था।
1: विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिया है। खराब मौसम में क्षतिग्रस्त पोल एवं विद्युत लाइनों को प्राथमिकता पर ठीक कराकर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। बता दें कि आज की बैठक में जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनपद में विद्युत आपूर्ति की स्थिति, खराब मौसम के कारण क्षतिग्रस्त हुए विद्युत पोल एवं विद्युत लाइनों तथा ग्रामीण एवं नागरिक क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था को लेकर विस्तार से समीक्षा की। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर सुचारू रूप से सही किया जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। संबंधित अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण एवं निगरानी करते हुए विद्युत आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कर्मचारियों एवं संसाधनों का उपयोग करते हुए मरम्मत कार्य में तेजी लाएं, ताकि आमजन को विद्युत आपूर्ति के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आज की हलचल में बस इतना ही। आप सुनते रहें रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं IK श्रीवास्तव।

0: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
4: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 981 976, 9260981 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अच्छा बच्चों, एक बात बताओ।
1: जी सर।
0: अगर कोई स्कूल में बम रख जाए तो क्या करोगे?
1: तो क्या करना है, एक दो घंटे देखेंगे, अगर कोई ले जाता है तो ठीक है, वरना फिर अच्छे से लाके स्टाफ रूम में रख देंगे। और क्या,

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम है आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: हर कलाकार का सफर तन्हा शुरू होता है, लेकिन साथ होती है आपकी सद्भावना और आशीर्वाद की मंगल ध्वनि। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9216 9876, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं?
2: तो बिल्कुल, अगर आप गोंडा से हैं तो आरजे बीना के साथ लाइव हो जाइए, क्योंकि आपके साथ मैं हूँ, आपके वाले शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला में। भाई क्या हाल है, कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है, जरा सा अपना हाल बताइए। और जैसे कि आपको पता है कि मौसम परिवर्तन कर रहा है, वैसे ही लाइफ में उतार चढ़ाव भी परिवर्तनशील होते हैं। कोई भी ऐसा मतलब सिचुएशन नहीं है जो लॉन्ग लास्टिंग हो, या मतलब आपको एक जगह स्टक कर दे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शुभ संध्या गोंडा वालों एंड गोंडा के बाहर वालों। आज बॉलीवुड या टॉक में आप सभी का स्वागत है। और कल एक बेहतरीन सितारे को खोने के बाद पूरा देश शोक में था। और आप सभी को पता है कि अगर नाना पाटेकर की बात करें तो उनकी बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में हमने देखी हैं। और अगर मैं अपकमिंग मूवीज़ की बात करूं तो अपकमिंग मूवीज़ के बारे में भी बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी फिल्म है जिसे वो देने वाले थे। तो चलिए कुछ फिल्मों के बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दूं कि अभी 4 दिसंबर को जो मूवी रिलीज होने वाली है 2026 में, जिसमें आपको श्रद्धा कपूर दिखेंगी, लाओनी परफॉर्मर विठा भाई नारायण गोइंकर के तौर पर, एक तरह से ये बायोपिक है। वहीं साथ में नाना पाटेकर, रणदीप हुडा और अनंत जोशी भी इस फिल्म में दिखने वाले हैं। ईठा फिल्म जो कि बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है, वो आपको दिसंबर में देखने को मिलेगी, लेकिन यादें आपके मन में नाना पाटेकर की होंगी। साथ ही एक और फिल्म के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि मैडॉक फिल्म, हॉरर कॉमेडी डायरेक्टेड फिल्म है, जिसका नाम है शक्तिशालिनी। जैसे शक्तिशाली होता है वैसे शक्तिशालिनी, जिसको डायरेक्ट किया है आदित्य सरपोदर ने, और को स्टारिंग है इसमें अनित पड्डा की, विशाल जीठा की, जहां पे नाना पाटेकर तांत्रिक का रोल करने वाले थे। ये रिलीज 2026 में होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों से इस रिलीज को मार्च 2027 में कर दिया गया है। एक और जो कि एक अलग लेवल की कहानी है फिल्म, द कन्फेशन ऑफ मैरी, एक क्राइम ड्रामा है जिसे आनंद नारायण महादेवन ने 1966 में एक हुए मर्डर केस पर डिजाइन किया है। इसमें नाना पाटेकर फादर का रोल प्ले करने वाले थे एज अ बैंडिट। ऐसी अधूरी कहानियां उम्मीद करेंगे कि पूरी होके हमारे सामने आए। अब मैं नई फिल्मों की बात करना चाहूंगी कि अभी जो आने वाली हैं उनके बारे में। आप सभी ने लेटेस्ट बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा नाना पाटेकर को, और उनकी जो रोल है उसको फील किया होगा। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि वो किसी भी रोल को जीते थे, चाहे वो आर्मी का रोल करना हो तो उसकी ट्रेनिंग लेनी हो, या किसी फिल्म में कॉमेडी करनी हो तो उसकी भी बाकायदा ट्रेनिंग लेनी हो, किसी भी रोल को उन्होंने ऐसे ही नहीं किया। तो एक सच्चे कलाकार की ये बात होती है। तो चलिए आगे भी फिल्मों की बात होंगी और कौन कौन आ चुका है। गुड इवनिंग आशु, गुड इवनिंग गीता, गुड इवनिंग महेंद्र जो कि काफी देर पहले मुझे दिख रहे हैं, और सभी का स्वागत है। बाकी लोग जहां जहां से सुन रहे हो फटाफट से लाइव हो जाओ, और 7 बजे से आप लोग के सवालों के साथ आपके फरमाइश के गाने सुनने को मिलेंगे। लेकिन सवालों पे मैं एक चीज और कहूंगी कि मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करने वाली हूँ जो कि आपको अगले हफ्ते सुनने को मिलेगा। और कल के लिए भी मैं बता दूं, कल भाई है सैटरडे, और सैटरडे को कल बात होने वाली एक खास टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि प्यार या फिर दोस्ती में किस पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है और क्यों किया जा सकता है। एग्जाम्पल के साथ आपको कल बताना होगा। सवाल मैं करूंगी, एक्सप्लेनेशन आपके डॉक्टर लव देंगे, एंड बात वही जो पिछले हफ्ते शुरू हुई थी कि कौन भला, दोस्त या प्यार भला। फिलहाल अब मुझे पता है आप लोग के पास बड़े सारे एक्सप्लेनेशन होगा, कोई प्यार को कहेगा, कोई दोस्ती को कहेगा। मैं तो भाई दोनों की बात करूंगी। भाई प्यार भी अपनी जगह, मतलब प्यार ऐसा होता है ना कि प्यार में इंसान किसी के लिए जान भी दे सकता है, ठीक है ना। प्यार को आप ऐसे नहीं, मतलब लाइटली नहीं दे सकते। प्यार में आप किसी के लिए जान दे सकते हैं, एंड किसी के लिए लोग जान ले भी लेते हैं। तो ये वाला सीन तो थोड़ा खतरनाक है, पर हाँ किसी की जान लेने या देने का जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। हम सभी को बस ये सोचना चाहिए कि हम कैसे प्यार को मतलब बदनाम ना होने दें, आई मस्ट से। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं दोस्ती इज बेटर देन प्यार एंड ऑल, बट मैं तो ये कहूंगी दोनों की अपनी अपनी जगह। बाकी आप लोग के पास उदाहरण होंगे और आप संदर्भ से ही व्याख्या करेंगे व्हाट इज बेटर, मतलब आप दोस्ती में रहना प्रेफर करेंगे या प्यार में रहना प्रेफर करेंगे। कई बार प्यार आपको प्रोटेक्टिव भी फील कराता है, प्यार आपको पैम्पर करता है। पहले कल के टॉपिक की बात आज नहीं करूंगी, आज जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात करते हैं। और देखिए आज जो कहते हैं ना कि श्राद्ध चल रहा था, जो कि पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है, 15 दिन तक अपने पितरों को हम लोग याद करते हैं। अलग अलग तिथि अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के लिए बनी हुई है, कुछ मैरिड वुमेन के लिए, कुछ माताओं के लिए, अलग अलग तिथि अलग अलग हमारे पितृ को समर्पित है। और बड़ा अलग सा अटूट सा नाता है, साइंटिफिक रीजन भी है इसका। छत पे हम लोग कौए को खाना देते हैं, ऐसा माना जाता है कि कौए ने अगर खाना खा लिया तो आपके पितरों को भोजन मिल गया। साइंटिफिक रीजन ये है भाई, कौओं को हमें बचाना है किसी भी तरह से, क्योंकि कौआ एक ऐसा जीव है जो पीपल के सीड्स को रिस्टोर करता है। मतलब पीपल का पेड़ पे अगर पीपल का बीज उगेगा, अगर फल में बीज उगेगा, तो वो डायरेक्ट उग नहीं सकता, इट कांट ग्रो। उसको अपना एक चक्र पूरा करना होता है जो कि कौए की इंटेस्टीन में ही पूरा होता है। दैट इज वाई कौओ को बचाना जरूरी है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक पेड़ पीपल का है जो रात दिन ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन देने वाले ऐसे महत्वपूर्ण पेड़ की कमी आ जाएगी अगर कौए खत्म हो जाएंगे। तो कौओ को भी रिस्टोर करना है। हमारे यहाँ हर जो कहते हैं ना काम होता है रिचुअल, मतलब हर धर्म में हर रिचुअल के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइंस होता है ना। तो आप लोग बताइए, आप लोग के यहाँ भी ये बात की मान्यता है या नहीं, या फिर सिर्फ आप मतलब पितृपक्ष को सेलिब्रेट करते हैं अपने पितरों को याद करने के लिए। और देखिए बिल्कुल सही बात है, पितरों को तो मतलब एक देखिए मुझे ये चीज़ बहुत सही लगती है ना कि हम किसी भी व्यक्तित्व को अपने जीवन में, जो है जो नहीं है जो आने वाला है, उन सब के लिए हमारे पास एक एक फेस्टिवल है उसको समर्पित, एंड दैट्स मेक्स आर इंडिया ब्यूटीफुल। हर धर्म में अलग अलग तरह से अलग अलग चीज को सेलिब्रेट किया जाता है, एंड ये उस संस्कृति की महानता होती है। क्या बोलते हैं, देखिए थोड़ी थोड़ी सी ठंड भी शुरू हो गई है और सुबह शाम की ठंड फील होने लगी है। थोड़ा सा ठंडा पानी वानी पीना आप लोग बंद कर दीजिए, मतलब गर्म नहीं लेकिन हाँ थोड़ा नॉर्मल पानी पीना शुरू करिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। थोड़ा इम्यूनिटी बनाइए, प्रकृति भी अपने आप को इम्यून सिस्टम के तौर पे मजबूत करना शुरू कर रही है धीरे धीरे। हाँ हम लोग भी मतलब इस चीज़ को करेंगे। वैसे आप लोग बताइए आज आप लोगों ने क्या क्या किया। भाई वीकेंड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, मूवीज अपकमिंग मूवीज के बारे में जानने का मतलब बिल्कुल मन करता है कि कौन कौन सी मूवी आने वाली है। वैसे आपको बता दूँ आज है वर्ल्ड पोस्ट डे। आप लोग उसे जानना चाहते हो कि आपने कभी किसी को पोस्ट किया है, मतलब चिट्ठी की बात कर रही हूँ मैं। जी हाँ, अगर आपने भी कभी किसी को चिट्ठी भेजी है तो जरा मुझे ज़रूर बताएं आपने किसको चिट्ठी भेजी है और क्या लिख के भेजा है। मैं खास तौर पे प्रेम पत्र की बात कर रही हूँ। ऐसे चिट्ठी से हमारा बड़ा पुराना सा नाता है, मेरे बचपन में, मतलब हम लोग लास्ट जनरेशन होंगे जिसने डाक से चिट्ठियाँ आई होंगी घर पे, पढ़ी होंगी और उन चिट्ठियों के वो मतलब क्या कहते हैं ना, चश्मदीद बने होंगे। मैं तो बनी हूँ भैया, बहुत छोटी थी मैं, मतलब बड़ी हो गई तो फिर आना, मतलब फ़ोन जब से शुरू हो गया तो चिट्ठी विट्टी का सिस्टम ख़त्म हो गया था। बहुत छोटी थी, मुझे याद है कि मामा के लिए मम्मी चिट्ठी लिखवाती थी, मतलब मम्मी की राइटिंग ऐसा कहती थी वो नहीं अच्छी है, तो चिट्ठी लिखवाती थी सिस्टर से मेरी, जो कि मुझसे मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी हिंदी लिखना अच्छे से आता था, 10th class में 8th class में थी, तो चिट्ठी लिखती थी और साथ में सारी बातें, मतलब भैया कैसे हो आप, हम बिल्कुल ठीक हैं, यहाँ पे यहाँ सब कुशल मंगल है और उम्मीद करती हूँ वहाँ भी सब कुशलता से होंगे, ये राखी भेज रही हूँ, समय पे पहुँच जाएगी, उससे मतलब अपनी दूसरी बहन से कह के कि उससे बंधवा लेना, अपना ध्यान रखना, अम्मा कैसी हैं, ये सारी बातें होती थी। एंड उस चिट्ठी को लिखते समय बड़ी सारी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती थी, और क्या लिखना है, और क्या लिखना, और क्या पूछना है, और क्या बताना है। दिवाली पर हमने कार खरीदी है, मतलब हर छोटी बड़ी खुशी को चिट्ठी के माध्यम से शेयर किया जाता था। तो आज वर्ल्ड पोस्ट डे है, तो एक पोस्ट, वैसे पोस्ट आजकल थोड़ा बदल चुका है, हमारा पोस्ट थोड़ा डिजिटल हो गया है, लेकिन यहाँ पे उसी पोस्ट की बात करी जा रही है जो सालों पहले हमें एक दूसरे से जोड़ता था, एम आई राइट? तो चिट्ठी पे कुछ लिखना तो बनता है बॉस, गीता जी, आशु जी। एंड यस, अगर आपको फ़ोन करके भी कुछ बताना होगा तो 7 बजे के बाद आप कॉल करके अपनी कोई मेमोरी शेयर कर सकते हैं चिट्ठी से जुड़ी। उससे पहले आने वाली फिल्मों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सुनिए चिट्ठी पे ये प्यारा सा सॉन्ग।
3: इतनी परेशान क्यों, खूबसूरत लग रही हो।
4: अब्बा दुबई जा रहे हैं।
3: वो तो आते रहेंगे मिलने, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है।
4: पर हम और अम्मी भी साथ जा रहे हैं। अब्बा को लगता है कि हमारा मुस्तकबिल वही है, पर हम आपको हमारे पति से चिट्ठी लिखते रहेंगे, आप भी लिखना।

0: सुनो तुम कैसी हो, क्या आज भी तुम चांद देख के रात को ही रोती हो, क्या आज भी तुम शाम देख डायरी में शायरी पे शायरी के दायरे पे रोती हो।
1: आयका मी शान, तुम कैसे हो सागर?

0: तूने दबाली होगी।
1: क्या तू भी होटो से लगाता मेरे खत, बेहद बेबस क्या तू जैसे मेरे लव्स, बेखौफ की नज़्म लेट जाते मेरे पन्नों पर, याद करके जब तेरी सांसें बैठे लबों पर।

0: बोलने के लिए काफी सारी बातें रह गई, तू जो चली गई तो बस तेरी यादें रह गई। इन पहाड़ों में खूबसूरती रही कहाँ, जितनी भी थी वो सारी तेरी आंखें ले गई।
1: सितारे कहते कि तू चांद से ना

0: उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरे अल्फाज पसंद आए होंगे।
1: उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मेरे एहसास समझ आए होंगे।
0: तो चलो इस खत को यहीं खत्म करते हैं।
1: तुम्हें अगला खत भी तो लिखना है।

वापस से आप सभी का स्वागत है और चिट्ठी पे ये दोनों गाने बड़े ही मतलब सटीक से थे। एंड यस, आज पोस्टल वीक है तो बात करना तो बनता ही है। हाँ, नेटवर्क्स की बात करें तो दुनिया भर में नेटवर्क फैलाने का काम भी ये पोस्टल वीक रिप्रेजेंट करता है। एंड यस, चलिए आगे बात करते हैं अब आने वाली फिल्मों के बारे में, क्योंकि यार आपके मन में तो यही होगा ना कि आज कौन सी फिल्म के बारे में आज जुबीना बताने वाली है। तो चलिए आपको बताती हूँ आज की लेटेस्ट मूवी जो आपके लिए आ चुकी है, आपके देखने लायक बन चुकी है। एंड यस, नो डाउट आपको इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देख लेना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं।

0: तो जैसा कि आपको मैं फिल्मों के बारे में बता रही थी, तो आज की फिल्म सबसे पहले तो आपको बता दिए, लास्ट वीक जो मूवी आई थी दृश्यम ने सभी का मतलब दिल जो है वो मोह लिया है। एंड यस, गोंडा में ये तीनों फिल्में लगी हुई हैं। तीनों में एक है आपकी दृश्यम, दूसरी है डियर हस्बैंड और हनुमान अंश। तो इन तीनों फिल्मों को अगर आप देखना चाहते हैं तो गोंडा में जाके आप देख सकते हैं। और सबसे पहले तो आज की फिल्मों की जो रिलीजिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज की जो लिस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि रिपोर्टिंग लाइव आज रिलीज़ हुई है परिणीति चोपड़ा की, देवन भोजानी, शाश्वता चटर्जी, और ये फिल्म क्राइम बेस्ड है। और जब कोई क्राइम वाली फिल्म रिलीज़ होती है ना, तो हमारे दिमाग में सीधे क्राइम का कीटाणु दौड़ने लगता है और सोचने लगता है भाई क्या है। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं प्रेम कीटाणु देखूंगी, फिर उसके बारे में बताऊंगी फिल्म कैसी है, और मूवी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि क्या क्या है फिल्म में। तो आज ये परिणीति चोपड़ा की जो क्राइम थ्रिलर वाली मूवी आ चुकी है, जिसके लिए मतलब मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार करती, क्योंकि परिणीति को बहुत दिनों से मतलब उस लुक में नहीं देखा था जैसे उसको इश्क ज़्यादे टाइप फिल्मों में देखा था। तो रिपोर्टिंग लाइव फिल्म के बारे में बताने के लिए मैं सबसे पहले बता दूँ, ये क्राइम और थ्रिलर बेस्ड मूवी है, बिल्कुल कॉमेडी आपको नहीं दिखने वाली है। तो सबसे पहले आपको इस फिल्म को देखने के लिए अपने माइंड मेकअप को एकदम सेट कर लेना चाहिए। लेकिन देखिए, मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, मैं फिल्म को लेके नहीं दे रही हूँ, मैं क्राइम को लेके दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा क्राइम रिलेटेड चीज़ें आप अगर देखना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा मतलब बचें, बहुत ज़्यादा देखने से थोड़ा सा माइंड हमारा ना हर चीज़ को लेके नेगेटिव सोचने लगता है, तो ये एक गलत चीज़ है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोशिश करें कि ऐसी मूवीज़ को बस ऐसे देखें चिल मूड में, और चिल मूड में उसको गो एंड गॉन कर दें, और अकेले तो बिल्कुल भी ना देखें, हैं। तो ये छोटा सा मतलब मेरे लिए या आपके लिए छोटा सा डिस्क्लेमर टाइप का मतलब था। तो चलिए गाना सुनते हैं आपके लिए, एक प्यारा सा जिसने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। तो मूवी आई है तो ऑब्वियसली गाने भी सुनने का मूड होगा आप लोग का, कि भाई किसी नई फिल्म से जुड़ा कोई गाना अगर सुनने को मिल जाए। पहले आपको बता दूं कि इस फिल्म में कोई ऐसा कोई गाना नहीं है जिसको सुन के आपको मतलब मज़ा आ जाए, लेकिन हाँ मैं आपको इश्क कीटाणु के गाने ज़रूर सुना दूंगी, क्योंकि इस फिल्म के गाने सुने मतलब मुझे जहाँ तक सुनने में बहुत अच्छे लगे हैं, और आपने भी सुने होंगे तो आपको भी पसंद आए होंगे। तो चलिए इश्क कीटाणु के गाने आपको सुनाती हूँ, एंड वेरी मतलब खुशी से मैं बताऊँ ये चीज़ कि इसमें अच्छे अच्छे सिंगर्स के आपको गाने मिल जाएंगे। सबसे पहले तो बता दूं कि आपको इसमें मधुर की आवाज़ मिल जाएगी, अरमान मलिक की आवाज़ मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो कहो तो मैं अरमान का गाना प्ले करूंगी, उसके बाद एक और प्यारा सा गाना, इसको सुन के बताइए कैसा लग रहा है आपको।
1: तो हर जगह प्रकट हो रही है, श्राप है या मैनिफेस्टेशन चल रहा है।

अब ये तो आपकी पसंदीदा वाली आवाज है, मैंने कहा था ना इसमें आपको एक अच्छे अच्छे मतलब कलाकारों की आवाज मिल जाएगी, क्या बोलते हैं? तो भाई आज से मैं आपको अनाउंस कर रही हूँ कि हम लोग कुछ ही दिनों में आप लोग के जो कमेंट्स हैं मतलब मेरे शो में, मैं फेसबुक से भी लूँगी, मतलब फेसबुक पे एक पोस्ट मिलेगा आपको जिसमें आप लोग के जो कमेंट्स होंगे उससे जुड़ी बातें होंगी, ठीक है? और जो भी अपने मतलब जैसे फ्राइडे को मैं थोड़ी बहुत क्वेश्चन से फरमाइश लेती हूँ और थर्सडे को भोजपुरी फरमाइश लेती हूँ, तो वो फेसबुक पे भी अपनी फरमाइश करेंगे तो वो पूरी हो पाएगी, लेकिन पोस्ट अगर आपके पास पहुँचेगी पर्टिकुलर डे की तो ही, एम आई राइट? यस। इश्क में हारा हारा, ये बताइए कौन कौन इश्क में हारा है? मैं तो भाई दिल नहीं हारी हूँ, लेकिन हाँ आप लोगों के प्यार में हार चुकी हूँ। कहते ना दिल हारा, जी हाँ वही वाला।

इतने खूबसूरत गाने अगर हों तो ये बताइए कोई फिल्म अच्छी कैसे नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि इश्क कीटाणु के बारे में थोड़ा आप लोग को बताना ही पड़ेगा। और अगर मन करता है ना कि ऐसी मूवीज के बारे में थोड़ा सा रिव्यू करूं जो एक्चुअली में देख के आपका मूड थोड़ा सा रिफ्रेश कर दें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जिनको देखने के बाद थोड़ा हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। और स्पेशली मैं क्राइम बेस्ड फिल्मों की बात करूं तो चलिए करते हैं बात। यार बड़ा अच्छा गाना मुझे ये लगा, अगर आप लोग को भी अच्छा लगा ना तो मुझे जल्दी से बताना। और सीरियसली ये गाना सच में बहुत अच्छा, मतलब माइंड ब्लोइंग टाइप का। मैं इस गाने को 10/10 दूंगी क्योंकि बहुत दिन बाद इतने हार्ट टचिंग टाइप के गाने बने। तो चलिए करते हैं इस कहानी को डिस्क्लोज, क्या है आखिर इस कहानी में जो लोगों ने इसका नाम इश्क कीटाणु रख दिया। तो इस इश्क के कीटाणु को आपके पास भी पहुंचाती हूँ जाके धीरे से। इसके इश्क कीटाणु की खास बात यह है कि आपको मेरे मतलब आवाज़ से भी आपके दिल में पहुंच जाएगा और आप इश्क करना सीख जाएंगे। और अगर सच्ची यार ऐसा कुछ हो जाए ना, दुनिया में इश्क इश्क हो जाए, कोई बंदा मर्डर करने आ रहा उसके मन में इश्क का कीटाणु लग जाए, वो उसके अंदर फीलिंग्स ही चेंज हो जाए यार, मज़ा आ जाए। नहीं लेकिन यार ऐसा होता कहाँ है, सब फिल्मी दुनिया है, कोई बात नहीं। चलिए मन तो करता है कि टाइम मशीन बनाऊं, थोड़ी देर के लिए सब कुछ फ्रीज कर दूं, सारे बंदों का दिमाग जो है थोड़ा रिलैक्स कर जाए, लेकिन हो नहीं पाता। तो चलिए मैं बात करती हूँ मूवी के बारे में। कॉलेज में आप लोग भी पढ़े होंगे, आपको भी कभी ना कभी देखिए हो हार्मोन्स का मामला होता है। इसमें किसी बंदे की मतलब थॉट्स नहीं है कि भाई उसको तो वो पसंद थी, ये हार्मोन्स का मामला है। कुछ लोग अपने इंद्रियों पर बहुत कंट्रोल रखते हैं इसलिए हार्मोन्स उन पर हावी नहीं हो पाते हैं, पर ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। तो बस कहानी ऐसी ही है कि कॉलेज में आपका किसी पे दिल आ जाए और वहीं से कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन कभी प्यार पूरा होने से पहले कोई नया मोड़ आ जाता है और कहानी 4 साल बाद दुनिया में लौटती है। हाँ मैं बात करने जा रही हूँ अब प्रेम कीटाणु की। इसमें प्यार दोस्ती जिंदगी के बदलते रंगों में हल्के फुल्के अंदाज देखने को मिलेंगे। फिल्म आपको रिलेट करने के मौके कई देगी, कई बार लगेगा अरे यार ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था। और जिंदगी की मतलब थोड़ी बहुत कड़वी सच्चाई दिखाएगी, पूरी पूरी तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हाँ कुछ जगह आपको लगेगा यार ये बॉस ने सही लिखा है, कौन लिखा है इसका डायलॉग, किसने स्टोरी प्लॉट की है, तो आप ये कहेंगे। कहानी बनारस के इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू होती है। आप सोच रहे होंगे बनारस में कौन सा वाला इंजीनियरिंग कॉलेज, मुझको कैसे नहीं पता। तो हाँ बनारस के इंजीनियरिंग कॉलेज से कहानी शुरू होती है, हैं। और एडमिशन होता है विशाल ठाकुर का, एक नया चेहरा जो अगेन सबको अपने दिल में बसाने वाला है, जिनका नाम है वीर पहाड़िया। दूसरी तरफ है सुहानी, आफिया सैयद, पहली बार आमने सामने आते हैं, पहली मुलाकात में नोकझोंक, फिर दोनों एक दूसरे को श्राप दे बैठते हैं कि 4 साल तक विशाल की कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी और सुहानी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। मतलब ऐसा कोई अगर बोल दे तो दूसरा इंसान सोचेगा भाई ऐसा आश्राप कौन किसको देता है। इसके बाद दोनों अलग अलग कॉलेज चले जाते हैं। 4 साल की कॉलेज लाइफ में विशाल की ज़िंदगी में प्यार की दस्तक तो होती है लेकिन बात मुकम्मल नहीं हो पाती। उधर सुहानी अपनी पढ़ाई और करियर की तरफ बढ़ती है। 4 साल बाद दोनों की ज़िंदगी कॉलेज से निकल कर नौकरी की दुनिया में पहुँच जाती है। सुहानी को अच्छी नौकरी मिल जाती है लेकिन विशाल को करियर और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें जद्दोजहद सहनी पड़ती है। यार अगर देखो बहुत ज़्यादा इश्क के चक्कर में पड़ जाओ ना तो करियर की लग जाती है, दैट्स द ब्लडी ट्रूथ। बहुत सारे कम मतलब केसेस ऐसे सुनने को मिले होंगे आपको कि मैं कह रही हूँ बहुत सारे कम बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मतलब लोग प्यार कर बैठते हैं और उनका करियर फ्लॉप हो जाता है। बहुत कम ऐसे केस होते हैं जहाँ पे प्यार के साथ ज़िंदगी की झिंगा लाला हो जाती है, ठीक है ना। बहुत माइंड मेकअप वाले लोग होते हैं जिनकी इंद्रियां एकदम, मैंने कहा ना इंद्रियों का मामला है सारा, इंद्रियां आपके कंट्रोल में तभी बॉस आप मतलब प्यार के साथ और करियर बना सकते हो। नहीं प्यार और करियर में एक ही चीज़ मिलती है, या तो प्यार मिलता है या करियर। वैसे प्यार पहले करने के बाद अब करियर बनाने की सोचोगे ना प्यार मिलेगा ना करियर मिलेगा, पहले करियर पर फोकस करो फिर प्यार करो फिर प्यार भी मिलेगा करियर भी मिलेगा। अब थोड़ा कन्फ्यूज मत हो, आप लोग भावनाओं को समझ रहे हैं मुझे पता है। तो चलिए बात करते हैं फिल्म की, यार फिल्म में चलते हैं यार ज़िंदगी में क्या रखा है। 4 साल बाद दोनों निकल जाते हैं भाई, उसको तो भैया बढ़िया नौकरी मिल जाती क्योंकि उसने प्यार के लिए अप्लाई ही नहीं किया, उसने फॉर्म ही नहीं डाला, कोई फॉर्म आया भी होगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसको पढ़ाई करनी थी। लेकिन ये बॉस भैया लगे थे कि मुझको श्राप दिए कैसे कैसे, हम तो गर्लफ्रेंड बनाएगा बॉस।

लेकिन नहीं बन पाती है क्योंकि श्राप मिला होता है। फिर दोनों की मुलाकात होती है, पुरानी कहानी नए हालात में दोबारा खुलती है। आय हाय क्या बात है यार, ऐसा कोई कह दे पुरानी कहानी है लेकिन हालात नए हैं हमारे, कहानी तो बिल्कुल पुरानी ही की पुरानी है ऐसा कोई कहे, मज़ा आ जाए यार। ये लाइन बहुत बढ़िया है, ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हो। फिर आगे चलते हैं, दोनों प्यार में पड़ते हैं, वक्त के साथ बदले दो लोग जो हैं वो दूसरे की ज़िंदगी में फिर जगह बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्ती भी होती है उसी में, परिवार भी होता है, जिम्मेदारियां भी होती हैं, और उसके बीच में प्यार को फिर वापस पाना ये बड़ी चुनौती होती विशाल के लिए, क्योंकि विशाल ने तो अपने करियर की लगा ली थी ना। अब एक्टिंग की बात करूँ तो वीर पहाड़िया यानी कि विशाल का किरदार निभाने वाले एकदम नॉर्मल एक्टिंग कर रहे हैं। लड़का थोड़ा सा मतलब शायद सा आपको लगेगा कहीं कहीं, लेकिन मुझे ठीक ही लगा क्योंकि नया नया फेस है, बहुत फिल्में इनकी मैंने देखी नहीं तो बहुत मैं ये नहीं कहूँगी कि ठीक नहीं है, ठीक है, बढ़िया है, आप देख सकते हैं इस फिल्म को। अगर मैं कुछ कहना चाहूँ इस फिल्म को लेके या मैं अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहूँ तो मेरी भावनाएं यही हैं कि प्यार की मस्ती हो, दोस्तों की शरारत हो और ज़िंदगी में थोड़ी कड़वी मिठास हो तो प्यार सही है यार, लेकिन आपको अपने अंदर कंट्रोल रखना आना चाहिए। फाइनली मूवी अगर आप देखेंगे तो आपके पुराने दिन नए हो जाएंगे। मैंने क्या कहा कि कहानी पुरानी रहेगी, जज्बात नए होंगे, सिचुएशन नहीं होगी। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगी 10 में से 7 पॉइंट्स। आप वन टाइम देख सकते हो, सही है यार, मतलब मज़ा आएगा आपको और दोस्ती की भी फीलिंग आपको मिलेगी कि भाई यार दोस्ती बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, क्योंकि दोस्त भी बिछड़े उससे और बिछड़ने के बाद उसे कैसे अपनाते हैं ये आपको पता चलेगा। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, तुझसे बिछड़ के अगेन आप लोग के साथ, जैसे सुन चुके हैं ना, नहीं चलिए सुनते हैं हम लोग तेरा मेरा रिश्ता, क्योंकि हमारा और आपका रिश्ता मजबूत है। ठीक ठीक ठीक ठीक इमरान हाशमी की तरह जो अपने नाम कर चुके हैं कुछ जनरल्स को फिल्म के, कुछ जनरल्स ऐसे हैं जिसमें कोई और फिट हो ही नहीं सकता इमरान के अलावा, सो ही इज ऑलवेज बी आवारापन फर्स्ट फेस। तो चलिए आवारापन 2 से सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

चलिए एक कॉमन सा सवाल करते हैं आप लोगों से, आमिर खान ने अभी जल्दी किस लड़की से शादी की है, वो क्या करती है? हाँ सोच के बताना। मुझे पता है आप लोग गेस कर रहे होंगे। आमिर खान ने अभी जल्दी एक लड़की से शादी की है, आपको याद है, सुना है, तो बिल्कुल बताइए कि वो लड़की कौन है और क्या करती है।

उठो नहीं, उठो नहीं, उठो नहीं, लेटे रहो हा? जो भी हुआ लेकिन तुम यहां बिल्कुल सुरक्षित हो, लेटे रहो।

देख रही माँ, मेरे लोग उस लड़के को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेंगे। तेरे लिए बेहतर है कि तू खुद बता दे। तेरी यही खामोशी तेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। मैं तुझे उठाकर उसी जगह वापस भेज दूंगा जहां से खरीद कर लाया था एक दिन। तेरी सही जगह वही है, वहां आशिकों की कमी नहीं पड़ेगी तुझे। एक ढूंढेगी हजार मिलेंगे, और वो सब मिलके तेरा इतनी बार इस्तेमाल करेंगे कि दोबारा किसी और से इश्क करने के लायक नहीं रहेगी तू। आज से तू उसी दिन का इंतजार कर।

मैं अल्लाह से कह रही थी कि तुम्हारे अंदर ईमान जगाए, तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बनाए। चाहे तुम उसे जिस तरह जिस शक्ल में मानो, मगर मानो जरूर। मैं तो ये चाहती हूँ कि हम दोनों मरने के बाद भी मिले जन्नत में, और जन्नत में वही लोग मिलते हैं जो खुदा को मानते हैं।

तो भाई किसी ने आंसर दे दिया है लग रहा है, क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता पुराना। तो पुराने रिश्तों को नया करने के लिए ही तो हम लोग मिलते हैं यार। तो फिलहाल हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं और आंसर दिया है गौरी स्प्रेट, सैलॉन मैनेजर हैं। बिल्कुल सही होता है यार, मतलब आप लोग अपडेटेड रहते हो। मतलब वैसे मतलब हमारे आमिर खान जी ने 3 शायद शादी किए हैं, तो मुश्किल है सबका नाम याद रखना, तो इसलिए मैंने एक कठिन सवाल आप लोगों से पूछा, लेकिन आप लोगों ने आंसर दे दिया। इस बात के लिए तो भाई तालियां बजनी चाहिए, लेकिन चलिए तालियां तो ऐसे ही बजती रहेंगी, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, लेकिन गाने की फरमाइश तो करिए। गुड इवनिंग गीता जी, गुड इवनिंग धर्मेंद्र जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कौन कौन कहाँ से कहाँ से सुन रहा है भाई, आप लोग चैट रूम में अपनी प्रेजेंस लगा दिया करो, जिससे ना आप लोग के सवालों मतलब के जो आंसर आए ना, तो उनके मदद से आपके गाने प्ले हो सकें, ठीक है ना। तो चलिए कौन कौन कहाँ कहाँ से आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, जल्दी उठ जाइए, उठ के जाग जाइए, एंड यस लेट्स बिगिन द ब्यूटिफुल इवनिंग इन द हाई एनर्जी। तो मज़ा आया ना आप लोग को जान के कि मैं फेसबुक से भी आप लोग के कमेंट्स, जो लोग मतलब नहीं आ पाते हैं फेसबुक पे तो लाइव रहते हैं, पर उनके जो आंसर्स हैं या उनके क्वेश्चंस जो हैं उस पर हम बात कर सकते हैं ना। हाँ तो मैं आप लोग को बताऊंगी कैसे आप लोग को मैसेज करना है, किस चीज़ के लिए मैसेज करना है, तो जो आंसर देगा उसकी पसंद का गाना उसका प्ले होगा। तो गाना कौन सा है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो मस्त सा क्वेश्चन करती हूँ आप लोगों से, जिसका जवाब आप लोग आसानी से दे दें और होपफुली उस आंसर के साथ आपके गाने भी प्ले हो जाएं। देखिए मतलब ये देखिए, आशु जी ने पूरा अपडेट रखा है मामला, गाना सुन लीजिए इसी बात पे अपनी पसंद का, क्योंकि आपने बहुत सही टाइमिंग से कॉल मतलब मैसेज करके गाना फरमाइश करने का जो जख्म मतलब जख्म से भरा क्या कहते हैं ना जोखिम उठाया है, उसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि वैसे सोच रही थी कोई ख़तरनाक सी क्वेश्चन को ढूंढूं आप लोग के लिए, लेकिन चलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको जान के दिल कहता है यार ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा गया। ये बताइए ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ माधुरी दीक्षित हीरोइन बनी हुई है, ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें अमिताभ के साथ माधुरी दीक्षित एज अ एक्ट्रेस हैं, ठीक है, जिसको आंसर आता है वो जल्दी से बताएगा और जिसको आंसर आता है वो अपना गाना भी जल्दी से सुन जाएगा। तो चलिए देखते कौन फरमाइश करता है, तब तक के लिए हमारी तरफ से ये प्यारा सा गाना आप लोग के लिए।

0: not connected.
1: Hello? Hello?
0: Warning. Not connected.
1: हेलो, नमस्कार जी, आप सवाल का आंसर देंगे? हेलो, गुड इवनिंग, आपका नाम?
2: अच्छा
1: जी, आपका नाम बताइए।
2: मेरा नाम एहसान है।
1: जी एहसान जी, तो सवाल मैंने किया है कि अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित की कोई फिल्म बताइए जिसमें दोनों ने साथ में काम किया हो। आंसर बता दीजिए और अपनी पसंद का गाना सुन लीजिए।
2: इतनी जानकारी नहीं है माधुरी दीक्षित और अमिताभ के बारे में, ज्यादा जानकारी नहीं।
1: एक बार सोचिए फिर कॉल करिए, ठीक है?
2: ठीक है,
1: ओके, थैंक यू। तो देखिए एहसान जी सोचने गए हैं और तब तक के लिए हम सुनते हैं हमारी अटरिया पे आजा रे सावरिया। ये गाने की फरमाइश है आशु जी की। क्वेश्चन का आंसर दीजिए और अपनी पसंद के गाने सुनिए।

कटरिया पे आ जा रे सावरिया। और भाई आंसर देने वालों की कमी नहीं है भाई, ये शनाख्त फिल्म भी बिल्कुल सही है। और छोटे मियाँ बड़े मियाँ में बहुत स्पेशल अपीयरेंस के लिए माधुरी जी आई थी। और इसी के साथ गीता जी, आशु एंड धर्मेंद्र एंड एहसान जी ने कॉल करके आंसर दिया है। तो चारों का गाना प्ले होगा, बहुत अच्छी कोशिश, मज़ा आ गया। तो सबसे पहले जो फरमाइश कर रहा है वो जल्दी से अपना गाना भेजे और अपनी पसंद का गाना सुन ले। तब तक के लिए मेरी पसंद का गाना आप लोग के लिए खिदमत में ये रहा। फिलहाल ये गाना सुनिए, इससे जुड़ा आपको क्वेश्चन सुनने को मिलेगा। आपको ये गाना सुन के बताना है ये किस फिल्म का गाना है। शिकायत

मेरे उन लिसनर्स के लिए जो मुझसे शिकायत करते हैं, फिलहाल मुझसे शिकायत करिए और मैं आपकी शिकायत दूर कर दूंगी। फिलहाल आपको बताना है ये गाना किस फिल्म का था, और आंसर देने वाले बहुत सारे लोग होंगे मुझे पता है। जिसने भी आंसर देना वो चैट रूम में आंसर दे सकता है, बकायदा कॉल भी कर सकता है 6893 पर। फिलहाल आपको सुनने का मिलेगा मौका गाना एहसान जी की फरमाइश का, और एहसान जी का नाम इतना खूबसूरत है कि मुझे गाना याद आ गया। एहसान तेरा हो गा मुझ पर दिल चाहता है। तो यही गाना मैं एहसान जी के लिए प्ले भी कर रही हूँ, और ये मोहम्मद रफी की आवाज में इनको गाना सुनना था, तो इनके लिए गाना ये प्यार के साथ सुनिए।

थैंक यू प्रीति जी, मेरा फ्रेंच फ्राइज खाने का मन भी था, चाय भी आपने भेज दी, गुड इवनिंग। आंसर वांसर करिए, अपनी पसंद का गाना सुनना है तो इस बार गाना सुनेंगे हम लोग पहले गीता जी का, फिर धर्मेंद्र जी का, फिर आशु जी का। आशु जी आप भी फरमाइश कर लीजिएगा, आप ऐसे एक बार गाना सुन चुकी हैं लेकिन आपका गाना प्ले होगा। और इस बार आंसर देने वाले देखिए कौन कौन है, मैं पहले नहीं डिस्क्लोज करूंगी आंसर क्या।

अगला गाना है, ये गाना आपने सुना गीता जी की फरमाइश का था, और अगला गाना है पलट मेरी जान, तेरा ध्यान किधर है, ओहो तेरा ध्यान किधर है, ये वाला तो नहीं है, देखते हैं धर्मेंद्र जी ने कौन सा गाना फरमाइश किया। और इसी के साथ अभी हमारी आशु का गाना आ गया, सैयारा सुनना है इनको, और आंसर सही दिया है गीता जी ने, बिल्कुल सही आंसर है, गंगूबाई काठेवाड़ी, इसी का गाना है शिकायत। और अब जो बारी है पलट मेरी जान तेरे कुर्बान तेरा ध्यान किधर है, मुझे लगता है ये पुराने गाने की फरमाइश है, आशा भोसले की आवाज़ में राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया ये प्यारा सा गाना, सन 1970 की फिल्म आओ मिलो सजना से आप लोग

0: इधर है ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए पलट मेरी जान मेरे घर कौन बदले राजा।
1: चलिए सवाल करते हैं आप लोगों से, राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म कौन सी थी? राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म कौन सी थी?

0: तो चलिए देखते हैं उत्तर किसने किसने दिया है और आंसर किसका किसका सही है। तो आंसर है रियासत। रियासत बिल्कुल सही आंसर है। तो अभी प्रीति जी का गाना प्ले होगा रियासत। और इसी के साथ निशा ने गाने की फरमाइश की थी तुमसे मिलके बिछड़ना याद आता है। और पहले हम लोग सुन लेते हैं प्रीति जी का गाना। पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर, सब दरवाजे कर लो बंद, देखो आए आए
1: अब ये रुकने वाली नहीं, अब ये झुकने वाली नहीं।

0: तोड़ दे सारे बंधन तू, तोड़ दे सारे बंधन तू, मचने दे पायल।
1: तो चलिए अब मैं जाने की भी आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी क्योंकि टाइम हो चुका है आप लोगों से दूर जाने का। और इसी के साथ मैं ये कहूँगी कि चलिए हम लोग आखिरी फरमाइश लगा के जाएंगे आप लोग की। गाना है बड़ा प्यारा सा जिसकी मतलब बोल हैं, तुमसे मिलके बिछड़ना याद आता है। और अभी आप सुन रहे हैं प्रीति जी की फरमाइश का गाना, कुछ ही देर में आप सुनेंगे गीत आपके नाम से आरजे सिंपल के साथ।

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने अभी तक फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, भाई खोल लो ना, प्यारा सा गाना टटोल लो ना, उस गाने को लाके फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दो ना, और लगा दो डेफिनेटली हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत चांद। क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल हमेशा हमेशा के लिए आपकी है दोस्तों। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। आशु मिश्रा जी लखनऊ से, सोनिया तिवारी गोंडा से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, राजेश कुमार सिंह जी मालवे नगर गोंडा से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, गुनगुन अनुष्का श्रावस्ती से, दुर्गा प्रसाद खुशी और इसी के साथ में सुरेश कुमार जी चौक से आवास विकास गोंडा से, रवि मुमताज अंसारी जी गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, सबीहा गोंडा से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने शो में। जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, निब्बर जी रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, स्टे ट्यून्ड एवरीवन और इंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। दोस्तों हमारे पास में पहली फरमाइश है आशु मिश्रा जी के लखनऊ से, और उनको सुनना है गाना प्यार की कश्ती में। आहा, एंजॉय करते हैं कहो ना प्यार है का गाना, ऋतिक रोशन अमीशा पटेल का, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारी आशु जी की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: खूबसूरत सा नगमा कहो ना प्यार है पिक्चर का सिर्फ और सिर्फ हमारी आशु जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रीति शुक्ला जी बहराइच से आपका स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने शो में। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। उषा कश्यप फ्रॉम गोंडा, कार्तिक कश्यप फ्रॉम गोंडा, निधि कश्यप सीतापुर से आपका भी स्वागत है। और अगली फरमाइश हमारे पास में है सोनिया तिवारी की गोंडा से। सोनिया तिवारी को गोंडा से सुनना है गाना सजन रज हो जावे फिर भी न न न न न न न पगला। सो एंजॉय करते हैं मेरे फेवरेट सिंगर सतिंदर सरताज की आवाज में हमारी सोनिया तिवारी जी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। सच में बहुत ही प्यारा गाना है ये। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।
1: प्यार हुंदा फुल्ला तो मलूक सोनिया

श्वेताज की आवाज में हम एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा पंजाबी सॉन्ग। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ और ये फरमाइश थी सोनिया तिवारी की। इसी के साथ में सोनिया तिवारी का कहना है कि मेरी फरमाइश को सजा कर सुरों में आपने ढाल दिया, एक प्यारा सा गीत सुनाकर दिल को खुशहाल कर दिया। आपकी आवाज में मिठास है, हर पल दिल को छू जाती है। धन्यवाद सिंपल जी, आपकी अदाओं ने शाम सजा दी है। सो थैंक यू सो मच और एंजॉय करते हैं धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश चुकी है गोंडा से, उनको सुनना है किक पिक्चर का गाना हैंगओवर। सो एंजॉय करते हैं सलमान खान जैकलिन फर्नांडिस का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। आई मीन सच में ये गाना भी मुझे सच में पसंद है।

तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का। एंजॉय के ये गाना के पिक्चर का धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले डिमांड की तरफ। मालवीय नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है गाना बड़ी दूर से आए। तो एंजॉय करते हैं किशोर कुमार जी की आवाज में ये अतरंगी सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारे मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। और इसी के साथ में धर्मेश त्रिपाठी का कहना है कि दिल की बात को सुरों से सजा दिया, मेरी एक फरमाइश ने समा बना दिया। शुक्रिया आपका दिल की गहराइयों से, आज ये सिंपल आपने आज हमारा दिन बना दिया। फ्रॉम धर्मेश त्रिपाठी। थैंक

थोड़ी दूर से आया बन्ना पर बन्नी ना बोले, हमने एंजॉय किया किशोर कुमार जी की आवाज में मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर ये गाना। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, और धर्मेंद्र मोहन को सुनना है। बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, पागल हुआ नाना पाटेकर और तब्बू का है ये गाना। शंकर महादेवन और जसपिंदर नरूला की आवाज में है ये नगमा, से एंजॉय करते हैं ये गाना धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पे, जो की है आवाज विकास गोंडा से। इसी के साथ में इनका कहना है कि नाना पाटेकर का लव और रोमांटिक सॉन्ग सभी दोस्तों के लिए मेरा डेडिकेशन है। सो उन्होंने डेडिकेट किया है ये गाना, और एंजॉय करते हैं ये फरमाइश। स्टे ट्यून्ड, हैव फन।

पागल हुआ दीवाना हुआ, जाने मुझे ये क्या हुआ। हमने इंजॉय किया है शंकर महादेवन जसविंदर नरूला का ये गाना। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, और धर्मेंद्र मोहन ने आवाज विकास गोंडा से इस गाने को डेडिकेट किया था हमारे सभी लिसनर्स को। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों गुनगुन की। गुनगुन को सुनना है गाना जगन्नाथ चक्का नैन। सो इंजॉय करते हैं ये डिवोशनल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ गुनगुन की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, और आप डेफिनेटली सुन रहे हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की।

वाह दोस्तों, हमने इंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा डिवोशनल सॉन्ग गुनगुन की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से। अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना, ये दिल वालों की बस्ती है। सो इंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट डांसिंग वाला नगमा, तड़कता भड़कता सा नगमा, सदाबहार नगमा हमारी सो स्वीट अनुष्का जी की फरमाइश पर जो की है श्रावस्ती से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

कालों की बस्ती है, चाहत का इलाका है। हमने एंजॉय किया है ये गाना अनुष्का की फरमाइश पे, जो कि है श्रावस्ती से। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों नेहा की। नेहा को सुनना है गाना आज दिन चढ़े आस, तो एंजॉय करेंगे ये गाना। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो उस्मान खान, आपका स्वागत है। सो एंजॉय कर लेते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश, नेहा की फरमाइश। सो एंजॉय करेंगे लव आजकल का ये गाना, राहत फतेह अली खान का गाना। स्टे ट्यून्ड। आय हाय कितना रिलैक्सिंग सॉन्ग है ना ये।

एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। लव आजकल का राहत फतेह अली खान की आवाज में बहुत ही सूदिंग सा सॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ नेहा की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। लेकिन क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइशी गीत को एंजॉय करने के लिए? बोलिए ना। हाँ, इसी के साथ में धर्मेंद्र मोहन का आवाज विकास गोंडा से पूछना है कि सिंपल जी, मुझे लगता है कि आपकी तबीयत खराब है, शायद आपको जो लगता है वो शायद सही लगता है, क्योंकि आप लोग शायद मुझे बहुत ही करीब से जानते हो, आप लोग मेरी आवाज़ से ही पता लगा लेते हो कि आज मेरा मूड कैसा है या फिर आज मेरी हेल्थ कैसी है। सो थैंक यू सो मच, बस यही प्यार दुलार ही तो है आप लोगों का जो मुझे यहाँ खींच के लेके चला आता है। सो एंजॉय करेंगे अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दुर्गा प्रसाद की, उनको सुनना है गाना मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दी। से एंजॉय करेंगे हनुमान अंश का ये बहुत ही खूबसूरत सा डिवोशनल सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, ये फरमाइश है दुर्गा प्रसाद की।

मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दी। हमने एंजॉय किया है हनुमान अंश का ये बहुत ही खूबसूरत सा डिवोशनल सॉन्ग। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है खुशी की। खुशी को सुनना है गाना, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। सो एंजॉय करते हैं हिट स्टोरी 3 का ये सुपर डुपर हिट नगमा शर्मन जोशी और जरीन खान का हाउ रोमांटिक सॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ खुशी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हमने इंजॉय किया है हिट स्टोरी 3 का ये गाना। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। सो क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइश को एंजॉय करने के लिए? अगली फरमाइश है आवाज विकास गोंडा से रवि की। उनको सुनना है गाना चिट्ठी ना कोई संदेश, और उन्होंने इस गाने को डेडिकेट किया है नाना पाटेकर को। सो एंजॉय करते हैं जगजीत जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, फरमाइश।

0: So, ये फरमाइश थी आवाज विकास गोंडा से रवि की। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है निधि कश्यप की सीतापुर से, उनको सुनना है गाना बड़े घर की बेटी के नखरे बड़े। इंजॉय करेंगे ये फरमाइशी गीत। इसी फरमाइशी गीत की उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो मिलते हैं सीधे 9 बजे और आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है फटाफट से जाओ पेट पूजा करके फिर से वापस आओ इस फरमाइशी की महफिल में। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
1: फिल्मी गाने के नए वीडियो

एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में, आपकी अपनी आरजी सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो 11.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। ओह माय गॉड, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। और दोस्तों अब बढ़ेंगे हमारी आज के अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन इसके पहले कहना चाहूंगी कि दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, तुमको भी तो अंदाजा लगाना नहीं आता। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश कार्तिक कश्यप की गोंडा से, उनको सुनना है गाना मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया। अच्छा जी, सो एंजॉय करेंगे ये वाला गाना, और डेफिनेटली आप सुन रहे हो रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

रंग देख के दीवाना हो गया हमने, एंजॉय किया ये गाना। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। उत्कर्ष कश्यप को गोंडा से सुनना है गाना पार्वती, सो एंजॉय करते हैं हनुमान अंश का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सिर्फ और सिर्फ उत्कर्ष कश्यप की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

आपको ये पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर भक्ति करनी है ना, तो जाइए आप भ्रमण, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।

0: कर।
1: सो ये फरमाइश थी उत्कर्ष कश्यप की गोंडा से। अगली फरमाइश हमारे पास में है निशा की पटेल नगर गोंडा से। एंजॉय करेंगे हम लोग निशा की फरमाइश, और निशा को सुनना है गाना कहानी सुनो। सो एंजॉय करते हैं कहानी सुनो 2.0 सिर्फ और सिर्फ निशा की फरमाइश पर, जो की है पटेल नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

0: दोस्तों हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा निशा की फरमाइश पे जो की है पटेल नगर गोंडा से। एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत को। और अगली फरमाइश हमारे पास में है अरमान की पटेल नगर गोंडा से। अरमान को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना इश्क। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा सिर्फ और सिर्फ अरमान की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: कबूल

एंजॉय किया ये गाना अरमान की फरमाइश पर जो की है पटेल नगर गोंडा से। और अगली फरमाइश हमारे पास में है उस्मान खान की। उस्मान खान को सुनना है गाना भवरे ने खिलाया फूल। से एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा सुरेश जी की और लता जी की आवाज में उस्मान खान की फरमाइश पर। एंजॉय करेंगे ये गाना दोस्तों। लेकिन अब इसी के साथ में आपकी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहेगी आप सभी से अलविदा भी। सो बस यही इतना कहना चाहूंगी। ओ वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। नागेश्वर धाकड़ आपका स्वागत है। और अब इंजॉय करेंगे हमारी आज की आखिरी फरमाइश जिसके साथ में आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहेगी आप सभी से अलविदा। सो दोस्तों बस यही तक कहना चाहूंगी कि हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है। और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का बिल्कुल सवाल नहीं बनता क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए। आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल। स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं कल फिर से एक नए जज्बात, एक नए गीत और एक नए प्यार के साथ और एक नई बात के साथ। सो एंजॉय करेंगे उस्मान खान जी की फरमाइश और इस फरमाइशी गीत के बाद में हम लोग एंजॉय करेंगे नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश को। जी हाँ दोस्तों बाय बाय।

महरूमी और खुददारी, अब दिल को खुदा रखे, अब दिल का जमाना है। आदाब, नमस्कार। बाहर गजल की इस खामोश रेशमी रात में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं आपका आरजे अदनान। आज का हमारा शो मंसूब है उस ताकत के नाम जो हर इंसान के अंदर पोशीदा रहती है, वो है वजूद की आवाज। जिंदगी में जब सब रास्ते बंद दिखने लगे ना, तब आपकी खुददारी ही वो रोशनी बनती है जो आपको सही राह दिखाती है। आपने देखा होगा जब कोई इंसान किसी छोटे से शहर से निकलकर बिना किसी ताल्लुक के सिर्फ अपनी मेहनत और खुददारी के दम पर अपना नया काम या नया कायम करता है, अपना नाम। वही तो है उसके वजूद की असली हुंकार। जब आप खुद की इज्जत करते हैं तो जमाना झुकता है। इस बात को जिगर मुरादाबादी साहब अपनी खूबसूरत से शेर में लिखते हैं कि शायर हूं मैं, शायर हूं मेरा ही जमाना है। शायर हूं मैं, शायर हूं मेरा ही जमाना है, फितरत मेरा आईना, कुदरत मेरा शाना है। तो ये मुझे लगता है कि शायद हाँ, ये खुददारी ही है जो आपको आपकी जिंदगी में राह दिखाती है जब सारी राहें आपको बंद होती नजर आती है। आइए ये खूबसूरत सी गजल आपके नाम करते हैं।

कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया एक तरफ जा रही हो और आपका मन करे नहीं यार, मुझे तो दूसरी सिमत में चलना है। अगर ऐसा हुआ है तो मुबारक हो, आप अपनी रवायत से अलग सोच रहे हैं। इसी बात को खावर एजाज साहब की गजल का ये शेर बड़ी ही खूबसूरती से बताता है। ये मेरे वजूद का मसला भी अजीब है, जो मैं चाहता हूं वो दूसरा नहीं चाहता है। पूरी गजल कुछ इस अंदाज में है कि वो मेरे हिसाब में इम्तहा नहीं चाहता, मगर एक मैं हूं कि इब्तदा नहीं चाहता। मेरे सहन पर खुला आसमां रहे कि मैं उसे धूप छांव में बांटना नहीं चाहता। कभी खुल सके किसी एतिबार के दौर में, मुझे चाहता है वो दिल से या नहीं चाहता। कोई और भी हो चरागे बज़्मे हयात का, सरे ताक रखा हुआ है दिया नहीं चाहता। ये मेरे वजूद का मसला भी अजीब है, जो मैं चाहता हूँ वो दूसरा नहीं चाहता। ज़रूरी नहीं कि जो सब कर रहे हो वही सही हो। सोचिए ज़रा उन फनकारों, उन मुअज्जिद और उन साइंसदानों के बारे में जिन्हें शुरुआत में लोगों ने पागल या अलग कहा था, पर उनकी उसी जिद और अलहदा सोच ने इस दुनिया को बदल कर रख दिया। अपने वजूद की अनदेखी आवाज को दबाइएगा मत, उसे सामने आने दीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि एक वजूद की आवाज आप में भी है जो जमाने के इतर चलती है, और अगर ऐसी आवाज है तो आप मुबारकबाद के काबिल हैं।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं। कुछ वक्त पहले की बात है, किसी ने मुझसे कहा था कि यार सब कुछ खत्म सा लग रहा है, दिल टूट गया है। अगर वो शख्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं तो मेरी एक बात याद रखिएगा, जब तक सांस चल रही है माजरा खत्म नहीं हुआ है। नाकामी के बाद दोबारा कदमों पर खड़े होना ही तो इंसान होने की असली शिनाख्त है। जैसा कि जावेद अख्तर साहब अपनी गजल में लिखते हैं, अभी जमीन में थोड़ी सी जान बाकी है, अभी हमारा कोई इम्तहान बाकी है, हमारे घर को तो उजड़े हुए जमाना हुआ, मगर सुना है अभी वो मकां बाकी है। हमारी उनसे जो थी गुफ्तगु वो खत्म हुई, मगर सुकूत सा कुछ दरमियां बाकी है, हमारे जहन की बस्ती में आग ऐसी लगी कि जो था खाक हुआ, एक दुकान बाकी है। वो जख्म भर गया अरसा हुआ, मगर अब तक जरा सा दर्द जरा सा निशा बाकी है, जरा सी बात जो फैली तो दास्तां बनी, वो बात खत्म हुई दास्तां बाकी है। अब आया तीर चलाने का फन तो क्या आया, अब आया तीर चलाने का फन तो क्या आया, हमारे हाथ में खाली कमान बाकी है, हमारे हाथ में खाली कमान बाकी है। यह गजल उन सभी लोगों के नाम जो किसी शिकस्त या बुरे दौर से गुजर कर आज रात अपने आंसू पोंछ रहे हैं। सब कुछ राख हो जाने के बाद भी उम्मीद की एक दुकान बाकी रह जाती है। उठिए, गर्द झाड़िए और एक नई इब्तिदा लिखिए।

एक आम इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? पैसा या उसका औहदा? वैसे ये दोनों ही नहीं होते जी हाँ, उसकी खुददारी और उसका संविधान। दुष्यंत कुमार साहब अपनी पंक्तियों में जब ये लिखते हैं तो पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए ये खूबसूरत सी गजल जो कि दुष्यंत कुमार साहब ने लिखा है वो आप तलक पहुंचा रहा हूं। वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। वो कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू, मैं क्या बताऊं मेरा कहीं और ध्यान है। सामान कुछ नहीं है फटे हाल है, मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है। उस सर फिरे को यूं ना बहला सकेंगे आप, वो आदमी नया है मगर सावधान है। फिसले जो उस जगह तो लुढ़कते चले गए, हमको पता नहीं था कि इतनी ढलान है। देखे हैं हमने दौर कई अब खबर नहीं, पांव तले जमीन है या आसमान है। वो आदमी मिला था मुझको उसकी बात से, वो आदमी मिला था मुझे उसकी बात से। ऐसा लगा था वो भी कि बहुत बेजुबान है। हम अक्सर सड़क पर मशक्कत करने वाले मजदूरों या अपनी रातें जलाकर पढ़ने वाले तालिबे इल्मों को देखकर आगे बढ़ जाते हैं, पर सच तो ये है कि बिना किसी दिखावे के ईमानदारी से अपने हक और अपनी मेहनत की रोटी कमाने वाला हर शख्स इस मुल्क के वजूद की असली ताकत है। जब आपके पास ईमानदारी और हक का रास्ता हो तो किसी के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं होती है। और यही बात हमारे दुष्यंत कुमार साहब की इस गजल ने बखूबी आप तक बात कही। आइए, एक खूबसूरत सी गजल आपका इंतजार कर रही है, ले चलते हैं आपको गजल की जानिब।

फिलहाल घड़ी की सुइयों ने इशारा किया है कि हमारी भी इस खूबसूरत महफिल को समेटने का वक्त नज़दीक आ गया है। पर जाने से पहले मुझे शादाब साहब का एक शेर याद आ रहा है, आपके दिल के कोने में कहीं वो मैं छोड़ देना चाहता हूँ। शादाब साहब लिखते हैं कि इस तरह फासलों पे फतह पा चुके हैं हम, इस तरह फासलों पे फतह पा चुके हैं हम, एक पांव आसमान पे है एक जमी पे है। और मुझे तो लगता है इनकी पूरी गजल आपको ज्यादा पसंद आएगी। शादाब यानी अकील शादाब साहब लिखते हैं, शायद कोई कमी मेरे अंदर कहीं पे है, मैं आसमां पे हूं मेरा साया जमीन पे है। अफसाने हयात का हर एक सानेहा, तहरीर हर्फ हर्फ हमारी इस जबी पे है। दरिया में जिस तरह से हो माही उसी तरह मैं हूं, जहां पे मेरा खुदा भी वहीं पे है। जन्नत खुदा ही जाने कहां है कहां नहीं, मुझको यकीन है कि जहन्नम यहीं पे है। यूं जो जी रहे सख्त अजियत के बावजूद, दारो मदार जीस्त का जैसे हमी पे है। इस तरह फासले पे फतह पा चुके हैं हम, एक पाव आसमां पे है एक जमीन पे है। शादाब हुस्न इश्क मसावी है आजकल, इल्जाम मुझ पे है वही उस नाजनी पे है, इल्जाम मुझ पे है वही उस नाजनी पे है। जिंदगी की सबसे बड़ी फतह यानी कामयाबी यही है कि आप जमीन पर अपने पांव टिका कर भी आसमान छूने के ख्वाब देखें। उन तमाम लोगों को मेरा सलाम जो दिन भर अपने अहले खानाए के लिए मशक्क़त करते हैं और रात को अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपनी मसरूफियत निकालते हैं। आप ही हैं जो अपने वजूद की शर्तों पे जी रहे हैं। आज रात सोने से पहले आपसे कहिएगा खुदा कि मेरा वजूद मेरी पहचान है, इसी उम्मीद और इसी सोच के साथ आपके आरजू अदनान अब आपसे रुखसत हो रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो। मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे और आज की इस गहरी रात में लेके आई हूं एक ऐसी कहानी जिसमें कोहरा सिर्फ रास्तों पर नहीं उतरता, वो इंसान के मन के भीतर भी छा जाता है। आज की कहानी का नाम है कटा हुआ सिर और लाल बैग। तो रोशनी को थोड़ी धीमी कर लीजिए और अगर आप अकेले हैं तो एक बार आसपास नजर डालिए, क्या पता किसी कोने में कोई चीज चुपचाप आपकी ओर देख रही हो। रात के लगभग 2 बज रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर इतना घना कोहरा छाया हुआ था कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। सड़क पर दूर दूर कोई रोशनी नहीं थी। गाड़ियों की हेडलाइटें भी कुछ कदम आगे तक उजाला करती और फिर सफेद धुंध में खो जाती। उस सुनसान सड़क पर एक पुरानी यात्री बस धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। बस का इंजन लगातार घरघराता हुआ, ऐसा लगता है जैसे हर पल बंद पड़ जाने की धमकी दे रहा हो। भीतर केवल 2-3 मुसाफिर बैठे थे। कोई सीट से सिर टिकाकर सो रहा था तो कोई खिड़की से माथा लगाकर ऊंग रहा था। ड्राइवर की सीट पर बैठे विक्रम की आंखें भारी हो रही थी। उसने कई बार चेहरे पर पानी छिड़का, खिड़की थोड़ी खोली, फिर भी नींद उसकी पलकों पर लौट आ रही थी। बस के भीतर बजता रेडियो कुछ देर पहले खरखरा के बंद हो गया था। अब सिर्फ इंजन की आवाज और टायरों के नीचे दबती सड़क का शोर था। अचानक कोहरे के बीच एक पीली सी रोशनी उभरी। विक्रम ने आंखें सिकोड़ कर देखा, सड़क के ठीक बीचों बीच एक काली कार खड़ी थी। उसका अलग हिस्सा हल्का सा सड़क की दूसरी ओर झुका हुआ था। ड्राइवर वाला दरवाजा आधा खुला था और कार की अंदरूनी लाइट बार बार जल बुझ रही थी। विक्रम ने जोर से ब्रेक लगाया, बस झटके से रुकी। पीछे बैठे यात्री नींद में चौंक पड़े। एक का सिर आगे की सीट से टकराया। अरे कौन है जो इस तरह सड़क पर गाड़ी छोड़कर चला गया? विक्रम ने खिड़की के बाहर झुककर आवाज लगाई, किसी दिन खुद तो मरोगे ही, दूसरों को भी मरवाओगे। कोई जवाब नहीं आया। विक्रम ने कुछ क्षण कार को देखा। कोहरे के कारण उसके भीतर कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। बस की हेडलाइट कार के आधे खुले दरवाजे पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई उसमें से उतरकर सड़क के किनारे गया हो। एक मुसाफिर ने धीमे से पूछा, ड्राइवर साहब, कोई दुर्घटना हुई है क्या? पता नहीं, लेकिन यहाँ रुकना तो ठीक नहीं, विक्रम बोला। उस बस को धीमे से किनारे किया और उस कार के पास से निकालने लगा। जैसे ही बस कार के बराबर पहुंची, विक्रम की नजर एक पल के लिए अंदर गई। ड्राइवर की सीट खाली थी, लेकिन उसके सामने की सीट पर कुछ लाल रंग का रखा दिखाई दे रहा था, जैसे कोई बैग हो। बस आगे बढ़ी। विक्रम ने शीशे के पीछे देखा, कार की लाइट अब भी जल बुझ रही थी। फिर कोहरे ने उसे ढक लिया। कुछ 100 मीटर आगे पहुंचे थे कि बस की हेडलाइटों के सामने कोई आकृति दौड़ती हुई दिखाई दी। अरे, विक्रम जोर से चीखा और उसने ब्रेक लगाया। एक आदमी था, सड़कों के बीचों बीच भाग रहा था, कभी फिसलता कभी संभलता। उसने बस को आते देख रास्ते से हटने के बजाय दोनों हाथ उठा के उसे रोकने लगा। विक्रम ने बस रोकी, दरवाजा खोला तो वो आदमी लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, चेहरे पे पसीना था, जबकि बाहर की ठंडी हवा में किसी का पसीना आना असंभव था। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि वो बोल नहीं पा रहा था। दोनों हाथ एक मध्यम आकार के लाल चमड़े के बैग को जकड़े हुए थे।
विक्रम ने शीशे से उसे देखा और पूछा, कौन हो भाई, कहां से आ रहे हो, तुम्हारे पीछे कोई पड़ा है क्या? उस आदमी ने खिड़की की ओर देखा, कोहरे के पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वो जैसे किसी चीज को खोज रहा था। गाड़ी भगाओ, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, कृपया जल्दी चलो, वो हमें देख लेगी। अरे कौन देख लेगी, आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसने लाल बैग को और कस के जकड़ लिया। कुछ मिनट तक बस में किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर पीछे बैठी एक महिला यात्री ने पूछा, आप घायल तो नहीं है, कहीं चोट लगी है क्या? उस आदमी ने सिर हिलाया, बोला, मेरा नाम समीर है, मैं रामपुर स्टेशन पे काम करता था और मेरे साथ जो कुछ हुआ, आप लोग शायद उसे सुनकर मुझे पागल समझेंगे सबकी तरह। विक्रम ने कहा, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुम किससे डर रहे हो। समीर ने कहा, मुझे डर उस चीज से लग रहा है जो मेरे पीछे है, मुझे डर इस बात का है कि वो चीज मेरे इस बैग में भी आ गई है। बस के भीतर बैठे सभी लोगों की निगाहें लाल बैग पे टिक गई, उसकी जिप पूरी तरह बंद थी, फिर भी बैग के भीतर से कुछ आवाज आ रही थी। समीर ने बैग को झटके से अपने सीने से चिपकाया, बोला, इस आवाज को मत सुनना। फिर उसने गहरी सांस लेकर अपनी कहानी सुनानी शुरू किया। ये सब हुआ रामपुर के उस रेलवे स्टेशन से। रामपुर रेलवे स्टेशन शहर से दूर था और स्टेशन के पीछे एक छोटा सा जंगल है। दिन के समय भी वहाँ बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। रात में तो स्टेशन पे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे दुनिया से ही काट दिया हो। समीर वहाँ एक इंक्वायरी क्लर्क था। उसकी नौकरी का ज्यादातर समय पुराने रजिस्ट्रों में एंट्री करने, यात्रियों का ट्रेन समय बताने और रात की शिफ्ट में खाली प्लेटफॉर्म पे बैठे रहने से गुजरता था। स्टेशन मास्टर सुरेश उसे कई सालों से जानता था। नाइट गार्ड सुमित भी अक्सर उसके साथ चाय पीता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से समीर ठीक से सो नहीं पा रहा था। कभी उसे अपने घर की खिड़की के पास कोई खड़ा दिखाई देता, कभी रात में उसे अचानक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती। डॉक्टरों ने उसे आराम करने की सलाह दी, मगर उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। उस रात भी घड़ी में 11:30 हुए, प्लेटफॉर्म की पीली ट्यूब लाइट झपक रही थी, दूर की पटरियों पर धुंध बैठने लगी थी। समीर अपने कैबिन में रजिस्टर लिख रहा था, अचानक सन्नाटे में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, मम्मी मुझे घर जाना है। समीर का हाथ रुक गया, उसने कलम मेज पर रखी और खिड़की के बाहर देखा, प्लेटफॉर्म खाली था, मगर फिर आवाज आई, मम्मी बहुत अंधेरा है। इस बार आवाज लेडीज टॉयलेट से आ रही थी। समीर बाहर निकला, वो टॉर्च की रोशनी सामने करते हुए धीरे धीरे टॉयलेट की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ बच्चे के रोने की आवाज साफ होती जा रही थी। कौन है वहाँ, समीर ने पुकारा, कोई उत्तर नहीं मिला। टॉयलेट की दीवार के पास पहुँच के वो रुका, वहाँ ट्यूबलाइट बंद थी और उसी क्षण उसकी सांस जैसे गले में अटक गई। फर्श पे एक छोटे बच्चे का धड़ पड़ा था, उससे कुछ दूरी पर उसका सिर पड़ा था, सिर की आंखें खुली थी, चेहरा पीला था, होंठ कांप रहे थे और कटे हुए गले से वही रोने की आवाज निकल रही थी, मम्मी मुझे घर जाना है। समीर के हाथ से टॉर्च लगभग छूट गया, वो पीछे की ओर लड़खड़ाया, उसकी पीठ दीवार से टकराई, टॉर्च की रोशनी कांपते हुए फिर उसके सिर पर पड़ी। बच्चे की आंखें अब समीर को देख रही थी। समीर भागा, स्टेशन मास्टर के केबिन पे पहुंचा और चिल्लाया, सुरेश भाई प्लीज जल्दी बाहर आइए, वहां बच्चे का किटा हुआ सर पड़ा हुआ है।
सुरेश नींद में था। वो झुंझलाते हुए बाहर निकला। उसने पूछा, क्या हुआ? समीर ने बताया, मैंने देखा वहाँ लाश है एक बच्चे की। दोनों तेज कदमों से टॉयलेट तक पहुँचे। समीर ने कांपती उंगली से फर्श की ओर इशारा किया। वहाँ कुछ नहीं था, न बच्चा, न सिर, न खून। फर्श सूखा और साफ था। टॉर्च की रोशनी में सिर्फ धूल के कुछ कण चमक रहे थे। सुरेश ने समीर का चेहरा देखा। समीर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। रात की ड्यूटी में भ्रम हो सकता है, समीर ने कहा। लेकिन वो रो रहा था, मैंने वो सर देखा। पर स्टेशन मास्टर ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। चलो पानी पीकर बैठो, सुबह घर जाकर आराम करना। सुरेश लौट आया। समीर वहीं कुछ देर खड़ा रहा। उसने फर्श को गौर से देखा। उसके जूते के पास एक छोटी सी गीली बूंद चमक रही थी। उसने झुककर उंगली लगाई। वो पानी नहीं था। उंगली पर हल्का लाल रंग लगा और वो बूंद अगले ही पल गायब हो गई। प्यारे श्रोतागण, कभी कभी डर किसी आवाज से नहीं, उस सन्नाटे से पैदा होता है जो आवाज के बाद रह जाता है। और आप कहानी के अगले मोड़ से पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक। पहली रात के बाद समीर के लिए समय जैसे रुक गया था। दिन में वो खुद को समझाता कि शायद सचमुच थकान के कारण उसे भ्रम हुआ होगा, लेकिन जैसे ही रात होती उसे टॉयलेट की दीवार के पास वही बच्चा दिखाई देने लगता। उसकी खुली हुई आंखें, चेहरा सफेद और धीमी आवाज में, मम्मी मुझे घर जाना है। दो दिन तक कुछ नहीं हुआ। समीर ने किसी से उसके बाद कुछ नहीं कहा। वो स्टेशन पे काम करता, लेकिन उसकी नजरें बार बार टॉयलेट की तरफ उठ जाती। उसे लगता जैसे अंधेरे में कोई उसे देख रहा हो। तीसरी रात 1 बजे के आसपास वो प्लेटफॉर्म पे टहल रहा था। हल्का बुखार था। स्टेशन की घड़ी टिक टिक करके चल रही थी। नाइट गार्ड सुमित उसके पास आया। उसने प्लेटफॉर्म की लोहे की बेंच की तरफ इशारा करके कहा, समीर भाई, लगता है चादर ओढ़े कोई बूढ़ा यात्री लेटा हुआ है। बीच बीच में कांप भी रहा है। मैं आवाज देता हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। बेंच पर कोई लेटा हुआ था। उसके ऊपर भूरी चादर थी और चादर के नीचे शरीर हल्का हल्का हिल रहा था। समीर ने कहा, शायद उसे ठंड लग रही है। सुमित आगे बढ़ के बोला, बाबा सुन रहे हैं? चादर के भीतर से एक घुटी हुई आवाज आई, मुझे छोड़ दो। दोनों चुप हो गए। कुछ क्षण के बाद फिर आवाज आई, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। सुमित ने समीर की ओर देखा, किससे कह रहे हैं आप? समीर ने पास जाके पूछा, आपको क्या हुआ, कोई मदद चाहिए? वो शरीर अंदर जोर जोर से कांपने लगा, बोला, मेरा सिर लौटा दो। समीर की उंगलियां ठंडी पड़ने लगी। उसने सुमित से कहा, चादर हटाओ। मैं? सुमित की आवाज कांप गई, शायद उन्हें चोट लगी है। देखो, सुमित ने चादर का कोना पकड़ा और खींचा। बेंच पर बूढ़े का धड़ पड़ा था, लेकिन गर्दन के ऊपर कुछ नहीं था। कटे हुए गले पर खून और मांस का काला थक्का जमा था। उसका शरीर अब भी कांप रहा था। समीर पीछे हटा, लेकिन तभी धड़ ने एक झटका दिया। कटे हुए गले से खून की तेज धार निकली और समीर के चेहरे और शर्ट पर आ गिरी। सुमित चीख पड़ा। समीर का चेहरा सुन्न हो गया। उसने हाथ से अपना चेहरा पूछा। उसकी उंगलियों पर गाढ़ा लाल रंग था। फिर से आवाज आई, कहाँ है मेरा सिर? मेरा सिर लौटा दो। समीर और सुमित भागे। समीर स्टेशन मास्टर के कमरे में पहुंचा और सुरेश को सब बताया। सुरेश टॉर्च लेकर उनके साथ दौड़ा, लेकिन जब वे बेंच के पास पहुंचे, बूढ़ा यात्री चादर ओढ़े आराम से सो रहा था। उसका सिर उसके शरीर पे था, धीरे धीरे खर्राटे ले रहा था। चादर साफ था, बेंच पर भी खून का कोई निशान नहीं था। सुरेश ने गुस्से में समीर से कहा, फिर वही बात, अब तुमने सुमित को भी डरा दिया, वहाँ कोई बूढ़ा आदमी सो रहा है। समीर ने अपने चेहरे को छुआ, उसकी शर्ट पर भी खून नहीं था, लेकिन उसे अभी भी खून की स्मेल आ रही थी। वो बोला, मैंने देखा था, खून मेरे चेहरे पे था। सुमित ने धीरे से कहा, सुरेश साहब, मुझे भी कुछ दिखाई दिया था, शायद धुंध या अंधेरे में। बस, सुरेश ने सख्ती से कहा, सुबह सब डॉक्टर को दिखाना, रात भर डर की बातें मत फैलाओ। सुरेश चला गया। सुमित कुछ देर समीर के पास खड़ा रहा। वो अपने केबिन में लौटा और दरवाजा बंद कर लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पानी पिया, लेकिन गले का सूखापन नहीं किया। रात के 3 बजने वाले थे, तभी स्टेशन के बाहर ट्रेन की आवाज सुनाई दी। समीर चौंका, उस समय ट्रेन आने की सूचना भी नहीं थी। उसने रजिस्टर देखा, अगली ट्रेन तो सुबह 5:35 पर थी, मगर सीटी की आवाज आई। समीर खिड़की तक गया। कोहरे के बीच एक औरत प्लेटफॉर्म पर चलती दिखाई दी। उसने लाल रेशमी साड़ी पहनी थी। उसका पल्लू जमीन को छू रहा था। वो धीरे धीरे पटरियों की ओर बढ़ रही थी। समीर ने खिड़की खोली। सुनिए, वहाँ मत जाइए, ट्रेन आने वाली है। औरत ने उसकी ओर देखा तक नहीं। समीर के भीतर कोई बेचैनी उठी। उसने कैबिन से बाहर दौड़ लगाई। प्लेटफॉर्म पे पहुंचते ही उसे रेल की पटरियों के कंपन महसूस हुआ और औरत पटरी के बिल्कुल पास खड़ी थी। पीछे हटिए, समीर चिल्लाया। दूर से रोशनी उभरी। ट्रेन की आवाज बढ़ती गई। औरत ने अब भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही इंजन पास आया, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और वो ट्रेन सामने से चली गई। समीर ने आंखें बंद कर ली। कुछ डब्बे आगे जाके रुक गए। समीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा उसकी छाती फट जाएगी। वो पटरी की ओर भागा। उसे लगा वहाँ कोई भयानक दृश्य होगा, लेकिन पटरी के पास एक सिर पड़ा हुआ था। लाल साड़ी का पल्लू कुछ दूर लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। उस सिर की आंखें खुली हुई थी। चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। समीर उसके पास झुका। वो औरत उसकी आंखों में देख रही थी। फिर धीरे धीरे अपनी जीभ उसने बाहर निकाली। समीर पीछे हटा। अरे कोई है, स्टेशन मास्टर को बुलाओ। उसने ट्रेन की तरफ देखा। डिब्बे की खिड़कियों में यात्री बैठे थे। कुछ लोग उनींदे होकर बाहर झांक रहे थे। ट्रेन के ड्राइवर ने सिर निकाल कर पूछा, क्या हुआ, आप सिग्नल क्यों दे रहे हैं? अरे औरत पटरी पर आई थी, उसका सर कट गया, आपने उसे नहीं देखा? ड्राइवर ने हैरानी से पूछा। अरे किसी को नहीं देखा, ट्रेन तो धीमी भी नहीं हुई, कोई रुकावट नहीं थी। सुरेश और सुमित वहाँ पहुँचे। पटरी पर न सिर था, न साड़ी, न खून। सुरेश ने समीर के दोनों कंधों को पकड़ लिया। बोला, अब बस, तुम आज सुबह तक घर जाओगे। मुझे तुम्हारी हालत की चिंता है, लेकिन तुम पूरी रात सबको परेशान करते रहते हो। समीर ने सुरेश की ओर देखा। उसकी आवाज धीमी थी। बोला, सर अगर ये सब मेरे दिमाग में है तो मैं हर बार वही चीज क्यों देखता हूँ, बच्चा, बूढ़ा और अब ये औरत। सुरेश ने जवाब नहीं दिया। उस रात के बाद समीर ने स्टेशन के रजिस्टरों में पुराने रिकॉर्ड खोजने शुरू किए। उसे नहीं पता था कि वो क्या ढूंढ रहा है। शायद कोई घटना, कोई दुर्घटना, कोई ऐसा सुराग जो उसे बता सके कि ये चेहरे बार बार उसी के सामने क्यों आ रहे हैं। पुराने रजिस्टर में उसे कई साल पहले एक एंट्री मिली। रामपुर स्टेशन के बाद एक बच्चा लापता हुआ था। पुलिस को उसका परिवार नहीं मिला। एक और पन्ने पे लिखा था, रात में एक वृद्ध यात्री गायब हुआ, फिर सामने बेंच पे मिला, मगर उसकी पहचान नहीं मिली। वो मरा हुआ था। और उसके ठीक नीचे फीकी स्याही में तीसरी एंट्री थी, एक महिला यात्री के साथ दुर्घटना, लेकिन विवरण का हिस्सा फटा हुआ था। समीर की नजर स्टेशन के अगले पन्ने पर पड़ी।

हाथे से खून बह रहा था। एक गाल का मांस का हिस्सा लटक रहा था, फिर भी उसकी आंखें खुली हुई थी और वो अपने पति से उसी तरह से झगड़ रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम यहाँ मुझे छोड़ के भाग गए थे, तुमने कहा था कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। समीर की तो आवाज नहीं निकल रही थी। आदमी ने उस औरत की बाह पकड़ी, दोनों लड़खड़ाते हुए मालगाड़ी की ओर बढ़े। दूर से मालगाड़ी की भारी गर्जना सुनाई दिया। समीर चिल्लाया, रुको, पीछे हटो। मगर वो दोनों नहीं रुके। अगले ही पल वे पटरी की ओर दौड़े और मालगाड़ी के सामने गायब हो गए। समीर को सिर्फ एक धड़ाम की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार उसने सुरेश को नहीं बुलाया। उसे समझ में आ गया था कि स्टेशन पे दिखाई देने वाली चीजें उसे शायद कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही है और वो सिर्फ उसको ही दिखाई दे रही है। प्यारे श्रोतागण, जल्दी मिलेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: प्यारे श्रोतागण, आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञान स्थली रेडियो। रामपुर स्टेशन के उन डरावने दृश्यों के बाद समीर अब वहां एक पल भी नहीं रुका। वो स्टेशन से

भागा और घने जंगल की ओर जाने वाली सड़क पर दौड़ने लगा। स्टेशन पीछे छूट गया, आगे केवल अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं रास्ते पर झुकी हुई थी, जैसे उसे रोकना चाहती हूँ। समीर को ठीक से पता नहीं था कि वो किस दिशा में जा रहा है, वो बस भाग रहा था। उसने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं था, बैटरी भी खत्म हो रही थी। तभी जंगल के भीतर किसी बच्चे की रोने की आवाज आई, मम्मी मुझे घर जाना है। समीर रुक गया, फिर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़े एक छोटे नीले जूते पर पड़ी। उसके भीतर मिट्टी और सूखे पत्ते भरे थे। समीर ने उसे उठाया ही था कि पास के पेड़ की छाल पर खरोचे हुए कुछ अक्षर दिखाई दिए। लिखा था, सिर वापस करो। समीर ने जूता नीचे रख दिया। तभी उसे घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। समीर रास्ते के किनारे हट गया। उसे लगा कोई घुड़सवार इस सुनसान रास्ते से गुजर रहा होगा, लेकिन कोहरे के बाहर आई आकृति कोई साधारण घुड़सवार नहीं था। उसके घोड़े का शरीर पसलियों से भरा हुआ था, आंखें अंगारों की तरह लाल थी और नथनों से धुआं निकल रहा था। उसकी पीठ पर एक आकृति बैठी हुई थी, लंबा काला चोंगा पहने हुए। जहां उसका चेहरा होना चाहिए था, वहां अंधेरे का गहरा गड्ढा था। उसके हाथ में लोहे का एक बड़ा हसिया था, उसकी धार पे सूखा हुआ काला दाग चमक रहा था। समीर वहीं जम गया। घुड़सवार उसके पास आके रुका। घोड़े के खुर जमीन पर पड़े तो सूखे पत्ते जलने लगे। फिर उस आकृति ने कहा, मेरा सिर तुम्हारे पास है। समीर ने कांपते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हारा सर नहीं लिया। आकृति ने खाली कंधा घुमाया। उसके चोंगे के नीचे गर्दन का कोई निशान नहीं था, सिर्फ काली सड़ी हुई त्वचा थी। समीर कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया है। मगर घुड़सवार ने हसिया उठाया और समीर की गर्दन पर चला दिया। समीर आखिरी पल झुक गया, हसिया उसके पीछे पेड़ के तने में धस गई। समीर ने जमीन से एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस हैवान के मुंह पर दे मारा। घुड़सवार पीछे लड़खड़ाया, थोड़ा बेकाबू होकर तड़पने लगा। समीर ने मौका देकर हसिये का डंडा पकड़ा और उसे पेड़ से खींचने लगा। बहुत भारी था, लेकिन उसने किसी तरह उसे निकाल लिया। घुड़सवार फिर उसकी ओर लपका। समीर ने हसिया घुमाया, वह उसके कंधे पर लगा और काला चोंगा फट गया। उसके नीचे मांस नहीं था, सिर्फ गीली मिट्टी, सूखी घास और हड्डियों का ढांचा। घुड़सवार ने समीर को जोर से धक्का दिया, वो पत्थरों पर गिर पड़ा। उसकी कोहनी छिल गई। वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि घोड़ा उसके ऊपर झुक गया। उसकी लाल आंखों की रोशनी सीधे समीर के चेहरे पर पड़ रही थी। समीर को स्टेशन का बूढ़ा आदमी याद आया, मेरा सिर लौटा दो। उसे फिर वो बच्चा याद आया, वो औरत याद आई। क्या ये सब एक ही कहानी का हिस्सा थे? समीर ने हसिये का डंडा दोनों हाथों से पकड़ा और घुड़सवार के पैरों पर दे मारा। घोड़ा घुटनों के बल गिर पड़ा और सवार नीचे लुढ़क गया। हसिया उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। समीर घिसटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। घुड़सवार ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी लंबी हड्डियां जैसी उंगलियों ने समीर की कलाई पकड़ ली। उस स्पर्श से समीर की पूरी बांह बर्फ जैसी ठंडी पड़ गई। घुड़सवार की गर्दन से कई आवाजें एक साथ निकल रही थी। समीर ने नीचे देखा, उसके पैरों के पास एक लाल चमड़े का बैग पड़ा था। उसे समझ में नहीं आया ये बैग यहाँ कैसे आया। उसने तो स्टेशन से केवल अपना मोबाइल और टॉर्च उठाया था। समीर ने जल्दी से वो लाल बैग उठाया। बैग भीतर से खाली लग रहा था।
समीर ने उसको बंद किया और वहाँ से भागने लगा। भागते भागते वो हाईवे पर पहुँचा। घना कोहरा था, तभी सामने से आती एक बस की हेडलाइट दिखाई दी। समीर ने सड़क पर दौड़कर दोनों हाथ ऊपर उठाए चिल्लाया, रोकिए प्लीज, बस रोकिए, मेरी मदद करिए। वो बेहद बुरी हालत में बस में चढ़ा और फिर फर्श पे गिर पड़ा था। उसके हाथ में वही लाल बैग था और वो धीरे धीरे कहानी सुना रहा था और बीच बीच में चिल्लाता जा रहा था, गाड़ी भगाइए जल्दी, अगर उसने देख लिया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। श्रोतागण, जल्दी मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: प्यारे श्रोतागण, आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो। आइए चलते हैं अब कहानी के अंतिम भाग पे। समीर की कहानी पूरे होते ही बस के भीतर मौत का सन्नाटा छा गया। विक्रम और यात्री सब स्तब्ध बैठे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ पूछे। तभी पीछे से एक कार के इंजन की आवाज आई। बस के पीछे वाली काली कार आ पहुंची, जो शुरुआत में सड़क पर लावारिस खड़ी थी। कार ने बस को ओवरटेक किया और उसके सामने आड़ी खड़ी हो गई। कार से दो लंबे चौड़े आदमी उतरे। एक ने मेंटल हॉस्पिटल का एप्रन पहन रखा था और दूसरा सुरक्षा गार्ड की यूनिफॉर्म में था। वे झटके से बस में चढ़े और तुरंत समीर को दबोच लिया। उन्होंने समीर के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। समीर चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने उसका सिर नहीं काटा, वो तो बैग में बंद है। उन दोनों के पीछे मुख्य डॉक्टर डॉक्टर मेहरा आए। उन्होंने विक्रम को अपना कार्ड दिखाया, बोला, घबराइए मत, हम सेंट्रल मेंटल हॉस्पिटल से हैं। ये हमारा सबसे खतरनाक मनोरोगी मरीज है जो आज रात अस्पताल का ताला तोड़कर भागा है। विक्रम ने हकलाते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, ये जो कटा हुआ सिर और स्टेशन की बातें बता रहा है, क्या वो सब झूठ है? डॉक्टर मेहरा ने भारी आवाज में कहा, 3 महीने पहले रामपुर स्टेशन पे एक दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें एक माँ और बच्चे के चीथड़े उड़ गए थे। समीर उस ड्यूटी पर था। उस हादसे के भयानक सदमे ने इसके दिमाग पर गहरा असर डाला। इसे सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने आगे बताया, इसे हर जगह कटे हुए सिर दिखाई देते थे। इसे लगता था कभी कोई राक्षस इसका सिर काटने आ रहा है। इसी वहम में आकर इसने 3 हफ्ते पहले रामपुर स्टेशन के पास एक बेकसूर यात्री पर हमला करके उसकी गर्दन काट दी थी। तब इसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया था। विक्रम और यात्रियों का खून सूख गया। विक्रम ने डरते डरते लाल बैग की ओर देखा, तो इस बैग में क्या है? डॉक्टर मेहरा ने जल्दी से वो बैग खोला। बस के अंदर एक सड़ी हुई बदबू फैल गई। बैग में मेंटल हॉस्पिटल के नाइट गार्ड का कटा हुआ खून से सना सिर रखा था, जिसे समीर भागते समय काट कर ले आया था। सारे यात्री जोर से चीखने लगे। हथकड़ियों में जकड़ा समीर पागलों की तरह हंसने लगा, मैंने सिर काट दिया, अब वो मुझे नहीं मारेगा, देखो बैग में भी कैसे मुस्कुरा रहा है। अस्पताल के लोग समीर को खींचते हुए बस से उतार कर कार में बिठाने लगे। वे उसे लेकर अंधेरे में गायब हो गए। बस में फिर गहरा सन्नाटा छा गया। विक्रम के हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर गियर बदला। जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, बस की सबसे आखिरी सीट पर वही लाल साड़ी वाली औरत बैठी हुई थी। उसका कटा हुआ सिर उसकी गोदी में रखा हुआ था और वो विक्रम की तरफ देखकर भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। श्रोतागण, इसी के साथ आज की ये डरावनी दास्तान यहीं समाप्त होती है। मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे थे लेट नाइट हॉरर शो। उम्मीद है आप इस कहानी को याद करके पीछे मुड़कर देखने से बचेंगे। अपना ख्याल रखिए और इस रात को सुकून से गुजरने दीजिए। गुड नाइट।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदे, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग, चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग। संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे, होगी सुरों की बरसात। हो जाइए, थामिए एक दूसरे का हाथ, शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है राज कपूर और नरगिस पर, भारतीय सिनेमा का सबसे आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाक्या हुआ था जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे।

अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर, चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।

0: नहीं कहो ये कोई।
1: हाँ जी दोस्तों, जब हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल हो बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो, और रात की जो सड़कें होती हैं वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मॉनसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिम झिम रिम झिम। संगीत सम्राट आर डी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबान पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है रिम झिम रिम झिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।

0: आइए अब बात करते हैं उस गीत की जो बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं सभी की जुबान पर होता है, ओ सजना बरखा बहार आई। इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने और ये फिल्माया गया था साधना जी पर। संगीतकार सलिल चौधरी एक दिन तेज़ बारिश के दौरान अपने घर की खिड़की के पास बैठे थे। खिड़की पर गिरती पानी की बूंदों की रिदम से उन्हें एक धुन सूझी। उन्होंने सबसे पहले इसे बंगाली गाने ना मोन लागे रे के रूप में रिकॉर्ड किया था। बाद में विमल राय की फिल्म के लिए इसी धुन को हिंदी में बदल दिया गया, जो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और शांत मानसून के गानों में से एक बन गया। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।
1: ओ सजना।

आवाज से ही इस गाने की पहचान है और आवाज ही हर किसी के एक व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला गाना इस क्लासिक गाने को मन्ना डे ने और लता मंगेशकर ने गाया था। संगीत सलिल चौधरी का था और ये गाना था हरियाला सावन ढोल बजाता आया। विमल रॉय की इस फिल्म का यह गाना किसी प्रेमी प्रेमिका के रोमांस पे नहीं बल्कि भारतीय किसानों और धरती के जुड़ाव पर आधारित है। कहानी के अनुसार सूखे से परेशान गांव वाले जब आसमान में काले बादल देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि बारिश का मतलब उनके लिए नई जिंदगी और फसलों का उगना है। गीतकार शैलेंद्र ने बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना ढोल की आवाज से की है, इसीलिए इस गाने का नाम भी कुछ ऐसा दिया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जिसने बारिश के रोमांटिक पहलू को दिखाने की बजाय आम आदमी की खुशियों को दिखाया है, जो कि है दम दम डीगा डीगा। इसे मुकेश ने गाया था और अभिनेता राज कपूर जी पर यह फिल्माया गया था। संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। इस गाने में जब राज कपूर जी आम आदमी की खुशी को दिखाते हैं, मुंबई की सड़कों पर भरे पानी में थिरकते हैं, तो वो गर्मी के बाद आई हुई पहली बरसात और राहत का जश्न मना रहे होते हैं। इस गाने की शूटिंग के दौरान सड़कों पर असली जैसा माहौल बनाने के लिए भारी मात्रा में टैंकरों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही प्यारे धुनों के साथ इसे शूट भी किया गया था। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: बरसात की बूंदों ने आज फिर यादों का जहां आबाद किया। सुरमई नगमों ने गुजरे दौर के हर लम्हे को याद किया। अब ठहरने लगी है बारिश और महफिल समेटने का वक्त है। मौसम की हर बूंद ने आज एक नया तराना गाया है। पुराने गीतों ने हर दिल में एक नया एहसास जगाया है। हवाओं में घुली है आज भी इन सुरों की भीनी सी खुशबू। जाने का वक्त तो है पर दिल यहीं कुछ छूट गया है।
1: जैसे भीग कर थम जाती है सावन की यह हसी बरसात, वैसे ही अब मोड़ पर आ पहुंची है सुरों की ये प्यारी सी रात। दिलों में समेट कर ले जा रहे हैं इन गीतों की गर्माहट, अलविदा करते हैं आज थाम कर यादों की हसीन सौगात। फिर लौट कर आएगी ये रिमझिम, फिर सजेगी ये महफिल। पुराने गानों के सहारे फिर आसान होगी हर राह और मंजिल। भूले बिसरे गीत के इस सफर को आज हम यहीं रोकते हैं। अगली बारिश में फिर मिलने का वादा करके जाते हैं इस दिल से। तो मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
0: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: रात के सफर में भूले बिसरे गीतों का सफर हम यहीं पर करते हैं आज एंड। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन, और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह। तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा। संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।